गुड मॉर्निंग कानपुर, भोर के उजालों के साथ हो चुकी है एक खूबसूरत दिन की शुरुआत और आज का दिन है स्पेशल, आज का दिन है खास, जो दिल से जोड़ता है हमें पर्यावरण के साथ। विश्व पर्यावरण दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं हम आज, तो दोस्तों पर्यावरण दिवस पर हम वृक्षारोपण करते हैं, जागरूकता रैलियां निकालते हैं, स्वच्छता की बातें करते हैं, प्रदूषण पर नियंत्रण हो, इको फ्रेंडली हो, हम नेचर से करें प्यार, ये जज्बा जाहिर करते हैं और अपने रोजमर्रा के जीवन में इन सब चीजों को शामिल करते हैं। लेकिन पर्यावरण के लिए जागरूकता का तात्पर्य केवल प्रदूषण नियंत्रण तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रकृति के साथ संतुलित जीवन जीने की कला है। विश्व पर्यावरण दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं, तो आइए प्रकृति स्नेही बन जाएं और जताएं अपना प्यार पर्यावरण के साथ। चल चलिए किसी पेड़ के सहारे कुछ देर बैठा जाए प्रकृति की आगोश में। शिप्रा चंद्रा है आपके साथ।

तो दोस्तों, प्रकृति के साथ तालमेल बैठाना है जरूरी। पर्यावरण और प्रकृति को संरक्षित करना है हमारी जिम्मेदारी। 102.2 FM रेनबो कानपुर सुन रहे हैं आप, और आप शेयर कर रहे हैं कि आपसे कि आज आप कौन कौन से प्रोग्राम एंजॉय करने वाले हैं 102.2 FM रेनबो कानपुर के साथ। सुबह 8:30 पर सुनिएगा प्रोग्राम सुरों की पुरानी महफिल। सुबह 9:00 से वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर सुनिएगा रसबहार स्पेशल शो दिल से दिल की बात प्रकृति के साथ। महफिले कव्वाली सुनना न भूलिएगा सुबह 9:45 पर। रोज की तरह हमनवा दिन में 11:00 से आज विश्व पर्यावरण दिवस पर हमनवा में शिप्रा चंद्रा के साथ आप सुनेंगे वृंदा मल्होत्रा की आवाज। तो कनेक्ट हो जाइएगा आप भी हमारे साथ अपने मैसेजेस और कमेंट्स के साथ प्रोग्राम में। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कितने सजग हैं आप, शेयर कीजिए हमसे, हमारे साथ अपने कमेंट्स भेजिए। आकाशवाणी कानपुर के एफबी और इंस्टा पेज से जुड़िए और ईमेल कीजिए, पहुंचाइए अपने संदेश हम तक। हमारा ईमेल आईडी है aikanso@gmail.com। दिन में 3:00 से सुनिएगा म्यूजिक आर प्रोग्राम ग्रीन कारपेट क्लीन कारपेट की थीम के साथ, और एंजॉय करेंगे आप ये प्रोग्राम वृंदा मल्होत्रा के साथ।

रखते हैं हम आपकी हेल्थ का ध्यान। हेल्थ मैगजीन प्रोग्राम आप तक पहुंचेगा दिन में 3:45 पर। हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज कुमार से दीप शिखा गुप्ता करेंगी बातचीत गर्मियों में स्वास्थ्य की देखभाल विषय पर। आपकी पसंद ये प्रोग्राम गुलजार होगा आपकी फरमाइशी गीतों के साथ शाम 4 बजे से। ईमेल के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं हमारे प्रोग्राम के साथ, तो लिख भेजिए हमें फिल्म का नाम, गाने के बोल, अपना नाम और जगह का नाम। हमारा ईमेल आईडी है, एक बार फिर से बता रहे हैं, AIRKANSOMEDIA@gmail.com। तो आपका दिन होने वाला है सुरीला जानकारी और एंटरटेनमेंट के साथ विद 102.2 FM रेनबो कानपुर।

मन से दिल से प्रकृति की बात। और ये सिर्फ एक विचार नहीं बल्कि एक गहरा एहसास है। अगर हम शांत मन से सोचें तो प्रकृति और हमारा मन एक ही भाषा में बात करते हैं। नदी हमें सिखाती है कि रास्ते में कितने भी पत्थर यानी मुश्किलें आए, हमें बस जिंदगी के साथ जिंदा दिली से बहना है। एक पेड़ धूप आंधी और बरसात झेलकर भी स्थिर रहता है। वृक्ष हमें धैर्य सिखाते हैं। भीगी मिट्टी की सौंधी खुशबू एक पल में हमारे सारे तनाव धो देती है और आसमान हमें हमारी सोच और सपनों के साथ असीमित रहना सिखाता है। महात्मा गांधी का विचार है कि प्रकृति के पास इंसान हर जरूरत को पूरा करने के लिए, प्रकृति के पास इंसान की हर जरूरत को पूरा करने के लिए सब कुछ है, लेकिन इंसान के लालच को पूरा करने के लिए कुछ भी नहीं। सच है दोस्तों, प्रकृति हमें वो सब कुछ देती है जिसकी हमें जरूरत है, लेकिन क्या हम भी उसका उसी तरह ख्याल रखते हैं जैसे कि वो अपना खुद रखती है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित तिवारी। यू आर लिस्निंग कानपुर शहर की म्यूजिकल हार्टबीट 102.2 FM।

के साथ कनेक्ट है आप 102.2 एफएम रेनबो कानपुर सुन रहे हैं। आप ग्रीन कानपुर क्लीन कानपुर हो चुकी है एक खूबसूरत दिन की शुरुआत नई उम्मीदों और सपनों के साथ। तो टाइम है चाय की चुस्कियों का और सुबह की सुर्खियों का। तो क्या है आज की ताजा खबर, चलिए डालते हैं देश और दुनिया पर एक नजर। ब्रिटेन के सचिव यवेट कूपर ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने हाल के समय में भारत ब्रिटेन साझेदारी के मजबूत होने की सराहना की है, जिससे दोनों देशों के लिए विकास के अभूतपूर्व अवसर खुले हैं। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने व्हाट्सएप चैटबॉट संतोष और प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का प्रतीक चिन्ह जारी किया है और इस योजना के तहत घरों की छतों पर सोलर पैनल लगवाने के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। सब्सिडी सोलर पैनल की लागत 40% तक होती है। मेरा युवा भारत को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई है और इस अभियान ने एक सप्ताह में ऑनलाइन क्विज में भाग लेने वाले सबसे अधिक उपयोगकर्ताओं का खिताब हासिल किया है। इसमें लगभग 3.90 लाख से अधिक प्रतिभागियों ने क्विज को पूरा किया। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने परीक्षा प्रक्रिया और अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए फेज ऑथेंटिकेशन प्रणाली की शुरुआत की है। आयोग ने इस तकनीक को सफल उपयोग हाल ही में आयोजित सिविल सेवा परीक्षा प्रारंभिक और भारतीय वन सेवा परीक्षा प्रारंभिक 2026 में किया। और विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज प्रधानमंत्री सूरत में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करेंगे, जहां पर्यावरण और सतत विकास का संदेश दिया जाएगा। प्रधानमंत्री आज गुजरात के सूरत और दमन के दौरे पर रहेंगे, जहां वे विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। तो ये थी देश और दुनिया पर एक नजर। सुनते रहिए 102.2 FM रेनबो कानपुर।

0: प्रकृति ही पहला संगीत है दोस्तों, नेचर इज द ओरिजिनल म्यूजिशियन। ध्यान से सुने नेचर रिदम को। जैसे संगीत में हर सुर का बैलेंस होना जरूरी होता है, वैसे ही जीवन में इंसान और प्रकृति का बैलेंस होना जरूरी होता है। तो कानपुर सेलिब्रेट कर रहा है आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, और इस उपलक्ष्य में आज सिटी में होने वाला है जमकर पौधारोपण। सचान गेस्ट हाउस, नक्षत्र वाटिका, नाना राव पार्क, फूल बाग, आवास विकास एक, केशव वाटिका पार्क और सामाजिक वानिकी प्रभाग कानपुर, इसके अलावा बाबूपुरवा, नवाबगंज, विकास नगर, पनकी साइड 2 PIA पार्क। साथ में मोती झील स्थित पिंक पुलिस चौकी के पास सुबह 8 बजे से और ब्लॉक किदवई नगर दुर्गा मंदिर के पास शाम 5 बजे से पौधारोपण होने वाला है। CSA में भी आज चलने वाला है पौधारोपण अभियान। तो कानपुर कर रहा है सेलिब्रेट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। सच है दोस्तों, स्वस्थ पर्यावरण और समृद्ध जीवन एक छोटा सा प्रयास आने वाली पीढ़ियों को एक सुंदर भविष्य दे सकता है। तो कीजिए आप पौधारोपण और पर्यावरण दिवस सेलिब्रेट कीजिए। ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, हम प्रोग्राम के इस मोड़ पर मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: The Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for 10+2 BTech cadet entry scheme, permanent commission. Last date for submission is 18 June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy, combat ready, cohesive, Atmanirbhar, safeguarding seas for a Viksit Samriddh Bharat. Join Indian Navy.
4: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
5: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
6: यू आर लिसनिंग 102.2 FM रेनबो कानपुर। गुड मॉर्निंग कानपुर, शिप्रा चंद्रा है आपके साथ। 5 जून साल 2026 दिन शुक्रवार। तो डियर रेनबो लिसनर्स, जून की इस गर्मी में आज की तारीख कितना कुछ समेटे हुए है अपने आप में, लीजिए सुनिए। यह है अतीत के आईने में आज का दिन। हमारी पृथ्वी हमारा घर है, जहां हम निवास करते हैं। तो इसके पर्यावरण संरक्षण के लिए 5 जून साल 1973 में विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की शुरुआत हुई। ओजोन परत में कमी, जहरीले रसायनों, मरुस्थलीकरण और ग्लोबल वार्मिंग समेत विभिन्न कारणों से पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। तो विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य है पर्यावरण के प्रति बढ़ती हुई चिंताओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना। ये दिवस एक वैश्विक मंच पर विकसित हुआ संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP इस दिन को आयोजित करता है और इस दिन का मुख्य उद्देश्य विभिन्न पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। वर्ष 2026 के लिए विश्व पर्यावरण दिवस की थीम है प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए और हमारे भविष्य के लिए।

हवाओं की रफ्तार और चिड़ियों की चहचहाट, शीतल ठंडी हवाएं, ये है मॉर्निंग टाइम। और कानपुर में सुहानी सुबह में बादलों की आवाजाही और शीतल हवाओं के साथ लगी हुई है, और पर्यावरण दिवस पर प्रकृति भी सजी सवरी सी नजर आ रही है। और सूरज की तेज धूप, ऐसा लग रहा है सूरज की तेज धूप पर बादल जो है वो पहरा लगाने की तैयारी में है। 7:42 बाय द स्टूडियो क्लॉक और मॉर्निंग टाइम बिजी शेड्यूल। वेल, पूरे दिन कितनी भी व्यस्तता हो, सुबह का ये टाइम होता है सुकून भरा और साथ में समय है एक्सरसाइज, योग और मेडिटेशन का। तो रहिए फिट एंड फाइन। और दोस्तों, सच है कि जीवन का प्रत्येक क्षण स्वयं को बदलने और भविष्य को संवारने का अवसर है।

तो अब आज का मौसम कैसा रहने वाला है शेयर कर रहे हैं आपके साथ सीएसए और भारत मौसम विज्ञान विभाग का जो मौसम का पूर्वानुमान है वो ये है कि तेज हवाओं के साथ गरज चमक के साथ हल्के से मध्यम बारिश या फुहारों की संभावनाएं हैं। हवा में नमी का स्तर अधिक होने से गर्मी का एहसास थोड़ा तो बढ़ गया है, उमस भरी गर्मी है और आने वाले 24 घंटों में इस तरह का मौसम रहने वाला है कि गरज चमक के साथ हल्की सी मध्यम वर्षा हो सकती है, बूंदाबांदी हो सकती है। तो लीजिए मौसम का मजा और सुनते रहिए 102.2 FM रेनबो कानपुर।

तेरी मेरी कहानी और बारिशों का पानी। तो बारिश आने की होने की उम्मीद है आज कानपुर में। और ऑन एयर ऑलवेज इन हार्ट, ये है 102.2 एफएम रेनबो कानपुर की आवाज। रात दिन जागते हंसते मुस्कुराते कानपुर आपकी तेज है रफ्तार, लेकिन सड़क पर ये रफ्तार रहे नियंत्रित, ये भी है आपकी जिम्मेदारी। तो दोस्तों, जिंदगी बहुत खूबसूरत है और मंजिल पर कर रहा है कोई आपका इंतजार। तो याद रखिए, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, स्टे सेफ। चल रहे हैं हम आपके साथ साथ।

वाकई उलझने हैं तो राहतें भी हैं और जिंदगी इसी का नाम है। वेल, 21 जून को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी के लिए हजारों अभ्यर्थियों के लिए एक राहत भरी खबर है। उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज मंडल के से प्राप्त हुई है ये लेटेस्ट अपडेट है कि अब 21 जून को की बजाय 28 जून को सेंट्रल स्टेशन पर ट्रेनों का संचालन बंद रखने का निर्णय लिया है, क्योंकि 21 जून को नीट है तो उस दिन सुबह 8 बजे से 29 जून की सुबह 8 बजे तक ये ब्लॉक रहेगा। तो 28 को सेंट्रल स्टेशन बंद रहने वाला है, नीट वाले दिन नहीं। पहले एक और डियर कानपुर लेटेस्ट अपडेट है आपके लिए एग्रीकल्चर इंडिया से। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के खेत बचाओ अभियान के तहत अब हमारे किसानों को स्मार्ट और साइंटिफिक फार्मिंग के गुर जो हैं वो सिखाए जा रहे हैं और इस कैंपेन का सीधा फंडा है स्वस्थ मिट्टी, सुरक्षित फसल और समृद्ध किसान। तो इसके जरिए किसानों को सॉयल कंजर्वेशन और क्रॉप सेफ्टी के प्रति जागरूक किया जा रहा है ताकि खेती ज्यादा प्रॉफिटेबल और फ्यूचर सुरक्षित बन सके। तो किसान भाइयों, साइंटिफिक तरीके अपनाएं और अपनी फसल बढ़ाएं। सुनते रहें 102.2 FM रेनबो कानपुर।

धड़क धड़क मेरा दिल बोला और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट कर रहे हैं आज हम। इस मौके पर हमारे देश को मिला एक बेहद शानदार और ग्रीन रिटर्न गिफ्ट। क्या है वो गिफ्ट? इंडियन रेलवे ने इतिहास रचते हुए भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन को ऑफिशियल मंजूरी दे दी है और ये ट्रेन धुएं या पॉल्यूशन की जगह अपने पीछे छोड़ती है सिर्फ और सिर्फ पानी की भाप। 10 डिपो वाली सुपर कूल ट्रेन को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर हरियाणा के जिंद सोनीपत रूट पर चलाया जा रहा है और इस कामयाबी के साथ भारत अब जर्मनी, जापान और अमेरिका जैसे एलीट ग्लोबल क्लब में हो गया है शामिल। तो इस ग्रीन इनिशिएटिव के साथ अब सबको सफर होगा सुकून भरा और हमारा पर्यावरण भी रहेगा सेफ। और दोस्तों अब वाइंड अप करने का टाइम हो रहा है। प्रोग्राम को हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हैप्पी एनवायरनमेंट डे दीजिए शिप्रा चंद्रा को अनुमति। और चलते चलते एक छोटा सा मैसेज है कि पेड़ पौधे हैं धरती का श्रृंगार, इनके बिना सूना है ये संसार। दीजिए अनुमति शिप्रा चंद्रा को प्रोग्राम से चलते चलते प्ले कर रही हूँ ये ट्रैक। इंजॉय कीजिए आपके रेडियो और मोबाइल सेट्स पर। ये रहा

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दमन के दौरे पर रहेंगे। लगभग 21,800 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। प्रधानमंत्री ने विश्व योगासन चैंपियनशिप के प्रतिभागियों से आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के राजदूत बनने का आह्वान किया। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में निधन। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को विश्वसनीय साझेदार बताया, कहा अमेरिका का दबाव भारत रूस संबंधों को प्रभावित नहीं करेगा। और पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। आज शाम प्रधानमंत्री का दमन दौरा भी होगा। प्रधानमंत्री वहां लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे को बड़ी गति देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के महत्वपूर्ण पैकेज राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे राष्ट्रीय राजमार्ग 56 के महत्वपूर्ण खंडों को 4 लेन बनाने की भी आधारशिला रखेंगे, जिससे आदिवासी क्षेत्रों और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुँच में सुधार होगा। जन कल्याण के तहत प्रधानमंत्री सूरत में 2400 घंटे आपातकालीन और ट्रॉमा केयर सुविधाओं से लैस एक आधुनिक 200 बिस्तरों वाले ईएसआईसी अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा गुजरात में ट्रांसमिशन नेटवर्क विस्तार, दहेज पीसीपीआईआर और सरिगाम जीआईडीसी में उन्नत अपशिष्ट निपटान प्रणाली और वलसाड़ में आधुनिक बिजली वितरण उन्नयन सहित कई महत्वपूर्ण औद्योगिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी आज शुभारंभ किया जाएगा। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व योगासन चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से अपने अपने देशों में आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के वैश्विक राजदूत बनने का आह्वान किया है। अहमदाबाद में चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में श्री मोदी ने कहा कि योग से जुड़े रहने और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने योग 365 अभियान की शुरुआत की है। 4 से 8 जून तक आयोजित पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि योग स्वस्थ रहने के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण है।
3: मैं इस वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों से भी आग्रह करूंगा, जब आप अपने अपने देशों में लौटे तो योग के इस संदेश को भी अपने साथ लेकर जाएं। आप सभी अपने अपने देशों में योगा 365 के एम्बेसडर्स बन सकते हैं। आपका अनुभव और योग के प्रति आपका विश्वास पूरे विश्व को इस संदेश से जोड़ सकता है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये चैंपियनशिप आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले विश्व स्तर पर योग के संदेश को पहुंचाने का अवसर है।
3: 21 जून को वर्ल्ड योगा डे भी मनाया जाएगा। उस दिन दुनिया के अलग अलग देशों में योग से जुड़े आयोजन होंगे और इसका प्रमुख कार्यक्रम भारत के एक और ऐतिहासिक शहर कोलकाता में होगा। वर्ल्ड योगा डे से पहले वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप

0: इफेक्टिव अपने आप में हेल्थ और वेलनेस की डबल डोज लेकर आ गई है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: अभियान। निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। बैंक गवर्नर संजय मल्होत्रा आज सुबह 10 बजे मुंबई में मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। 6 सदस्यीय समिति ने बुधवार को 3 दिवसीय विचार विमर्श शुरू किया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अप्रैल में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी प्रमुख नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया था।
4: खुदरा मुद्रा स्फीति पर आधारित महंगाई सूचकांक 4% तक सीमित रखने का लक्ष्य भारत सरकार ने रिजर्व बैंक को दिया है। असाधारण परिस्थितियों में यह सूचकांक 2-6% के दायरे में रखने की भी छूट है। सोने एवं चांदी के आभूषण तथा खानपान सामानों की कीमतें बढ़ने के कारण अप्रैल में यह सूचकांक 3.48 पर था, जो कि दिए गए दायरे के अंदर है। इसी कारण विश्लेषकों का मानना है कि रिजर्व बैंक इस बार भी ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। पश्चिम एशिया में उत्पन्न संकट का महंगाई तथा आर्थिक वृद्धि पर होने वाला परिणाम देखते हुए रिजर्व बैंक सतर्क दृष्टिकोण अपनाएगा, ऐसा भी कहा जा रहा है। कुछ दिन पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सीएस शेट्टी ने भी कहा था कि रिजर्व बैंक ब्याज दरों में बदलाव नहीं करता है तो आर्थिक वृद्धि की प्रक्रिया को स्थिर रखने में मदद मिलेगी। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से जीवन भावसार।
3: मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तरुण कपूर का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। श्री कपूर का विस्तारित कार्यकाल 10 जून से 1 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी की सराहना की है। उन्होंने कहा कि भारत को रूस के साथ सहयोग कम करने के लिए मजबूर करने के पश्चिमी देशों के प्रयास व्यर्थ और वैश्विक स्थिरता के लिए हानिकारक हैं। प्रमुख वैश्विक समाचार एजेंसियों के प्रमुखों के साथ बातचीत में श्री पुतिन ने कहा कि अमरीका के साथ भारत की राजनयिक भागीदारी दोनों देशों के चिरस्थायी संबंधों पर कोई प्रभाव नहीं डालती। उन्होंने कहा कि रूस भारत को एक विश्वसनीय साझेदार मानता है। श्री पुतिन ने भारत के साथ रूस के रक्षा और सैन्य संबंधों की भी चर्चा की और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के सह विकास और सह उत्पादन के बारे में भी बताया। श्री पुतिन ने कहा कि रूस ने भारत को 5वीं पीढ़ी के SU-57 लड़ाकू विमान के निर्माण में संयुक्त रूप से काम करने का प्रस्ताव दिया है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खानाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खानाल नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। व्यापार समझौते पर चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने भारत का अपना 4 दिन का दौरा पूरा किया है। एक रिपोर्ट।
5: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि इस दौरान वस्तुओं के व्यापार, गैर टैरिफ उपायों, सीमा शुल्क और व्यापार सुविधा, आर्थिक सुरक्षा संरक्षण और पारस्परिक हित के अन्य क्षेत्रों सहित कई मुद्दों पर रचनात्मक और सकारात्मक चर्चा की गई। मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने वाले पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौते को पूरा करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। भारत और अमरीका ने 7 फरवरी को जारी एक संयुक्त वक्तव्य में व्यापार से संबंधित एक अंतरिम समझौते पर सहमति व्यक्त की। यह भारत अमरीका द्विपक्षीय व्यापार समझौते के प्रति दोनों देशों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
3: आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 5 जून 1973 को हुई थी।
6: विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य प्रकृति और पृथ्वी की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना और सकारात्मक कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह राष्ट्रीय राजधानी में मैदानगढ़ी स्थित नमो ऑक्सीजन पार्क में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री अपने अपने राज्यों में विश्व पर्यावरण दिवस से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। यह दिवस पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, लोगों को कार्यवाही के लिए प्रेरित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने का अवसर है। विभिन्न अभियानों, कार्यक्रमों और पहलों के माध्यम से लोगों और समुदायों को पर्यावरण की रक्षा के लिए आगे आने तथा बेहतर और टिकाऊ भविष्य के निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित किया जाता है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: इस अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने देशवासियों से जलवायु और भविष्य के लिए प्रकृति से प्रेरणा लेते रहने का संकल्प दोहराने का आग्रह किया है। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 97 वर्ष के थे। उन्होंने 100 से अधिक पुस्तकों के लेखन का काम पूरा किया। वे 1983 से 1990 तक लोकसभा के महासचिव रहे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के दूसरे स्तर संघ चालक माधव सदाशिवराम गोलवलकर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री शाह ने कहा कि श्री गोलवलकर ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को एक मजबूत वैचारिक आधार दिया। पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। ये मैच जापान के काकामिगाहारा हॉकी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार आज शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। महिला अंडर 18 एशिया कप में भारत ने ग्रुप चरण में बिना कोई मैच हारे सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में गरज के साथ आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आकर्षिता सिंह।
7: धन्यवाद जागृति। प्रधानमंत्री मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति की मुलाकात को आज प्रकाशित अखबारों ने प्रमुखता दी है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, वेनेजुएला से बढ़ेगी कच्चे तेल की खरीद, ऊर्जा साझेदारी पर भी चर्चा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का सेंट पीटर्सबर्ग में मीडिया को दिया बयान, अमर उजाला ने प्रथम पृष्ठ पर दिया है। भारत पर दबाव की कोशिश में अमरीका, लेकिन सभी जानते हैं मोदी पर दबाव बनाना नामुमकिन। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड पर दैनिक जागरण की खबर है, धुएं ने छीन ली सांसें पर आखिरी पल तक नहीं छोड़ा साथ। पंजाब केसरी की खबर है, मौत की इमारतों पर होगा एक्शन, उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने नगर निगम को दिए कार्रवाई के निर्देश। जनसत्ता ने अपने संपादकीय पृष्ठ में हादसों की जवाबदेही का विश्लेषण दिया है, किसी भी हादसे का सबसे जरूरी सबक ये होना चाहिए कि भविष्य में ऐसे इंतजाम किए जाएं ताकि वैसी घटना दोबारा न हो। दैनिक भास्कर ने बड़ा कदम शीर्षक से इको फ्रेंडली खबर दी है, सिर्फ एथेनॉल से चलने वाली देश की पहली कार लॉन्च, 5,000 पंप खुलेंगे, इससे प्रदूषण घटेगा और किसानों की आय भी बढ़ेगी। राजस्थान पत्रिका ने मॉनसून की दस्तक को मंगल प्रवेश बताते हुए लिखा है, बूंदों की बारात लेकर मॉनसून केरलम पहुंचा, 20 को राजस्थान में आगवानी। अब उत्तर भारत में तपिश के गिने चुने दिन, पत्र ने विश्व पर्यावरण दिवस पर लिखा है, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा, धरती संकेत दे रही है, क्या हम सुन रहे हैं, पहले मौसम बदलता था अब बिगड़ता है, प्रकृति से सिर्फ लिया कभी कुछ जमा नहीं किया, अब धरती दे रही चेतावनी।
3: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दमन की यात्रा पर रहेंगे। लगभग 21,800 करोड़ रूपये की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री ने विश्व योगासन चैंपियनशिप के प्रतिभागियों से आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के राजदूत बनने का आह्वान किया। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में निधन। और पुरुष

You are listening 102.2 FM Rainbow Kanpur. सुबह के बज रहे हैं 8:30 और समय है सुरों की पुरानी महफिल का। कर रहे हैं प्रोग्राम की शुरुआत जिद्दी फिल्म के गीत के साथ। दिलीप सेन और समीर सेन का संगीत है, बोल है समीर और अनजान के, आवाज है ललित सेन की।

हथखड़ी, ये है फिल्म का नाम और इस फिल्म के गीत को गाया है आशा भोसले ने, लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने और संगीत बद किया है बप्पी लहरी ने।

और एक बार फिर से अप्सरों की पुरानी महफिल में गूंजने को है तैयार। आशा भोसले की आवाज किशोर कुमार के साथ, आर डी बर्मन का संगीत है और बोल है अनजान के।

ये संगीत है आरडी बर्मन का। देखा इस गीत को गुलशन बावरा ने और आवाजें हैं आशा भोसले और आरडी बर्मन की फिल्म का नाम सनम तेरी कसम।

ये संगीत है बप्पी लहरी का, आवाज आशा भोसले की, और इसे लिखा है अनजान ने, फिल्म का नाम नमक हलाल।

You are listening 102.2 FM Rainbow Kanpur. लीजिए सुनिए ये सूचना। कानपुर देहात और उन्नाव जनपद के उपभोक्ताओं की डाक विभाग की सेवाओं से संबंधित शिकायतों का निस्तारण हेतु अधीक्षक डाकघर कानपुर प्रखंड के कार्यालय कक्ष में पता है कानपुर जीपीओ भवन बड़ा चौराहा दिनांक 15 जून 2026 को समय 11 बजे डाक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें उपभोक्ताओं की पंजीकृत वस्तुओं, धनादेशों, बीमाकृत वस्तुओं, बचत बैंक और अन्य संबंधित शिकायतों का निस्तारण किया जाएगा। अपनी समस्याओं, शिकायतों के निदान हेतु डाक अदालत में उपस्थित होने के इच्छुक उपभोक्तागण अपनी समस्याओं, शिकायतों के पूर्ण विवरण सहित अधीक्षक डाकघर कानपुर मुख्य प्रखंड कानपुर के कार्यालय में दिनांक 10 जून 2026 तक अवश्य उपलब्ध करा दें। निर्धारित तिथि तक परिवाद प्राप्त न होने पर परिवाद समस्या पर विचार नहीं किया जाएगा। डाकघर से जुड़ी हुई एक और सूचना सुनिए। चीफ पोस्टमास्टर प्रधान डाकघर कानपुर से संबंधित उपभोक्ताओं की समस्याओं और शिकायतों के त्वरित निस्तारण हेतु त्रैमासिक डाक अदालत का आयोजन चीफ पोस्टमास्टर प्रधान डाकघर कानपुर की अध्यक्षता में दिनांक 12 जून 2026 दिन शुक्रवार को पूर्वाहन 11 बजे चीफ पोस्टमास्टर के कक्ष में किया जाएगा। डाक अदालत में प्रधान डाकघर कानपुर से संबंधित समस्याओं, शिकायतों, विशेषतः स्पीड पोस्ट सेवा, पंजीकृत वस्तुएं, बचत बैंक, धनादेश सेवा, पेंशन एवं अन्य संबंधित शिकायतों का निस्तारण किया जाएगा। ग्राहक अपनी समस्याओं,

0: शिकायतों के निवारण हेतु डाक अदालत में उपस्थित होने के इच्छुक उपभोक्तागण अपनी समस्याओं शिकायतों के पूर्ण विवरण सहित हेतु चीफ पोस्टमास्टर प्रधान डाकघर कानपुर के कार्यालय में दिनांक 5 जून 2026 दिन शुक्रवार तक अवश्य उपलब्ध करा दे। उक्त तिथि के बाद प्राप्त शिकायतों पर डाक अदालत में विचार नहीं किया जाएगा। डाक अदालत में सुनवाई हेतु नए मामले नहीं लिए जाएंगे। केवल उन्हीं मामलों को विचार हेतु प्रस्तुत करने का अनुरोध किया जाता है जिनका निस्तारण किसी कारणवश नहीं हो पाया है अथवा कोई संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। पूर्व में प्रेषित शिकायत का विवरण भी प्रमाण स्वरूप साथ में संलग्न किया जाए और कृपया शिकायती पत्र लिफाफे के ऊपर डाक अदालत हेतु अवश्य लिखें। तो ये थी डाक अदालत संबंधित सूचनाएं। सुनते रहिए 102.2 FM रेनबो कानपुर।
1: एक आवश्यक सूचना सुनिए। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कारों के लिए नामांकन आरंभ हो चुके हैं। ये पुरस्कार वीरता, खेल, सामाजिक सेवा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, कला और संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने वाले बच्चों को दिए जाते हैं। 5 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी बच्चा जो भारतीय नागरिक है और भारत में रहता है इन पुरस्कारों के लिए पात्र है। इस हेतु नामांकन awards.gov.in पर स्थित राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। पुरस्कारों के लिए स्व नामांकन और अनुशंसा दोनों पर विचार किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर जाएं। एक बार फिर से सुन लीजिए awards.gov.in। सूचना समाप्त हुई।
2: Hi, this is Udit Narayan. You are listening 102.2 FM Rainbow, शहर की म्यूजिकल हार्टबीट। दिल से जुड़े रहें और सुनते रहें शहर की म्यूजिकल हार्टबीट को।
0: सिटी की म्यूजिकल हार्टबीट के साथ कनेक्ट हैं आप 102.2 FM Rainbow कानपुर सुन रहे हैं आप। लेकर हाजिर है रस पहाड़ स्पेशल शो दिल से दिल की बात प्रकृति के साथ वर्ल्ड एनवायरमेंट डे पर। दोस्तों, भारतवर्ष प्राकृतिक संपदा की दृष्टि से विश्व के सबसे समृद्ध देशों में से एक है। उत्तर में हिमालय की दुर्गम चोटियों से लेकर दक्षिण में समुद्र तटों तक यहाँ उपजाऊ कृषि क्षेत्र, पठार, मरुस्थल, तटीय क्षेत्रों के साथ हैं कल कल करती नदियाँ गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी और कावेरी। और इन नदियों के साथ समृद्ध जलीय जीवन, वन संपदा, खनिज संपदा और साथ में है नवीकरणीय ऊर्जा की अपार संभावनाएं जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और हाइड्रो पावर। तो ये तो ही हमारे भारतवर्ष की बात और इस तरह नेचुरल रिसोर्सेस से संपन्न है हमारी धरती और ये संसार। तो नेचर हमें दिल से अपनाता है दोनों बाहें फैलाकर, लेकिन हम भी क्या दिल से रखते हैं इसका ख्याल। तो कुछ ऐसी ही बातों के साथ रसबहार स्पेशल शो दिल से दिल की बात प्रकृति के साथ लेकर हाजिर हूँ मैं। मेरा नाम है शिप्रा चंद्रा।

कुछ कर गुजरने का फितूर है कानपुर के ऊपर आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर। हो रहा है पर्यावरण कानपुर में दिल खोल कर। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट कर रहे हैं हम आज और कानपुर ले रहा है पर्यावरण को सहेजने की मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा। कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित हुआ, साथ ही आज सीएससी में भी ये कार्यक्रम चल रहा होगा इस वक्त, और जागरूकता रैलियां निकाली जा रही हैं। पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता और जलवायु परिवर्तन के लिए जागरूकता बढ़ी है। हरे जीवन शैली को अपनाने का संदेश भी दिया जा रहा है सोशल मीडिया से लेकर के घरों में, पार्कों में और सोसाइटीज में, गंगा तटों पर, इंस्टीट्यूट में और इंस्टीट्यूट्स में, स्कूलों में, संस्थानों में, और आप पर्सनल लेवल पर आज के इस दिन को यादगार बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, शेयर कीजिए हमारे साथ। दिल से कीजिए दिल की बात प्रकृति के साथ। और साथ ही हमें ये भी बताइए, क्वेश्चन है आपके लिए कि क्या आप जानते हैं कि एक नॉर्मल प्लास्टिक बॉटल को पूरी तरह खत्म होने में लगभग कितने साल लगते हैं? जी हाँ, समय नहीं, सालों लग जाते हैं इसे खत्म होने में। तो दीजिए अपना जवाब, हमारा ईमेल आईडी है irkansometia@gmail.com और सुनते रहिए 102.2 FM रेनबो कानपुर।

मन गा रहा है और डांस भी कर रहे हैं आप 102.2 FM रेनबो कानपुर के संग 9:11 बाय द स्टूडियो क्लॉक हंसती मुस्कुराते कानपुर की तेज है रफ्तार। मौसम गर्म है लेकिन हौसले क्या कम है। अच्छा कानपुर, क्या आपने नोटिस किया है या ऐसा करते भी होंगे कि आप तेज धूप में, चाहे आप पैदल हों या कि अपने व्हीकल में, आप रोड साइड में पेड़ों की छांव में चलना पसंद करते हैं। जिधर छांव हो उधर ही से चल चलिए, भले ही थोड़ी सी कम हो जाए रफ्तार, पर उससे क्या, वो कहते हैं ना, कड़ी धूप है जलते पाँव, होते पेड़ तो मिलती छांव। सच है दोस्तों, बिना पेड़ों वाली सड़कें ज़्यादा गर्म महसूस कराती हैं, और अगर सड़क के किनारे घने पेड़ हों तो धूप और गर्म हवाओं का असर काफ़ी हद तक हो जाता है कम। पेड़ों से हमें फल फूल, छाया, ऑक्सीजन, दवाइयाँ, कितना कुछ मिलता है, तो वृक्षारोपण में देरी कैसी। वेल, आपको पता है कि दुनिया का सबसे सस्ता और असरदार एसी यानी एयर कंडीशनर कौन सा है, वो भी एक्सचेंज ऑफर के साथ, जो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन देता है। तो इसका आंसर है एक हरा भरा पेड़, है ना सौदा, खरा खरा। और इसके अलावा आपसे एक सवाल और पूछा था, रिमाइंड करा रही हूँ आपको, कि क्या आप जानते हैं कि एक प्लास्टिक बॉटल को पूरी तरह खत्म होने में कितने साल लगते हैं। और जल्दी से भेजिए हमें इसका जवाब फटाफट अंदाज में। हमारा ईमेल आईडी है AIRKANSOMEDIA@gmail.com। सोचिए इस क्वेश्चन का जवाब और सुनते रहिए 102.2 FM रेनबो कानपुर।

वाकई सोचने की तो है बात, और मिलती है सच्ची खुशी जब हम कोई नेक काम करते हैं, किसी को जीवन देते हैं। तो अगर पौधारोपण कर रहे हैं आप आज, बहुत सारा पौधारोपण हो रहा है सिटी के अंदर और इंडिया के अंदर और इस विश्व के अंदर, तो आप खुद से ये प्रॉमिस ज़रूर कीजिए कि इसकी देखभाल बिल्कुल उसी तरह करेंगे जैसे कि किसी अपने की। और एक पेड़ माँ के नाम, ये अल्फाज कितना कुछ समेटे हैं खुद में। जो करते हैं अपनी माँ से प्यार, कैसे करेंगे वो भला इस बात पे इनकार। वो इसकी अहमियत खूब जानते हैं। तो क्या पेड़ आपस में बातें करते हैं? वेल, तारीख पे तारीख पे तारीख की तरह क्वेश्चन पर क्वेश्चन आते जाएं तो भला किसे अच्छा लगेगा। तो जो आपने सवाल पूछा था पहले उसका आंसर दे देते हैं। एक प्लास्टिक बॉटल को ख़त्म होने में कितने समय लगता है, कितने साल लगते हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो जवाब हमें मिले हैं बिल्कुल फटाफट अंदाज में हमारे लिसनर्स के नाम शेयर कर रहे हैं। कानपुर से करिश्मा, इन्होंने लिखा है 400 से 1000 साल लग जाते हैं। OMG वाली फीलिंग आ रही है ना। और करिश्मा के साथ तनुजा, विकास और निसार और सोमदत्त के भी मैसेजेस समय प्राप्त हुए हैं। एक नॉर्मल प्लास्टिक बॉटल को पूरी तरह खत्म होने में, डिकम्पोज होने में लगभग 450 प्लस ईयर्स लगते हैं। स्टडी में ये बात सामने आई है कि प्लास्टिक बैग, पॉलीथीन, प्लास्टिक स्ट्रॉ, डिस्पोजेबल कप, प्लेट जैसी चीज़ों को डिकम्पोज करने में सालों यानी पीढ़ियां लग जाती हैं। तो अब सिंगल यूज़ प्लास्टिक को यूज़ करने से पहले एक बार ज़रूर सोचिएगा कि इस ब्लू प्लैनेट को, अपनी आने वाली जेनरेशन को हम क्या दे करके जा रहे हैं। दोस्तों वो कहते हैं ना कि नेचर डजंट स्पीक इन वर्ड्स, स्पीक इन एक्सपीरियंस। तो कुदरत हर वक्त हमारे साथ है, बिल्कुल एक खामोश दोस्त की तरह। और क्या हम भी उसे उसी तरह सच्ची दोस्ती निभाते हैं जिस तरह से नेचर हमारे साथ निभाता है? वेल, इंसान जब अपने फ़ायदे के लिए कुदरत को नुकसान पहुंचाता है तो बेजुबान कुदरत चुपचाप सब कुछ सहती है, लेकिन एक लिमिट के बाद अपने तरीकों से वो समझा भी देती है। भैया वार्निंग देती है कि प्लीज़ स्टॉप। मौसम का बदलता मिजाज, तूफान, सूखा, ज्यादा बारिश, बाढ़, पहाड़ों का दरकना, साइक्लोन्स, सी वार्निंग के नतीजे हैं।

प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए, हमारे भविष्य के लिए, इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट और फॉर अवर फ्यूचर, थीम है वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 2026 के। डियर रेनबो लिसनर्स, हम प्रकृति से कितना कुछ लेते हैं ये जानते हैं आप और जानते हैं हम, और ये भी सच है कि प्रकृति खुद को सहेजना जानती है। और पैंडेमिक के दिनों में एक बहुत ही ज़रूरी चैप्टर लाइफ की बुक में खुद ब खुद उभर के आया। कोरोना महामारी ने हमें अपनी गिरफ्त में लिया था और हम अपने घरों में पैक थे, हमारी रफ्तार थम गई थी, काम हो गए थे ठप, लेकिन तब प्रकृति बहुत सुकून में थी। लॉकडाउन में इंसानी गतिविधियां तो रुक गई थी, उन दिनों सोशल मीडिया पे और न्यूज़ में हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आ रही थी कि हवा में प्रदूषण कम होने से AQI घट गया है और जल और वायु की गुणवत्ता में भी काफ़ी सुधार हुआ था। उन दिनों विलुप्त होती चिड़ियाँ वापस हमसे दोस्ती करने के लिए हमारी छतों और बालकनी में आने लगी थी। इंसान की गैर मौजूदगी में मोर, हिरन और अन्य वन्य जीवों को बेखौफ घूमते देखा गया। और प्रदूषण कम होने के कारण एक और बहुत ही प्यारी सी बात हुई, सोचते हैं हम लेकिन हमें समझ में नहीं आता है, दिखाई नहीं देती है। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों से हिमालय की बर्फीली चोटियां तक नज़र आने लगी थी, जो सामान्य दिनों में धुएं और प्रदूषण के कारण, धूल के कारण नहीं दिखती हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, दिल से सुनिए नेचर की आवाज़, हवाओं की सरसराहट में, झरनों के शोर में, बलखाती नदियों के गीतों में और वन्य जीवों की मूक पुकार में, ये भी है हमारी तरह इसी प्रकृति का हिस्सा। क्यों अनसुना करते हैं हम इन्हें, क्या कहना चाहते हैं ये हमसे।

नेचर पर सबका हक बराबर है ये समझना जरूरी है। दिल से दिल की बात प्रकृति के साथ रस बहार स्पेशल शो सुन रहे हैं आप 102.2 FM रेनबो कानपुर से शिप्रा चंद्रा है आपके साथ। दोस्तों सुबह से शाम, शाम से रात हमें कहीं ना कहीं किसी को कम तो किसी को ज्यादा या किसी को बहुत ज्यादा स्ट्रेस की प्रॉब्लम रहती है ना। छोटी छोटी बातों पर मुंह फुलाना, गुस्सा होना। अच्छा लगता है कि काश की कोई इसकी दवा होती तो डियर रेनबो लिसनर्स, इसकी बेहतरीन दवाई आपके घर के आंगन या गली में खड़ी है। जापान में ये कॉन्सेप्ट

फॉलो करते हैं लोग जिसे कहते हैं शिनरिंग योकू यानी कि फॉरेस्ट बाथिंग। स्टीम बाथ, वाटर बाथ, मड बाथ तो सुना था, लेकिन फॉरेस्ट बाथिंग ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? वेल, साइंस कहता है कि जब आप सिर्फ 20 मिनट्स किसी हरी भरी जगह पर या पेड़ों के बीच बैठते हैं तो आपकी बॉडी में स्ट्रेस बढ़ाने वाला जो हार्मोन होता है कॉर्टिसोल हो जाता है उड़नछू। जी हाँ, कॉर्टिसोल हार्मोन्स की ये कार्यस्थानी है जिससे मुख्य रूप से होता है स्ट्रेस। तो वापस मुद्दे की बात पे आते हैं कि कॉर्टिसोल ड्रॉप हो जाता है फॉरेस्ट बाथिंग से। तो डियर कानपुर, बिना किसी फीस के नेचर का ये डॉक्टर है 24 आवर्स आपके साथ, ऐसा खामोश दोस्त जो सिर्फ देना जानता है, और ये दोस्ती सभी के लिए। बात करेंगे पेड़ों के इंटरनेट कनेक्शन की। सुनते रहिए 102.2 FM रेनबो कानपुर।

पेड़ों के किस्से, वुड वाइड वेब, साउंड गुड ना? वेल दोस्तों, जब हम किसी रास्ते से गुजरते हैं तो हमें लगता है कि ये पेड़ तो चुपचाप खड़ा है एकदम, लेकिन इसकी चुप्पी पर मत जाइएगा आप। और क्या आपको लगता है कि 5G के इस दौर में आप ही स्मार्ट हैं जनाब, तो चट से AI से इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं और बन जाते हैं सयाने। यकीन मानिए, आपकी सोच से ज्यादा स्मार्ट है हमारा नेचर, और ये है सीक्रेट दुनिया नेचर की, पेड़ों की, जिसे कहते हैं वुड वाइड वेब। सॉलिड इंटरनेट है पेड़ों का बॉस, और जमीन के नीचे इनकी जड़ों में, रूट्स में फंगस का एक बड़ा नेटवर्क, और साइंटिफिकली उन्होंने इस बात को प्रूव किया है। कैनेडियन फॉरेस्ट इकोलॉजी डॉक्टर सुजेन सरमार्ड ने इस खोज से दुनिया को चौंका दिया, और सीक्रेट दुनिया के दरवाजे खुले। आपको पता है कि पेड़ों के इस वुड वाइड वेब का सेंट्रल हब क्या होता है? जी हाँ, सेंट्रल हब भी होता है। सेंट्रल हब होते हैं हमारे मदर ट्रीज, और फॉरेस्ट के लार्जेस्ट और ओल्डेस्ट ट्रीज जो यंग प्लांट्स को नरिश करते हैं, उन्हें

पोषण देते हैं, उनका जीवन बचाते हैं, बिल्कुल हमारी माँ की तरह जो बच्चों के पालन पोषण में अपना सर्वस्व निछावर कर देती है। तो रूट्स की फंगस के साथ का नेटवर्क का जाल फैला होता है रूट्स में, और इसके साथ पेड़ एक दूसरे से बातें भी करते हैं, रिपोर्ट सेंट्रल हब तक पहुंचाते हैं, एक दूसरे को वार्निंग भेजते हैं, और अगर कोई पेड़ बीमार हो जाए दोस्तों तो आसपास के पेड़ उस ज़मीन के इंटरनेट के साथ उसे न्यूट्रिशन और खाना भी भेजते हैं। और ये नेक काम होता है खामोशी से चुपचाप बिना किसी को बताए। वैसे क्या बातें करते हैं ये।

कभी हवा बातें सुनाती है और दिल से दिल की बात प्रकृति के साथ रसवार स्पेशल शो को वाइंड अप करने का हो गया है टाइम। वो दीजिए अनुमति शिप्रा चंद्रा को रसबहार शो से। चलते चलते एक छोटी सी बात आपसे शेयर कर रहे हैं कि रसबहार शो सुनते सुनते या जब भी आप बाहर जाएं, कोई भी पेड़ या छोटा सा पौधा जो भी आपको दिख रहा है तो प्लीज उसे एक ऑब्जेक्ट की तरह मत देखिएगा। 2 सेकंड के लिए सही उसे छू कर महसूस कर देखना, वो जिंदा है, वो आप ही की तरह सांस ले रहा है, वो धूप में खड़ा है ताकि आपको छाया दे सके, वो चुपचाप पॉल्यूशन को अपने अंदर सोखता है ताकि आपकी सांसें साफ रह सके। तो क्या इस खामोश दोस्ती से बढ़कर इस दुनिया में कोई और दोस्ती हो सकती है? बस इतनी सी बात थी दोस्तों। नमस्कार, सुनते रहिए 102.2 FM रेनबो कानपुर।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
4: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
5: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
7: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने। जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

0: सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: सारेगा पदा निदा पगरेगा मगरेगा सागा।
2: नमस्कार, मैं हूँ अनूप जलोटा। यू आर लिसनिंग 102.2 FM रेनबो कानपुर।
1: पानी रे मा पदा पगरे मगरे गरे सनिदारे।
3: सिटी की म्यूजिकल हार्टबीट के

बात कनेक्ट है, आप 102.2 एफएम रेनबो कानपुर सुन रहे हैं। सुबह के बज रहे हैं 9:45 और विविधा के अंतर्गत लेकर हाजिर हैं हम महफिले कव्वाली। यूसुफ आजाद और साथियों की आवाजों में ये पेशकश पहुंच रही है

जगत में कोख से जब माँ की तूने जन्म लिया तो सबसे कब्र इसी लकड़ी ने तेरा साथ दिया। ज़ईफ दाई ने संसार के हयूले में सुला दिया तुझे लकड़ी के कुछ झूले में। छूटा जो झूला तो लकड़ी की चार पाई मिली, बनी जो लकड़ी के छिलकों से वो चटाई मिली। उम्र में पांच की जब आई मदरसे की घड़ी तो गुरु के हाथ की लकड़ी से पहले आंख लड़ी। नशिस्त लकड़ी की, कुर्सी भी तेरी लकड़ी की, कलम भी लकड़ी का, तख्ती भी तेरी लकड़ी की। हुआ तू 12 बरस का तो और खुली किस्मत, जब और आई तेरे हाथ पांव में ताकत। निकल के घर से गुलिस्तां में जिस घड़ी पहुंचा, उछलता कूदता मैदान में जिस घड़ी पहुंचा, तो अपनी खातिर खुद ही बना।

चूहों के अगर जग से तूने जोग लिया, गले में लकड़ी के मन के खड़ाऊं लकड़ी का, भजन के वास्ते लकड़ी का एक तारा भी, गजा के वास्ते लकड़ी का एक कासा भी, अग्न भी लकड़ी की पूजा प्रार्थना के लिए, नशिस्त लकड़ी की मंदिर में देवता के लिए, ये दाने लकड़ी के तस्बीह में जो है और कुरान जिस पे रखे तू वो रहे लकड़ी की, बना जो शेख तो हर वक्त साथ में लकड़ी, बना इमाम तो मिंबर पे हाथ में लकड़ी, तू जो मरा तो फिर अहबाब ने ये काम किया कि सुला के लकड़ी के तख्ते पे तुझको गुस्ल दिया, बनी जो अर्थी तो अर्थी में भी वही लकड़ी, मसान में भी तेरे साथ ही गई लकड़ी, तेरे जनाजे को देखा तो वो भी लकड़ी का, मिला ये आखिरी साया तो वो भी लकड़ी का, तेरी चिता भी तो लकड़ी बगैर जल ना सकी, अजीब लकड़ी थी मरने पे भी जो टल ना सकी, के कब्र में तुझको

0: इसी के साथ अब महफिल कव्वाली ये प्रोग्राम यहीं पर ख़त्म होता है। सुनते रहिए 102.2 FM रेनबो कानपुर। हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।
1: सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दो दिवसीय दौरे पर तुलसीपुर पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री तुलसीपुर व गैसरी विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। इसी क्रम में मंडलायुक्त दुर्गा शक्ति नागपाल, जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने कल देवीपाटन मंदिर पहुंचकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के दूसरे सर संघ चालक माधव सदाशिवराम गोलवलकर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री शाह ने कहा कि श्री गोवलकर ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को एक मजबूत वैचारिक आधार दिया और सेवा को राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी शक्ति के रूप में स्थापित किया। श्री शाह ने यह भी कहा कि उनके नेतृत्व में संघ ने हर क्षेत्र में जनता को जागरूक करते हुए राष्ट्रीय चेतना को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। वाराणसी में चल रही ब्रिक्स देशों की कल्चरल वर्किंग ग्रुप की बैठक में आज सदस्य देशों के बीच सांस्कृतिक सहयोग के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर विचार विमर्श किया जाएगा। दो दिवसीय इस बैठक का समापन आज होगा। कल उद्घाटन सत्र में विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई, जिसकी अध्यक्षता भारत सरकार के संस्कृति सचिव विवेक अग्रवाल ने की थी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने चयन आयोग ने लेखा परीक्षक एवं सहायक लेखाकार के 1829 पदों पर भर्ती को लेकर सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों में प्रसारित

किए जा रहे दावों को भ्रामक और तथ्यहीन बताया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण संबंधी सभी प्रावधानों का पूर्ण अनुपालन किया गया है तथा पदों का विज्ञापन संबंधित विभागों से प्राप्त अधियाचन और उनकी पुष्टि के आधार पर जारी किया गया है। अंत में 17 जून को अफगानिस्तान और भारत की टीम के बीच लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी काना स्टेडियम में एक दिवसीय मैच खेला जाएगा। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष सचिन आनंद शुक्ला ने बताया कि मैच के टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो चुकी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन आप सुन सकते हैं 11 बजे। सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: आई लग गई यार, घुटना गया लगता है।
2: भाई अब मैच का क्या होगा?
1: अब तो डॉक्टर ही बचाए।
3: खेल के दौरान छोटी चोटें कब बड़ी हो जाती हैं पता ही नहीं लगता, पर चरक हॉस्पिटल के होते हुए टेंशन नहीं।
4: जहां जॉइंट रिप्लेसमेंट और स्पोर्ट्स इंजरी एक्सपर्ट्स आपका रखते हैं पूरा ख्याल।
3: साथ ही जॉइंट प्रिजर्वेशन और पेन रिलीफ के लिए आजमाइए GFC, PRP और स्टेम सेल थेरेपी।
4: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल करें 666-4444।
5: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

और एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। 10:03 हो रहे हैं सुबह के। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। रोली शुक्ला एक बार फिर से आपको कहती है गुड मॉर्निंग। और बस ये म्यूजिक एक्सप्रेस आपके लिए निकल चुकी है, इस पे आप भी सवार हो जाइए और नॉन स्टॉप म्यूजिक एंजॉय करते रहिए। कहीं मत जाएगा, बने रहिए हमारे साथ ओनली ऑन 100.7 FM रेनबो, जो है धड़कन लखनऊ की।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
2: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
1: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
3: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
4: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
3: पाइन पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक

0: विकास में कोई रुकावट ना आए।
1: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-444।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

प्रोग्राम भाई वही सुपर हिट सॉन्ग्स जो आप सुन रहे थे, एक के बाद एक अच्छे अच्छे सॉन्ग्स आपने एंजॉय किए। और फिलहाल मैं अब से कुछ ही देर में फिर एक बार आपके साथ आ जाऊंगी एक न्यूज़ ब्रेक, और उसके पार आपके संदेश और आपके कॉल्स का इंतजार करूंगी। स्टे ट्यून्ड, स्टे म्यूजिकल, ओनली ऑन 100.7 FM रेनबो, जो है धड़कन लखनऊ की।

0: प्रोग्राम की शुरुआत रामधारी सिंह दिनकर की कृति वृक्ष के अंश के साथ। पहली पंक्ति लिखी विधि ने जिस दिन कविता की, पहली पंक्ति लिखी विधि ने जिस दिन कविता की, उस दिन पहला वृक्ष स्वयं उत्पन्न हो गया। प्रथम काव्य है वृक्ष, विश्व के पहले कवि का। प्रथम काव्य है वृक्ष, विश्व के पहले कवि का। विश्व पर्यावरण दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। हमनवा में आज मैं हूँ शिप्रा चंद्रा आपके साथ, और मेरे साथ हैं मेरी हमनवा वृंदा मल्होत्रा।
1: स्वस्थ पर्यावरण समृद्ध जीवन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट कर रहे हैं हम, और आज के इस दिन का उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग के इस दौर में हमें हर स्तर पर इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल को अपनाना है, जी हाँ, और इसकी जागरूकता को जन जन तक फैलाना है। धरती माता की करो रक्षा, यही है सच्ची शिक्षा।
0: बहुत अच्छी बात कही वृंदा आपने, बहुत अच्छे और जागरूक करने वाले संदेश दे रही है वृंदा आप, और हमारे लिसनर्स को भी आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर अपने संदेशों के साथ हम कनेक्ट कर ले प्रोग्राम से।
1: जी बिल्कुल, लेकिन इससे पहले शिप्रा आप ये बताएं कि पर्यावरण है क्या आखिर।
0: बिल्कुल, पर्यावरण क्या है ये पूछा है आपने वृंदा, तो इजी वे में मैं बताऊंगी कि इजी वे में कहें तो पर्यावरण का मतलब हमारे चारों ओर जो कुछ भी हमें घेरे हुए हैं, जैसे हवा, पानी, मिट्टी, पेड़ पौधे, और वो सब कुछ वृंदा जो हमारी जिंदगी को प्रभावित करता है वो ही पर्यावरण है।
1: क्या बात है, बिल्कुल सही कहा आपने। तो इस पर्यावरण को स्वच्छ रखना, प्रदूषण रहित रखना हमारी जिम्मेदारी है। इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर। तो शेयर कीजिए आप हमसे अपने विचार, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कितने सजग हैं आप, भेजिए अपने संदेश।
0: हमारा ईमेल आईडी है AIRKANSOMEDIA@gmail.com। तो प्रकृति से प्रेरित हो, भविष्य के लिए करना है काम, और छोटे छोटे स्टेप्स जो होते हैं डियर रेनबो लिसनर्स, एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तो क्या बदलाव चाहते हैं आप, क्या करना चाहते हैं प्रकृति के लिए, कितने सजग हैं हाँ, आप फटाफट लिख करके भेजिए अपने संदेश हमें। हमारे FB पेज से आप जुड़ सकते हैं, आकाशवाणी कानपुर से, इंस्टा से भी जुड़ सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं अपने जवाब आप, और साथ में ईमेल आईडी तो हमने वृंदा शेयर कर ही दिया।
1: बिल्कुल कर दी है, और अब शेयर कर देते एक बढ़िया सा गाना।
0: क्या बात है,

बड़ा ही खूबसूरत सा गाना प्ले किया आपने। ये कौन चित्रकार है? और वृंदा, मन में यही ख्याल आता है, कभी देखिए आप रंग बिरंगी तितलियों को, फूलों को, समुद्र को, आप आसमान को, और देखिए डूबते सूरज की जो

0: कलर्स होते हैं उसमें, कितना अच्छा कॉम्बिनेशन आता है, कितना खूबसूरत लगता है संध्या का समय, सुबह का
1: बिल्कुल
0: समय। तो मन में ये प्रश्न तो आता ही है कि ये कौन चित्रकार है जिसने सब कुछ बनाया, है
1: क्या
0: ना?
1: बात है। और ये खूबसूरती जो है ना, वो दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाती है अगर आप उसको खूबसूरत नजरों से देखें।
0: बिल्कुल, अगर कहते हैं ना, नजरिया अच्छा होना चाहिए किसी भी चीज़ को देखने। और प्रकृति को तो खुद में ही इतनी खूबसूरत है कि उसकी तो कोई था नहीं है मेरे ख्याल से।
1: जी
0: और अच्छा वृंदा, अब हम आते हैं, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो अपने लिसनर्स को एक थोड़ा सा ये भी शेयर कर दें, कुछ बातें जो हमने सोच के रखी थी ना आपस में।
1: बिल्कुल
0: तो हम सब क्या करते हैं, अपने घर की सफाई तो बड़े मन से कर लेते हैं वृंदा की, बहुत अच्छे से सफाई करनी है हमारा घर, क्योंकि जहाँ स्वच्छता होती है वहाँ अच्छा तो लगता ही लगता है। लेकिन जिस धरती को हम अपना सबसे बड़ा घर कहते हैं, अक्सर उसकी सफाई और देखभाल हम भूल जाते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा शिप्रा। और यही याद दिलाने के लिए हम हर साल 5 जून यानी आज के दिन को सेलिब्रेट करते हैं दुनिया भर में पर्यावरण दिवस के रूप में, यानी कि पर्यावरण जागरूकता जन जन तक पहुंचाने के लिए सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे।
0: बिल्कुल, और वृंदा हमें समझना होगा कि पर्यावरण भी हमारी फैमिली है, ये पेड़, ये पौधे, ये पत्ते, ये बूटे, ये पूरा नेचर, हम इसी फैमिली के एक मेंबर हैं। तो हम एक परिवार हैं, एक ऐसा परिवार जिसमें हवा, पानी, मिट्टी, जंगल, नदियां, पहाड़, पशु पक्षी और हम
1: इंसान
0: इंसान
1: शामिल
0: शामिल
1: हैं।
0: हैं, और हर सदस्य एक दूसरे पर निर्भर है।
1: अच्छा शिप्रा, जब परिवार का कोई एक हिस्सा कमजोर होता है तो कहते हैं ना कि उसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है।
0: जी बिल्कुल सही बात है, उसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है। और वृंदा यहाँ पे मुझे एक छोटी सी स्टोरी याद आ रही है।
1: अच्छा
0: हाँ, कि क्या हुआ कि एक गांव में एक बहुत पुराना बरगद का वृक्ष था, और लोग उसकी छांव में बैठते थे, बच्चे खेलते थे, पक्षी घोंसले बनाते थे, गिलहरियाँ इधर से उधर कूदा करती थी। और एक दिन क्या होता है कि गांव का विकास होना शुरू हो गया। गांव का विकास समझ रही हैं आप? गांव का
1: जी
0: विकास होना शुरू हो गया, तो क्या हुआ कि पक्की सड़कें और पक्के घर, स्कूल, विद्यालय, मतलब सारी चीज़ें बनने लगी। तो क्या हुआ कि इन सब चीज़ों के चलते पेड़ों का कटना प्रारंभ हो गया, शुरू हो गया। फिर धीरे धीरे गांव में इस तरह से जब पेड़ कटते गए तो गर्मी बढ़ती गई, पक्षी गायब हो गए, और बरसात का पानी भी पहले जैसा नहीं रहा।
1: अच्छा,
0: तो
1: यानी शिप्रा कहना चाहिए कि एक पेड़ के जाने से बहुत कुछ चला गया।
0: बहुत कुछ चला गया, और देखा जाए कितने जीव जंतुओं का संसार ही चला गया। वो नन्हे परिंदे जिनको देख करके जो हमें पहचानते थे, हम उन्हें पहचानते, कभी कभी ऐसा होता है वो नहीं दिखते हैं, तो कितना अजीब सा लगता है मन में। और इसीलिए कहा जाता है कि पेड़ केवल ऑक्सीजन नहीं देते हैं, वो जीवन देते हैं।
1: अच्छी बात ये है शिप्रा कि भारत में कई लोग और समुदाय पर्यावरण संरक्षण के लिए काफी काम कर रहे हैं, और कहना चाहिए कि शानदार काम कर रहे हैं।
0: जी
1: और
0: बिल्कुल,
1: ऐसी ही एक एनवायरमेंटलिस्ट आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं हमारे प्रोग्राम में, राधिका आनंद जी, तो आइए उनसे बात करते हैं।
0: जी
2: बहुत सालों से मैं एनवायरमेंटलिस्ट हूँ, पर 2015 से मैंने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया जिसका नाम है मिशन फल वन। फल वन आप सब समझते होंगे, फ्रूट फॉरेस्ट, फलों का के वन। आइडिया ये था कि पेड़ तो सब लगाते हैं, पर अब पेड़ों के साथ अगर हम फलों के पेड़ लगाएं तो हर किस्म के जो स्पीशीज हैं हमारे, उन सबको फायदा हो, चाहे वो बर्ड्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, चाहे हम लोग हैं, हर किसी को फल खाने को मिले। एक बार कई मेरे साथ ट्रेन जर्नी में कोई साथ मेरे बैठे थे और वो निकले आर्मी से, उन्होंने मेरा साथ दिया और मैंने सबसे पहले अपने मिशन फलवन को आर्मी के सहयोग के कारण पंजाब में शुरू किया लगाना, और वहाँ से फिर मेरे साथ NSG जो हमारे कमांडोज हैं वो जुड़ गए, वहाँ से मेरे को CISF के साथ हो गया मेरा सहयोग, और अब BSF के साथ। तो 11 स्टेट्स में मैं पौधे लगा चुकी हूँ इंडिया में, और अभी तक मैंने 2,20,000 फलों के पेड़ लगा लिए हैं। और यही कहना चाहती हूँ कि अपने माँ के लिए, धरती माँ के लिए जरूर कुछ करिए, जरूर कुछ करिए।
1: अच्छा, कितनी अच्छी बात कही है शिप्रा इन्होंने कि जरूर कुछ करिए अपनी माँ।

0: के लिए, अपने पर्यावरण के लिए जरूर कुछ करिए। राधिका आनंद जी आज हमारे साथ जुड़ी हुई थी। तो हमें क्या है कि इन सब चीज़ों को समझना होगा, एक आम नागरिक होने के नाते हमें भी छोटी छोटी चीज़ें करके एक कहते हैं ना कि भागीदारी निभानी होगी।
1: बिल्कुल, और कानपुर आज पर्यावरण संरक्षण का अपना काम कर रहा है, पौधारोपण हो रहा है CSC से लेकर के यूनिवर्सिटी में, और वृंदा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में आज पौधारोपण के कार्यक्रम हुए, अब तक तो हो भी गए होंगे, और कानपुर जागरूक है वाकई पर्यावरण के लिए। और कल हम देखेंगे कि सोशल मीडिया पे आज ही से स्टार्ट हो जाएगा कि कितने लोगों ने पर्यावरण किया, तो देख करके गुड फील होता है। हाँ। फील गुड होता है। और वृंदा, आज हमारे देश के कई युवा नदी सफाई, वृक्षारोपण और प्लास्टिक मुक्त अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं।
0: अच्छा, हमारे ये युवा जो हैं वो ग्रीन हीरोज का काम तो कर ही रहे हैं, और साथ ही साथ हमारी सरकार भी इसमें उनकी काफ़ी मदद कर रही है और लगातार कई कदम उठा रही है। जैसे देखा जाए शिप्रा, तो स्वच्छ भारत मिशन, नमामि गंगे कार्यक्रम, ग्रीन इंडिया मिशन, मिशन लाइफ, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, कैसे ये सारे अभियान जो हैं हमें चेंज कर रहे हैं। हमारे कहना चाहिए कि हमें कहीं ना कहीं प्रकृति के प्रति जो प्रेम है ना, उसके लिए एक बार फिर से जागरूक कर रहे हैं।
1: बिल्कुल, जागरूकता बहुत ज़रूरी है। हम सब मिल करके जब इस प्रयास को बढ़ाते हैं तो ये देखने में एकदम शानदार काम होता है। पर्यावरण संरक्षण में एक भागीदारी हम भी निभाते हैं, और अगर हमने कुछ किया है पर्यावरण के लिए तो कहीं ना कहीं गर्व की अनुभूति भी हमें होती है। तो एक पेड़ लगाएंगे, पानी की बर्बादी नहीं करेंगे, कुछ ऐसे आज के दिन रेजोल्यूशन लेने चाहिए।
0: हाँ,
1: है ना?
0: बिल्कुल।
1: प्लास्टिक का कम से कम यूज़ करेंगे, और जहाँ पॉसिबल हो पैदल या साइकिल का इस्तेमाल करेंगे।
0: तो आप भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कि आज आपने ऐसा कौन सा काम किया है, या इससे पहले आप पर्यावरण की रक्षा के लिए क्या क्या कर चुके हैं या करना चाहते हैं। हमारी ईमेल आईडी है aarkansometia@gmail.com।
1: जी बिल्कुल, और हमारी ईमेल आईडी है, मैसेजेस भेजिए, आपके मैसेजेस का हम कर रहे हैं इंतज़ार। और वृंदा, अब हमारे लिसनर्स को ज़्यादा इंतज़ार करवाना ठीक नहीं है, एक बड़ा ही प्यारा सा खूबसूरत गाना वृंदा ने क्यों कर रखा है, पहुंच रहा है आपके रेडियो और मोबाइल सेट्स पर। ये रहा

0: 102.2 FM रेनबो कानपुर सुन रहे हैं आप। प्रोग्राम चल रहा है हम नवा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे स्पेशल प्रोग्राम है। मैं हूं शिप्रा चंद्रा आपके साथ और मेरे साथ है मेरी को होस्ट कम दोस्त वृंदा मल्होत्रा। तो वृंदा, आज विश्व पर्यावरण दिवस मना रहे हैं हम, तो जब हमारे परिवेश की बात होती है, प्रकृति की बात होती है, तो कुछ खूबसूरत नज़ारे खुद ब खुद आंखों के सामने आ जाते हैं। जैसे कि अभी आपने ये गाना चलाया था, तो आंखों के सामने वही नीले गगन के तले, धरती का प्यार पले, धरती की खूबसूरत तस्वीर आंखों के सामने आ रही थी।
1: बिल्कुल, ऊंची ऊंची शांत, किसी भीगी की अगर देखा जाए तो योगी की तरह समाधिस्थ, हरी भरी खूबसूरत वादियों की अगर हम बात करें शिप्रा, शीतल चंचल हवाएं, चिड़ियों की चहचहाहट, फूलों पर मंडराते भंवरे, रंग बिरंगी तितलियां। अच्छा, ये सारी चीज़ें सोच कर मन अपने आप ही शांत हो जाता है। और प्रकृति की खूबसूरती की बात करूं अगर मैं, तो प्रोग्राम का टाइम मुझे लगता है ओवर ही हो जाएगा, तो मैं अभी ज़्यादा बात यहाँ पर नहीं करूँगी।
0: हाँ बिल्कुल, आप बोलती जा रही थी और मेरे सामने सारी चीज़ें आती जा रही थी। और सच है, प्रकृति की अद्भुत चित्रकारी, दुर्लभ प्रजातियाँ, फूल फल, नदियाँ, बातें तो इतनी है वृंदा की इसकी गहराई की थाह नहीं है। तो अच्छा वृंदा, हम अपने इर्द गिर्द स्वच्छता चाहते हैं, खूबसूरत नज़ारे चाहते हैं जैसे कि अभी हमने बात करी, लेकिन इसे इसी तरह बरकरार रखने में हमारा कितना योगदान है, ज़रा ये भी बताइए।
1: ये बिल्कुल सही कहा आपने, जागरूकता है ज़रूरी। और शिप्रा, गंगा किनारे अपने कानपुर में जब गंगा घाट पर सुकून के लिए जाते हैं ना, और या फिर अगर हम बात करें दिवालियों की, तो वहाँ पर दर्शन के लिए जब हम जाते हैं तो देखने को मिलता है कि श्रद्धा तो अटूट है, फूल पूजन सामग्री का इस्तेमाल भी किया गया है, लेकिन इसके बाद क्या,
0: उसे वही छोड़ करके हम तो चल दिए।
1: हाँ, ये बिल्कुल सही कह रही हैं। और उस स्थान पर उसके बाद क्या होगा, अब ये भी हमें सोचना चाहिए।
0: बिल्कुल, चढ़े हुए फूलों के अंबार लगे हैं भाई, और कहीं उन्हें तालाबों में, नदियों में विसर्जित किया जा रहा है, जिससे प्रदूषण बढ़ रहा है और जलीय जीवों को खतरा भी हो रहा है। तो कभी कभी मैं देखती हूँ कि प्लास्टिक की थैलियाँ भी, इस तरह की सामग्री वहाँ पड़ी रहती है और उन्हें जानवर भी खा जाते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हमारे सामने आ जाते हैं। लेकिन कानपुर में जागरूकता की भी कमी नहीं है वृंदा।
1: ये तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और हमनवा में हम आज पहुंचे हैं उम्मीदों की उड़ान सेगमेंट में, और अब जिक्र करने जा रहे हैं प्रोग्राम में एक ऐसी ही हस्ती का जिनके योगदान के कारण गंगा घाट, धार्मिक स्थल और ये सारी जगह जो है ना, वो दिल खुश कर देने वाली हो जाती हैं। और हम बात कर रहे हैं करण रस्तोगी जी की। जी हाँ, जिन्होंने एक पॉजिटिव सोच के साथ फ्लावर वेस्ट को साफ करने का बीड़ा उठाया। करण रस्तोगी जिनकी सोच के कारण, उनके काम के कारण बहुत से लोगों को, स्पेशली हमारी महिलाओं को मिला काम और वो हुई आर्थिक रूप से स्वावलंबी।
0: तो फ्लावर वेस्ट की स्टोरी बदली रिसाइकल के साथ हमारे कानपुर के करण रस्तोगी के कारण। वृंदा, जब हमारे सामने आता है कोई क्वेश्चन मार्क, तो वहीं से एक चीज और निकल कर बाहर आती है और उसे क्या कहते हैं,
1: आइडिया।
0: क्या बात है। और बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन मार्क आया करण रस्तोगी के सामने,
1: और ये तब आया जब उन्होंने मंदिर जाते टाइम नोटिस किया कि टनों फूल जो हैं हर दिन या तो नदियों में बहा दिए जाते हैं या फिर इकट्ठा होकर गंदगी का कारण बनते हैं। बस वहीं से ये आइडिया आया उनके माइंड में कि क्यों ना फ्लावर रिसाइकिल कर दिया जाए और ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए जाएं जो लोगों के काम भी आए और लोगों को रोजगार भी मिले, जैसे कि अगरबत्ती, धूप बत्ती, वर्मी पोस्ट बनाए जाएं और इससे आगे चलकर रोजगार भी मिल रही है लोगों को और साथ ही साथ हमारे काम भी आ रहे हैं।
0: हाँ, और इसी सोच के कारण करण रस्तोगी और उनकी टीम हर दिन टनों फूलों का वेस्ट इकट्ठा करती है और उसे बेहतरीन प्रोडक्ट्स में बदलती है, जिन प्रोडक्ट्स के आपने नाम लिए वृंदा, और उनके इस काम के लिए उन्हें कई अवार्ड से भी नवाजा गया है।
1: बिल्कुल, कचरे से खुशबू बिखेरने की भी कहानी जो है काफी प्रेरणादायक है इनकी।
0: और पता है वृंदा, उनकी उस स्टोरी का सबसे खूबसूरत पार्ट जो दिल को छू जाता है वो क्या है कि इस काम से कानपुर और आसपास के ग्रामीण इलाकों की महिलाओं को रोजगार मिला है।
1: जो महिलाएं पहले समाज के हाशिए पर थीं,

0: आज गर्व से कमा रही हैं, उनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं। और करण रस्तोगी जी ने एक अच्छी सोच के साथ इसको आगे बढ़ाया है और ये दिखाया है कि आस्था और पर्यावरण दोनों की रक्षा एक साथ भी की जा सकती है।
1: इसी जज्बे के साथ आज हम नवा से कनेक्ट हो रहे हैं। करण रस्तोगी बता रहे हैं अपनी बात।
2: मेरा नाम करण रस्तोगी है, हेल्प एस ग्रीन का फाउंडर हूँ। हम लोग मंदिर के जितने भी फूल होते हैं, शादियों में या घर में जितने ही फूल होते हैं, हम उसको कलेक्ट करके हम उनसे अगरबत्ती और गुलाल बनाते हैं। और आज हम एक अच्छे मुकाम पे पहुंच चुके हैं। हाँ, मुझे ये प्रेरणा आई थी जब कोई भी अपने किसी भी मोहल्ले के नियर बाय मंदिर में जाते हैं, आप वहीं से आया कि हम उसको, इन फूलों को हम क्या बेहतर कर सकते हैं जिससे कुछ रोजगार भी जनरेट हो जाए और एक प्रोडक्ट भी बन जाए, तभी हमारा हेल्प एस ग्रीन की शुरुआत हुई। मैम, इसमें जो सहयोग मिलता है, हम लोग जितनी भी महिलाएं होती हैं, हमारा सारा टीम विमेन ओरिएंटेड है। और अभी हमारे पास करीब करीब 123 महिलाएं हैं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। उनका जो डेडिकेशन है और उनकी जो काम करने की दृढ़ निश्चय है उनका, उधर आज उन्हीं की वजह से शायद हम लोग आज यहाँ तक पहुंचे। मैम, जीरो वेस्ट एक ऐसी थ्योरी है कि एक हमारी आरती में एक बड़ी अच्छी चीज आती है, तेरा तुझको अर्पण। जो फूल आज सुबह हमने मंदिर में चढ़ाए, वही कल सुबह उसको हम उठा के, उसको सुखा के उसी की अगरबत्ती बना देते हैं, जो फिर हम मंदिर के काम में यूज करते। तो जीरो वेस्ट सॉल्यूशन, सर्कुलर इकोनॉमी, हम अगर ये इन सब बारों में नहीं सोचेंगे तो हम आगे वाली जनरेशन को क्या देके जाएंगे। हमारी वेबसाइट है www.helpersgreen.com। आजकल सब लोग मोबाइल सेवी या टेक्स सेवी हो गए हैं, आप उसमें जाइए, अपनी क्वेरी रेस करिए और हमारी टीम उनसे तुरंत बात कर लेगी। और सिंपल फिलॉसफी है, वेस्ट इज द न्यू रिसोर्स। तो हमने एक ऐसी पैकेजिंग बनाई थी जिसमें कि हमने अगरबत्ती को तुलसी के बीज का एक डब्बा बना के उसमें रखा था, तो उसका सिर्फ एक सिंपल कंसर्न था, जैसे ही आपकी अगरबत्ती खत्म होती है तो यूजली हम पैकेट फेंक देते हैं, वो पैकेट फेंके ना, उसको हम अगर फिर से उस पैकेट को अपने घर के गमलों में या क्यारी में डाल देंगे तो उसमें तुलसी के हमने बीज डाले थे ताकि तुलसी का पौधा उग जाए। और तुलसी का पौधा हर पैमाने में हमेशा शुभ माना गया है और उसकी मेडिसिन वैल्यूज भी बहुत है। मैं तो मैम कहूँगा रिड्यूस रिफ्यूज एंड रिसाइकिल। हम जितना से जितना कम वेस्ट कर सकें, जितना से जितनी चीजें, अब जो हम लोग बहुत जल्दी, आजकल फास्ट फैशन का जमाना है, हम लोग बहुत जल्दी अपने कपड़े हटा देते हैं, उस चीजों पे ना जाके चीजें को थोड़ा लॉन्गर ड्यूरेशन के रखें और रिसाइकिल पे और ज्यादा अच्छी तरह से ध्यान दें, तो आज शायद हम सबके लिए ही एक बहुत अच्छी मुहिम होगी और इस देश के लिए और इस प्लैनेट के लिए बहुत अच्छी मुहिम होगी। आकाशवाणी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका मैम, और आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया जिसके कारण मैं आज सबको एक संदेश दे सकता हूँ, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ।

0: शिप्रा, अभी इन्होंने पानियों की बात की और नदी तालाब इन सब की याद आ जाती है ना जब इस तरह के गाने सुनो तो
1: जी।
0: तो ऐसा ही कुछ मैसेज मैं देख पा रही हूँ अपनी स्क्रीन पर आया हुआ है, हमें ईमेल किया है, ये है गीता सेठ और ये लिखकर भेज रही हैं कि तालाबों से सभी को लाभ है, पशु पक्षी जानवर पानी पी सकते हैं, तालाबों के किनारे पेड़ पौधे होते हैं, इसे पर्यावरण हरा भरा और सुंदर बनता है। पहले मनुष्य के लिए तालाब ही पानी के सबसे प्रमुख स्रोत थे, गाँव में कई तालाब होते थे और अब गाँव में लोग तालाब ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं और धीरे धीरे करके ये घट रहे हैं। तालाब को बचा कर रखें क्योंकि जीवों के पानी पीने के लिए तालाब ही गर्मियों में इनके लिए सरोवर का काम करते हैं। क्या बात,
1: इनका तारुफ जरा ढंग से कराइए, देखिए क्या लिखा है, मिसेस गीता सेठ FM दीवानी,
0: अरे वाह
1: ये लिखा हुआ है। और इसी के साथ और भी मैसेजेस हम तक पहुँचे हैं और ये है आंचल अंकित सेठ का रायबरेली से
0: जी। और ये आंचल लिखकर भेज रही हैं हमें, भारतीय संस्कृति में पर्यावरण के संरक्षण को बहुत महत्व दिया गया है, यहाँ मानव जीवन को हमेशा मूर्त या अमूर्त रूप में पृथ्वी जल वायु आकाश सूर्य चंद्र नदी वृक्ष और पशु पक्षी आदि के सहचार्य में ही देखा गया है। पर्यावरण शब्द का अर्थ है हमारे चारों ओर का आवरण, पर्यावरण संरक्षण का तात्पर्य है कि हम अपने चारों ओर के आवरण को संरक्षित करें और उसे अनुकूल बनाएं।
1: बिल्कुल आंचल सेठ बिल्कुल सही बात लिख रही हैं कि इसका संरक्षण करना है ज़रूरी और इसे अनुकूल बनाना भी है ज़रूरी। और साथ में सोनू परवाना की मेल भी दिख रही है, अर्जित सेठ हैं साथ में जिन्होंने प्लास्टिक के बारे में लिखा है कि प्लास्टिक एक प्रकार का प्रदूषण है जो पर्यावरण को हानि पहुँचा रहा है और जिससे ये पृथ्वी पर जीवन के लिए एक गंभीर संकट बन गया है, इसलिए प्रदूषण को कम करने के लिए प्लास्टिक से दूरी बनाना आवश्यक है। प्लास्टिक बैगों के लिए भूमि वायु और जल प्रदूषण इनके कारण उत्पन्न होता है और इन्हीं वजह से कई देशों में ये प्रतिबंधित है। तो बहुत सारे मैसेजेस हमें मिल रहे हैं वृंदा, और यहाँ पे अब ये जो हमारे मैसेजेस हैं हमारे FB पेज के, ये भी शेयर कर लिए जाएं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, हम शेयर करते हैं ये मैसेजेस भी। तो ये हमारी शिप्रा जी के लिए मैसेज आया है और ये लिखकर भेज रहे हैं कि शिप्रा चंद्रा महोदया सादर सप्रेम नमस्कार।
1: नमस्कार अनिल कटियार जी।
0: जी अनिल कटियार जी लिखकर भेज रहे हैं कि पर्यावरण के क्षेत्र में हम सबको जागरूक होना अति आवश्यक है। आज के युग में पेड़ों की कटान, मिट्टी की खदानें और मिट्टी का कटान इसका सबसे बड़ा कारण है। हम लोग पॉलिथिन का बहिष्कार नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ी सी सहूलियत के लिए हम लोग दुकान और सब्जी मंडी में पॉलिथिन मांग लेते हैं। इससे हम लोगों को खुद सुधार करना होगा और अपने घर से या बैग लेकर ही बाजार जाना होगा।
1: बहुत ही अच्छा संदेश दिया है अनिल कटियार जी ने और साथ में जाकिर मंसूरी भी जुड़े हैं कार्यक्रम से लिख रहे हैं। पर्यावरण के लिए हम सभी को बराबर के सहयोग करना होगा, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, अपना अमूल्य जीवन बचाएं, साथ ही पॉलिथीन का प्रयोग बंद करें और इससे हमारा पर्यावरण और भी दूषित होगा। अच्छा वृंदा, मैंने आज एक सवाल भी पूछा था अपने लिसनर से कि एक प्लास्टिक बॉटल कितने सालों में खत्म होती है जो यूज करके हम डाल देते हैं, तो इसका आंसर बहुत ही तेजी से हमें प्राप्त हुआ था सुबह ब्रस पहाड़ प्रोग्राम में, और इसका आंसर था कि 450 प्लस ईयर्स में, यानी कि आप सोचिए कि कितनी पीढ़ियां गुजर जाती हैं जब एक प्लास्टिक की बॉटल जो होती है वो डिकम्पोज होती है। और वापस आते हैं अपने मैसेजेस की तरफ, रामचंद्र मखीजा भी जुड़े हुए हैं प्रोग्राम के साथ, ज्योति वर्मा कानपुर से कनेक्ट है और आप सभी के साथ वृंदा एक बहुत ही प्यारे से मैसेजेस जो हमारे नौ निहालों ने भेजे हैं आज पर्यावरण दिवस के अवसर पर वो भी शेयर कर दिए जाए।
0: बिल्कुल,
2: मेरा नाम श्रेयस त्रिवेदी है, मैं आज आप सभी के समक्ष एक कविता सुनाने जा रहा हूँ जो विश्व पर्यावरण दिवस को समर्पित है। पेड़ लगाओ जीवन बचाओ, क्योंकि पर्यावरण की रक्षा मानवता की सुरक्षा।
3: मेरा नाम अभियान त्रिवेदी है, मैं पर्यावरण दिवस पर आपको एक संदेश देना चाहता हूँ। पर्यावरण चेतना से जागे हिंदुस्तान, मिट्टी पानी हवा रही तो कुदरत की पहचान, बढ़ता लालच कर देगा इस धरती को सिंचन।
4: हेलो everyone. I am Samavi Saxena. On this World Environment Day, let's join hands to protect our planet. Every small action, planting a tree, saving water, and reducing waste can make a big difference. Together, we can create a greener, cleaner, and healthier future for generations to come. Thank you and happy World Environment Day.
5: कक्षा 6 का छात्र आप सभी से आज यह कहने आया हूँ कि प्रकृति का संरक्षण बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम प्रकृति नहीं बचाएंगे तो हमें आगे आने वाली अपनी पीढ़ियां या अपने आगे आने वाली जिंदगी में काफी मुश्किलें होंगी। अगर मैं कभी अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल करने जाता हूँ, हम लोग अपना कूड़ा कचरा, अगर वो रिसाइकलेबल है तो उसे रिसाइकल करते हैं, रीयूज करते हैं। अगर रिसाइकलेबल नहीं है तो जब तक कोई कूड़ादान या डस्टबिन नहीं आ जाता तब तक उसे अपने पास ही रखते हैं। डस्टबिन आने के बाद हम उसे फेंक देते हैं। और अगर मुझे ऐसा कोई करता दिखता है तो मैं उसे भी रोकता हूँ, क्योंकि हमारे एनवायरमेंट के लिए ये सही नहीं है। आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा कि एनवायरमेंट इज द की फॉर अ बेटर लाइफ। एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि हम लोगों को ऐसे ही छोटे छोटे काम करने चाहिए जो किसी बड़े काम को, बड़े रेवोल्यूशन को लाएं, जैसे छोटी छोटी बूंदें एक सागर को बनाती हैं। थैंक यू।

0: तो वृंदा, जंगल जंगल ये बात पता चल गई है कि चड्डी पहन के फूल खिला है और बड़ा ही प्यारा सा गाना गुलजार कर लिखा हुआ पहुंचा अब तक हम नवा प्रोग्राम में। और बात हो रही है वृंदा जंगलों की, वनों की, तो ये क्या है, हमारी धरती का हृदय है, हार्ट है।
1: जी बिल्कुल। अच्छा, ये जो अभी आपने गाने की बात कही है, तो ये गाना जिस फिल्म से लिया गया है, और जिन्होंने ये गाना नहीं कहेंगे, ये बुक की जो कहानी थी, वो जो
0: जी जी
1: लिखी थी
0: जी
1: जो बुक, उससे भी कुछ वो किसी जगह से इंस्पायर्ड हुए थे, तो उसकी भी अभी हम बात करने जा रहे हैं अपने प्रोग्राम
0: जी
1: में।
0: बिल्कुल। और किस बुक से इंस्पायर्ड हुए थे, जरा आप भी सोचिए। हमारे लिसनर्स हम आपको ये बातों बातों में अभी बताएंगे, लेकिन एक पल के लिए आप भी सोचिए कि ये जो गाना है जंगल बुक फिल्म का है, ये हमने आपको एक छोटा सा क्लू दे दिया है। और किसने लिखी
1: जी
0: है ये बताएंगे हम आपको बातों ही बातों में।
1: जी बिल्कुल।
0: तो वृंदा, हमारा देश दुनिया के कुछ चुनिंदा देशों में हमारे देश का नाम है, जहाँ जैव विविधता बेहद समृद्ध है। हिमालय की बर्फीली चोटियों से लेकर पश्चिमी घाट के घने जंगलों और सुंदरबन के मैंग्रोव वनों तक अनगिनत जीव जंतु और वनस्पतियाँ यहाँ हैं।
1: सही बात है शिप्रा। और ये जैव विविधता यानी कि जो बायोडायवर्सिटी होती है, जैसे कि चिड़िया, पेड़, तितलियाँ, जानवर, नदियाँ, जंगल, ये सब ना हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। हमें स्वच्छ हवा देना, पानी देना, खाना, मेडिसिन, स्वस्थ पर्यावरण, ये सब ना हो तो कैसे मिलेगा?
0: बिल्कुल, सब कुछ इंटरकनेक्टेड होता है, और तभी तो इन्हें सुरक्षित और संरक्षित रखना भी बहुत ज़रूरी होता है।
1: जी
0: और इसीलिए तो बनाए गए हैं हमारे नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज।
1: और अगर हम अपने भारत की बात करें, तो वन्य जीवों और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करने के लिए हमारे भारत में कई फेमस नेशनल पार्क्स हैं। और अगर उसकी हम सबसे पहले नेशनल पार्क की बात करें, तो 1936 में हेली नेशनल पार्क जो था वो बनाया गया था पौड़ी गढ़वाल रीजन में। और पौड़ी गढ़वाल रीजन यानी उत्तराखंड में था ये, और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की हम बात कर रहे हैं, जिसका नाम चेंज हो गया था बाद में। और इसकी और बहुत सारी खूबियां हैं, हमारे लिसनर्स काफ़ी कुछ इसके बारे में जानते भी होंगे कि ये रॉयल बंगाल टाइगर्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, और बाघों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर अभियान भी यहाँ चलाया गया था।
0: जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान
1: जी
0: और गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात के बारे में भी लिसनर्स से शेयर कर दिया जाए।
1: जी गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, ये एशियाटिक लायन दुनिया भर में उसके लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और जिसकी अभी हम बात कर रहे थे शिप्रा, वो था हमारा क्या,
0: क्या
1: द जंगल बुक।
0: जी बिल्कुल, रुडयार्ड किपलिंग की
1: जी,
0: लिखी हुई बुक है ये, द जंगल बुक।
1: और ये किस जगह से इंस्पायर्ड थी, उसी के बारे में अब हम बात करने जा रहे हैं। और ये थी हमारे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो मध्य प्रदेश में है, उससे इंस्पायर्ड थी। और ये कहा जाता है कि बारहसिंगा के कंजर्वेशन के लिए भी विश्व प्रसिद्ध है।
0: और एक सींग वाले गैंडे कहाँ मिलते हैं, जरा ये भी बता दीजिए आप, जो जगह फेमस है इसके बारे में।
1: हाँ, काजीरंगा नेशनल पार्क को हम कैसे भूल सकते हैं,
0: जी
1: और
0: बिल्कुल,
1: असम में है ये।
0: हाँ। और ये एक सींग वाले गैंडों की सबसे बड़ी आबादी के लिए फेमस है वृंदा, और वही जानवरों के लिए एक सुरक्षित जगह का काम करती हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, यानी कि वन्य जीव अभयारण्य, जहाँ नेशनल पार्क की तुलना में कुछ लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज़ की इजाज़त होती है। बिल्कुल लिमिटेड होनी भी चाहिए, जिससे कि हमारे वन्य जीव जो है फ्री होकर के घूमें, उनका घर है।
1: बिल्कुल। और हमारे इन वन्य जीवों को संरक्षित करने के लिए बहुत सारे, हमारे भारत में बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जो काफ़ी फेमस हैं, जिनकी हम बात कर लेते हैं यहाँ पर।
0: बिल्कुल, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य गुजरात, जहाँ पे 250 से ज़्यादा प्रजातियों के प्रवासी पक्षी पाए जाते हैं।
1: और पेरियार वन्य जीव अभयारण्य केरल में है, और ये एशियाई हाथियों बाघों के संरक्षण के लिए जाना जाता है। पेरियार लेक है यहाँ पर, ट्रैकिंग के लिए फेमस है बैम्बू।

0: राफ्टिंग और नाइट सफारी के लिए भी काफ़ी फेमस है। और वहीं अगर बात करें कर्नाटक के एक बहुत ही ज़्यादा फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की,
1: बिल्कुल रंगनाथ थिट्टू पक्षी अभयारण्य, कर्नाटक का पक्षी काशी भी कहलाता है।
0: और अच्छा, जब यहाँ पर जाओ ना शिप्रा, तो आप पक्षियों को करीब से देख सकते हैं बोटिंग करते हुए। आप बैठ कर जाएंगे और आप पक्षी देख रहे हैं,
1: तो मुझे मन कर रहा है कि मैं बस जल्दी से पहुंच जाऊं यहाँ से वहां पर। और बोटिंग की बात इस गर्मी में बहुत ही अच्छी बात लग रही है, और पक्षियों को देखना इससे अच्छा क्या मतलब सुखद हो सकता है।
0: बिल्कुल। और एक सुखद बात और बताना चाहूंगी मैं यहाँ पर, कि जो हमारे भारत के फेमस पक्षी विज्ञानी हैं डॉक्टर सालिम अली जी, उनकी दूरदर्शिता की वजह से ही 1940 में इस जगह को सेंचुरी घोषित किया गया था, और रामसर साइट का दर्जा भी इंटरनेशनली इसे मिला है।
1: बिल्कुल, रामसर साइट का दर्जा मिल गया है, और बहुत तेजी से रामसर साइट्स जो हैं अब हमारे इंडिया में हाईलाइट हो रही हैं।
0: बिल्कुल,
1: है ना। और हर साल हजारों प्रवासी पक्षी हजारों किलोमीटर दूर से इन सभी जगहों पर आते हैं, तो प्रकृति का अद्भुत चमत्कार तो है ही ये।
0: बिल्कुल है। और अच्छा, ऐसे ही बायोस्फीयर रिजर्व्स भी पूरे हमारे पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा करते हैं, जैसे बहुत सारे फेमस हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स,
1: नीलगिरी है, सुंदरबन, नंदा देवी, पंचबड़ी, तो बहुत सारे बायोस्फीयर रिजर्व हैं। और नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई, बायोस्फीयर रिजर्व्स हो गए, सब होने के बहुत सारे फायदे भी हैं। और ये फायदे आप बताइए वृंदा हमारे लिसनर्स को।
0: बिल्कुल, वन्य जीवों को अच्छा एक तो सुरक्षित आवास तो मिलता ही है, साथ ही साथ पर्यावरण संतुलित भी बना रहता है, और टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है, लोकल रोजगार मिलता है, साथ ही साथ जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उनके लिए एक प्राकृतिक धरोहर भी बनती है।
1: तो तभी तो क्या है वृंदा, हमारी सरकार भी इन्हें बचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट लॉयन, प्रोजेक्ट एलिफेंट, भारतीय गैंडा संरक्षण, ये सारे प्रोजेक्ट्स चलाती है। तो कहीं ना कहीं हमारी भी जिम्मेदारी हो जाती है कि हम भी इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, कि कहीं जाएं तो हमें स्वच्छता रखनी है और वन्य जीवों को डिस्टर्ब नहीं करना है। जो अपने घर में सुकून से रह रहे हैं, भला किसे डिस्टर्ब करना अच्छा लगता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही बात है।
1: और इसके अलावा राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण भी जैव संसाधनों के संरक्षण के लिए काम करता है। विश्व की कुल भूमि का लगभग 2.4% हिस्सा रखता है, और दुनिया की लगभग 8% जैव विविधता भारत में ही पाई जाती है। और वृंदा मैं देख रही हूँ एक मैसेज पॉपअप हो रहा है हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर भैया मोनू सेठ का, तो ये भी आप पढ़ दीजिए।
0: अच्छा, ये मोनू सेठ जी क्या लिखकर भेज रहे हैं, इन्होंने भी पौधों के बारे में लिखा है, बहुत ही अच्छी लाइन्स हैं ये। पौधे तो हमने बहुत लगाए हैं, पर कुछ पौधे चल पाए, कुछ सूख गए, कुछ को जानवर खा गए, और पानी बचाने की बात तो हम झगड़े में ही उसको निपटा देते हैं।
1: और गहरी बात लिख रहे हैं भैया मोनू सेठ जी आप।
0: और पानी की बर्बादी पर एक तो हर घर जल योजना में भी लोग जो है पानी की बर्बादी को रोकते हैं, शादी विवाह में बोतल में आधा पीते हैं, आधा बहा देते हैं, जो बिल्कुल गलत है। बहुत सही बात कही है इन्होंने। कुछ दिनों बाद आप सभी को नींबू और जामुन जरूर पहुंचाएंगे। आहा, ये लिख रहे हैं कि क्योंकि अपने जन्मदिन पर जो पौधे लगाए थे वो बड़े हो रहे हैं।
1: बहुत ही प्यारी सी बात लिखी है, और मुझे लगता है कि अपने हर जन्मदिन पर पौधा ज़रूर लगाना चाहिए, और उसको आप एक नाम भी दे सकते हैं, अपना दोस्त बना सकते हैं, अपना साथी बना सकते हैं। तो जैसे जैसे वो पौधा बड़ा होगा, आप उसको नाम से पुकारेंगे, तो एक अलग सी फीलिंग आएगी। और वृंदा यहाँ पे एक बात मैं और शेयर करना चाहूँगी कि इन्होंने जन्मदिन की बात लिखी है, तो जन्मदिन हो या मैरिज एनिवर्सरी हो, अगर हम किसी को एक प्लांट गिफ्ट करें तो कैसा रहेगा?
0: बहुत अच्छा रहेगा, और साथ ही साथ उसको फिर उसका संरक्षण करना भी बहुत ज़रूरी है।
1: जी,
0: पौधा लगाने के साथ साथ हम उसकी उतनी ही अच्छी देखभाल करें, जैसे अभी आपने कहा देखभाल करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं देख पा रही हूँ कि देविन तालाब लालपुर सरजापुर से भी एक मैसेज है।
1: टीएस चंदेल, खुशबू सिंह चंदेल, निष्ठा रौनक, कार्तिक भारत सिंह चंदेल पूरी फैमिली के साथ हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। इन्होंने लिखा है पर्यावरण पर, और मैं यही कहना चाहूँगा कि आओ मिलकर पेड़ लगाएं, इस धरती को हरा भरा बनाएं, खुली हवा में ले सांसें और बीमारी को दूर भगाएं। आओ मिलकर पेड़ लगाएं, पेड़ पौधों को मत करो नष्ट, पर्यावरण है इनकी शान, इसमें ही बसती है हमारी जान। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत मैसेज हम तक पहुंचा, और अब एक बहुत ही खूबसूरत गाना पहुंचा रहे हैं हम आप तक।

0: वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट कर रहे हैं हम 102.2 एफएम रेनबो कानपुर सुन रहे हैं आप हम नवा में मैं हूँ शिप्रा चंद्रा और मेरे साथ है मेरी को होस्ट कम दोस्त वृंदा मल्होत्रा।
1: अच्छा शिप्रा, आपने इतना प्यारा सॉन्ग लगाया था कि झूमते झूमते हम कब अपने नेक्स्ट सेगमेंट की ओर पहुंच गए मुझे तो पता ही नहीं चला।
0: क्या बात की, बड़ी प्यारी सी बात है, वृंदा धीरे से बोल देती है और बड़ा ही अच्छा मुझे लगा कि झूमते झूमते हम पहुंच गए यहाँ पे, है ना। तो वृंदा, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट कर रहे हैं हम और जब कोई स्पेशल डे होता है तो लगता है कि वाकई उससे रिलेटेड हर चीज स्पेशल है। तो आज वन बाय वन ऐसी ही बातें आ रही है पर्यावरण से जुड़ी, एक एक करके हम बातें करते जा रहे हैं और बातें अपने आप सामने आती जा रही हैं। लेकिन एक बात मैं कहूंगी,
1: क्या
0: विथ लॉट्स ऑफ क्वेश्चन मार्क।
1: जी बिल्कुल। अच्छा, जैसे डेली लाइफ में हम प्रकृति के लिए क्या क्या कर सकते हैं, सीमित संसाधनों में अपनी लाइफ जी सकते हैं, स्वच्छता को अपनी आदत बना सकते हैं, पौधारोपण जरूरी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि दिन में दो बार पोषक तत्वों से भरपूर भोजन जरूरी होता है। तो बहुत सारी बातें हैं, है ना शिप्रा?
0: बहुत सारी बातें हैं और हम यहाँ पे अभी पौधारोपण की आप बात कर रही हैं वृंदा, तो मेरे जहन में एक बात आ रही है कि देखिए हम सिटीज़ में रहते हैं, फ्लैट कल्चर है हमारा ज़्यादातर, देखिए तो आप क्या होता है हमारे पास जगह का अभाव होता है। कभी तो जगह होती है हमारे पास इतनी कि हम प्लांट्स अच्छे से लगा लें, और अभी कानपुर में क्या है कि छतों पे भी प्लांट्स लगाने का बहुत अच्छा सा ट्रेंड हो रहा है, बहुत से लोग लगा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या होता है बेसिकली जगह की बहुत कमी के कारण कभी कभी होता है कि हमें प्लांट्स लगाने का मन है फिर हम सोच रहे हैं अरे कहाँ हम लगाएंगे क्या करेंगे। तो ये क्या है कि इनोवेटिव गार्डनिंग एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे कि हम प्लांट्स को लगा सकते हैं।
1: अच्छा, फ्लैट कल्चर में ये जो अभी आपने बात कही है कि जगह की कमी और इनोवेटिव गार्डनिंग की जो बात कही है, तो ये बहुत अच्छा साउंड कर रहा है और ये आइडिया भी मुझे आपका बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन अच्छा, वर्टिकल गार्डनिंग भी तो हम कर सकते हैं।
0: बिल्कुल, मिट्टी की छोटी छोटी हंडिया या ग्लासेस लें और छोटी मिट्टी के गमले

0: तो झिलमिल झिलमिल करते करते और वृष्टि पड़ी टापुर टुपुर। ये तो अभी ख्वाबों में ख्यालों में यही बात आ रही है, इतनी गर्मी जो हो रही है वृंदा, और आसार है बारिश होने के भी, और साथ में वृंदा ये भी बारिश होने के आसार के साथ जरा आप देख लीजिए घड़ी की तरफ।
1: हाँ, मैं अभी पता गाने से यही रिलेट कर रही थी, दृष्टि पड़ी टापुर टुपुर, मेरी घड़ी पर दृष्टि पड़ रही थी कि समय जो है ना वो अब इजाजत नहीं दे रहा कि आगे हम कंटिन्यू रखें हम नवा प्रोग्राम को, बट
0: लेकिन चलते चलते एक बात हम और शेयर करना चाहेंगे कि आकाशवाणी के 90 इयर्स हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय हमारा ध्येय वाक्य, हर आयु वर्ग के श्रोतागण जुड़ते हैं हमसे, तो आकाशवाणी रखती है सबका ध्यान। और स्पेशली देखिए बहुत सारे प्रोग्राम अलग अलग तरीके के होते हैं, एजुकेशन के, जानकारियों के, मनोरंजन के, तो इसमें सेहत भी जुड़ जाती है, तो सेहत का भी बहुत अच्छा ध्यान रखा जाता है और समय समय पर बहुत सारे प्रोग्राम्स यहाँ से प्रसारित किए जाते हैं। विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा से सेहतनामा हो गया वृंदा, रेडियो डॉक्टर है, हेलो डॉक्टर है आकाशवाणी से, और अपने अगर हम एफएम रेनबो कानपुर की बात करें तो यहाँ से हमारे हेल्थ मैगजीन, स्वास्थ्य चेतना, ये सारे प्रोग्राम्स जाते हैं। तो आज हमारे लिसनर्स को ये भी हम शेयर कर देते हैं कि 3:45 पे दिन में आप सुनेंगे हेल्थ मैगजीन, जिसमें डॉक्टर नीरज कुमार से दीपशिखा गुप्ता की बातचीत होगी और विषय होगा गर्मियों में स्वास्थ्य की देखभाल। और वृंदा इसी के साथ अब हमारे लिसनर से ली जाए इजाजत।
1: बिल्कुल, आप सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और इसी तरीके से पर्यावरण को स्वच्छ रखिए, खुश रहिए,
0: मुस्कुराते रहिए।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि राज्य की प्रगति के लिए उनका काम सराहनीय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि योगी आदित्यनाथ ने हमेशा लोगों के जीवन स्तर को सुधारने और सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया है। रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। चालू वित्त वर्ष के लिए दूसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से अल्पकालिक उधार दर या रेपो दर को 5.25% पर तटस्थ रुख के साथ बनाए रखने का निर्णय लिया है। बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए जीडीपी वृद्धि का अनुमान पहले के 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसी भी सुरक्षा बल की वास्तविक शक्ति उसके प्रशिक्षित, अनुशासित और तकनीकी रूप से दक्ष कार्मिक होते हैं। ऐसे में ये आवश्यक है कि सुरक्षा बलों के प्रशिक्षण व्यवस्था को अधिक व्यवहारिक और तकनीक आधारित बनाया जाए। कल लखनऊ में उत्तर प्रदेश प्रांतीय आर्म्ड कांस्टेबलरी पीएसी एसडीआरएफ तथा उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल के आधुनिकीकरण, क्षमता विस्तार, प्रशिक्षण अवसंरचना विकास एवं भावी कार्य योजनाओं की विस्तृत समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएसी एसडीआरएफ और यूपीएसएसएफ प्रदेश की सुरक्षा प्रणाली के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं और इन्हें भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप तैयार किया जाना चाहिए। वाराणसी में ब्रिक्स देशों के कल्चरल वर्किंग ग्रुप की 2 दिवसीय बैठक जारी है। बैठक में सदस्य देशों के प्रतिनिधि सांस्कृतिक सहयोग के विभिन्न प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर विचार विमर्श कर रहे हैं। बैठक के दौरान रचनात्मक अर्थव्यवस्था, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, संस्कृति आधारित सतत विकास तथा जन से जन संपर्क को मजबूत बनाने जैसे विषयों पर चर्चा हो रही है। बैठक का समापन आज होगा। इसी के साथ ये बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 1 बजे प्रसारित किया जाएगा। तब तक आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ता तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: नमस्कार आदाब। 100.7 FM रेनबो पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती है। आपकी होस्ट फातिमा। वक्त हो गया फटाफट आपको वक्त बताने का। 12:04 और कुछ सेकंड्स हमारी स्टूडियो की कुकू क्लॉक में ये टाइम है प्रोग्राम स्वयं सिद्धा का। जी हैं, आज है शुक्रवार का दिन, तो आज प्रोग्राम स्वयं सिद्धा में क्या कुछ है, डिस्कशन का मौजू क्या है, सब बताऊंगी आपको। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा पॉजिटिव नोट जिस पर आगाज करेंगे प्रोग्राम का, और वो ये है कि भाई अपने अंदर इतनी पॉजिटिविटी ले आइए कि चलते फिरते भी आप जिससे भी बात करें, चाहे वो आपका नोन हो या अननोन, आपके एंड से निकला हुआ, आपके मुंह से निकला हुआ हर एक अल्फाज अगले आदमी को किसी ना किसी पॉइंट पर हिट कर जाए, थोड़ा सा पॉजिटिव कर जाए। देखिए, ये जो कुछ पल कुछ क्षण आप दे सकते हैं ना अगले को, ये इतने इत्मीनान भरे होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। तो बस इसी नोट पर आगाज करेंगे इस प्रोग्राम का और आज के इस दिवस की। जी हाँ, आज विश्व पर्यावरण दिवस है, इसकी आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। और एक जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ जाती है कि भाई हमें अपने पर्यावरण को संरक्षित करना है। तो बस इसी नोट पर आगाज करेंगे इस प्रोग्राम का एक बेहतरीन से ट्रैक के साथ। लेकिन उस ट्रैक को आप तक पहुँचाने से पहले एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे आप रहिए कनेक्टेड हमारे साथ 100.7 FM रेनबो पर, जो है धड़कन लखनऊ की।
3: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है। मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।

ऑलराइट, 12:10 का वक्त हो गया है और उम्मीद है कि अब तक सब लोग नाश्ता कर चुके होंगे। जी हाँ, कई लेट राइजर्स होते हैं ना, जिनको नाश्ता करने में बहुत देर हो जाती है, दोपहर के खाने का टाइम हो जाता है। तो अगर ऐसा है तो प्लीज़ नाश्ता का टाइम आप ऑलरेडी गंवा चुके हैं, तो थोड़ा सा जागरूक हो जाइए इस बारे में भी। अच्छा, फिलहाल आज का जो प्रोग्राम है उससे जुड़ी कुछ बातें कर लेते हैं भाई। आज स्वयं सिद्धा में हम सेलिब्रेट करेंगे उन फीमेल्स को, उन विमेन को, उनके काम को जो वर्किंग भी हैं और जिन्होंने बहुत अपने एंड पे, अपने स्तर पे जो भी हो सका पर्यावरण के लिए किया और काफ़ी सराहनीय काम किया है उन्होंने। देखिए भाई, अगर हम मतलब बहुत ही जनरलाइज्ड वे में बात करें तो कोई भी बड़ा सामाजिक परिवर्तन महिलाओं के बिना नहीं हो सकता है। पर्यावरण प्रबंधन और विकास में महिलाओं का योगदान बेहद ज़रूरी है। इतिहास से लेकर प्रेजेंट टाइम तक अगर हम माने तो भाई कहा जा सकता है कि महिलाओं ने साबित कर दिखाया है। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं भारतीय इतिहास में, कई ऐसी महिलाओं का नाम दर्ज है जिन्होंने खास तौर से पर्यावरण के लिए तमाम स्टेप्स, तमाम कदम उठाए हैं और ख़ासकर से आदिवासी महिलाओं ने वन संपदा, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो ऐसी कुछ महिलाओं का जिक्र हम आज इस प्रोग्राम में ज़रूर करेंगे आपके साथ, और आप से उन महिलाओं के जो इनिशिएटिव्स हैं उनको भी साझा करेंगे। लेकिन ये सब जानने के लिए आपको रहना पड़ेगा कनेक्टेड हमारे साथ 100.7 FM रेनबो पर। और फिलहाल वक्त हो गया एक और छोटे से कमर्शियल ब्रेक का, और उसके बाद बातें हमारी कंटिन्यूड रहेंगी। सो स्टे ट्यून एंड कीप एंजॉइंग।

0: जन कल्याण
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।

अगर हम अपनी संस्कृति, सामाजिक प्रथाओं और रीति रिवाजों को देखें तो साफ झलकता है कि प्राचीन काल से ही महिलाएं किसी न किसी बहाने से पर्यावरण से जुड़ी हुई हैं। भारत में महिलाओं ने पर्यावरण के प्रति मनुष्य के लगाव को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया है। और कहीं ना कहीं देखिए, ये जब इन आंदोलन में ये सब महिलाएं कनेक्ट हुई, तो ये मतलब इन्होंने अपना जो जीवन है उसको समर्पित कर दिया पर्यावरण के लिए। अब इस फेरिस्त में अगर हम थोड़ा डिटेल में बात करें तो राजस्थान का खेजड़ली आंदोलन महिलाओं में स्थित पर्यावरण चेतना को सामने लाने का एक सशक्त उदाहरण है। अब हुआ ये था कि भाई उस दौर में, सन 1730 की बात है तकरीबन, ये उस दौर में जो महाराजा थे जोधपुर के, उन्होंने मतलब किसी वजह से उनको लकड़ी की ज़रूरत पड़ी, जिसके लिए गांव गए उनके सिपाही। लेकिन एक महिला थी उसी गांव की, अमृता देवी जी, तो इन्होंने काफ़ी विद्रोह किया और विरोध किया इस बात का कि पेड़ों को नहीं कटने देना चाहिए, और अपने साथ बाकी कई महिलाओं को साथ में जोड़ा, जो आगे चल करके सब मतलब मिल करके सब ने इस चीज़ के ऊपर, इस बात पर विरोध किया कि अपने इर्द गिर्द के जो पेड़ पौधे हैं, हरियाली है, उसे हम नहीं काटने देंगे, और उसकी संरक्षण उसका संरक्षण किया। इसके अलावा अगर इस तरीके से हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो चिपको आंदोलन, जी हाँ, हम सब इस आंदोलन से इत्तेफाक रखते हैं, इसके बारे में जानते हैं। ये आंदोलन पेड़ों को बचाने का एक ऐतिहासिक और नायाब संघर्ष है। इस आंदोलन की मुख्य संचालक महिलाएं ही थीं, और गौरा देवी इस आंदोलन की प्रमुख महिला थी, जिन्हें चिपको आंदोलन की जननी भी कहा जाता है। गौरा देवी के नेतृत्व में महिलाओं ने अपने प्राणों की परवाह किए बगैर पेड़ों से चिपक कर खड़ी रही महिलाएं, और मजबूत इरादों को दिखाया। उस मजबूत इरादों की जो झलक थी वो दिखी उनके इस अप्रोच के साथ, और फाइनली सबको हार माननी पड़ी। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक और आंदोलन मेरे जहन में आ रहा है और काफ़ी फेमस भी है, नर्मदा बचाओ आंदोलन। पर्यावरण और विकास के नए पैमानों को राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनाया था। ये आंदोलन आम लोगों के बीच काफ़ी चर्चा में रहा है। मेघा पाटकर ने इस आंदोलन में सक्रिय मुख्य भूमिका निभाई है, और वो वर्तमान में भारत की प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, जिसके लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन रिबन पर्यावरण पुरस्कार से नवाजा गया है। इसके अलावा उन्हें कई स्वदेशी पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो ये सब महिलाएं कहीं ना कहीं इन्होंने सशक्तिकरण किया है, इन्होंने एम्पावरमेंट प्रोवाइड किया है हमारा जो पर्यावरण है उसको बचाने के लिए। तो इस तरीके की बहुत सारे लोग हैं जो कनेक्टेड हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं जो कनेक्टेड हैं, आपके आसपास आपके नेबरहुड में बहुत सी महिलाएं होंगी जो कनेक्टेड होंगी। तो ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जिनके बारे में हम आज शायद प्रोग्राम में डिस्कशन ना भी कर पाए, लेकिन हाँ, हम सब की बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन जिम्मेदारी है कि उनकी हम वैल्यू करें और उनके जो पर्सपेक्टिव है उसको समझें और उसको अपने दिनचर्या में फॉलो करें। तो बस इसी नोट पर एक और बेहतरीन सा ट्रैक एंजॉय करिए, रहिए कनेक्टेड हमारे साथ।

0: चलते चलते फिल्म का ये ट्रैक अभी आपने एंजॉय किया 100.7 FM रेनबो पर, और मैं भी आपको कुछ सुनाना चाहती हूँ। सुनाना ये चाहती हूँ कि अगले कुछ ही पलों में, अब आज के इस विशेष दिन पर, हम सुनेंगे बातचीत अनुराधा गुप्ता जी के साथ, लेकिन उससे पहले लेंगे छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। सो स्टे ट्यून एंड कीप एंजॉइंग 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: जिंदगी बहुत कीमती है,
2: उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक, भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
5: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
6: मेघा, आज ना हमारे कार्यक्रम में आई हुई हैं अनुराधा गुप्ता जी, जो कि

0: सोशल इनोवेटर हैं, वेलनेस मेंटोर हैं और संस्थापक हैं पृथ्वी इनोवेशंस की। और पता है वो क्या कहती हैं?
1: क्या?
0: पेड़ लगाएंगे तरु मित्र बन जाएंगे। तो चलो इनका स्वागत करते हैं।
1: नमस्कार अनुराधा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी लखनऊ में।
2: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मेघा जी और सीमा जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है।
1: अनुराधा जी, सबसे पहले आप हमारे श्रोताओं को आसान सी भाषा में बताइए कि मिशन लाइफ आखिर है क्या।
2: मिशन लाइफ, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, ये बहुत ही अच्छा एक सुंदर सा विचार था जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2021 में उन्होंने इस विचार को लेके एक पहल शुरू करी और 2022 में 2 अक्टूबर को मिशन लाइफ ऑफिशियली लॉन्च हुआ और हमारे पूरे विश्व ने इस विचार को अपनाया। और लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, इसका अच्छा। संक्षेप में ये मतलब है कि कैसे हम अपनी रोजमर्रा की जीवन में अपनी जीवन शैली को पर्यावरण के अनुकूल रखें। तो जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि मिशन लाइफ में हमारे 7 बिंदुओं पे बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। मैं जल्दी से आपको नाम बताती हूँ कि कैसे हम पानी के संरक्षण, सेव वाटर, सेव एनर्जी, से नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक, रिड्यूस वेस्ट, रिड्यूस ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की बात हो रही है यहाँ पे, और अडॉप्ट सस्टेनेबल फूड सिस्टम, कि हमारा जो खाने की जो पद्धति है, जो हमारे खाने का तरीका है, वो भी कैसे हम सस्टेनेबल बना सकते हैं, और फाइनली अडॉप्ट हेल्दी लाइफस्टाइल, जो बहुत ही अहम हिस्सा है इस पूरे मिशन का। और मैं एक प्यारा सा कबीरदास जी का दोहा है जो पूरे मिशन लाइफ का एक निचोड़ है वो प्रस्तुत करता है आपके सामने। मैं श्रोताओं के बीच ये दोहा जरूर रखना चाहूंगी। साईं इतना दीजिए, साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। कबीरदास जी ने इतनी प्यारी अपनी वाणी में इस बात को रखा है कि हम लोग जो एक ओवर कंजम्पशन की तरफ भाग रहे हैं, तो अगर हम सब लोग संतुष्ट हो जाएं, कंटेंटेड हो जाएं, हम भी खुश रहेंगे और हमारी प्रकृति भी हमेशा हरी भरी, सुंदर, स्वच्छ और स्वस्थ रहेगी।
0: अनुराधा जी, अभी आपने प्रकृति के बारे में इतनी अच्छी बातें कही, क्यों ना अपने श्रोताओं को कोई गीत सुनवा दें, आप क्या कहती हैं?
2: बिल्कुल, आपने तो मेरे मन की बात ले ली। एक बहुत प्यारा सा गीत है, आपने सुना होगा, ये पौधे, ये पत्ते, ये फूल और हवाएं।

0: वाकई नवराधा जी बहुत ही खूबसूरत गाना है। और अभी आप हमें पहले बता रही थी कुछ हेल्दी लाइफस्टाइल से संबंधित बातें, तो ऐसी कौन सी रोजमर्रा की आदतें हैं जिन्हें हम अपनाकर अपनी जीवन शैली को तो स्वस्थ बनाएंगे ही और साथ में हम पर्यावरण की मदद भी कर सकते हैं?
1: मेघा जी, मैं बताना चाहूंगी कि हमारे सभी श्रोता सुन रहे होंगे और डेली हमारा जीवन शुरू हो जाता है, तो पूरे दिनचर्या में ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनका हम ध्यान रख के, तो एक छोटा सा प्रिंसिपल है, आप सबने रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल करके ये तीन शब्द सुने होंगे, बट इसी को मैं थोड़ा सा बढ़ा के बताना चाहूंगी कि सबसे पहले हमारे अंदर रिस्पेक्ट, सब चीजों के लिए सम्मान अगर हमारे दिल में होगा तो जिसका हम सम्मान करते हैं हम उसको बर्बाद नहीं करेंगे या उसको दुख नहीं पहुंचाएंगे। तो मैं बस ये 10 प्रिंसिपल्स हैं जो 10 आर्स के नाम से मशहूर हैं, हमारी पूरी फिलॉसफी ये रही है। तो रिस्पेक्ट, रीथिंक, पुनः सोचें, विचार करें कुछ भी करने से पहले, कोई डिसीजन लेने से पहले। फिर रिवाइव, जो हमारी बहुत अच्छी कल्चरल जो रीतियां थी जिसमें पर्यावरण रचा बसा था, मतलब हम लोग बहुत सस्टेनेबल थे बिगनिंग ईयर्स की अगर हम बात करें, बट ओवर द ईयर्स हम लोग मतलब मूव कर गए सस्टेनेबिलिटी की तरफ से हटके, हम बहुत ज्यादा उपभोगी बन गए। तो रिस्पेक्ट करें, रीथिंक करें, रिवाइव करें अपनी पुरानी अच्छी आदतों को, रिपेयर करें, रिपेयर का कल्चर बिल्कुल चला गया, अब जो चीज होती है यूज एंड थ्रो, जरा सा भी कुछ फट गया तो लगता है नया खरीद दूंगा, क्यों दोबारा, चाहे जूता हो, चाहे फर्नीचर हो, चाहे कोई भी चीज हो, तो रिपेयर कल्चर। फिर हमारा आता है रीयूज, रिड्यूस, रिफ्यूज, बहुत ही अहम है, कोई भी संसाधन आप ले तो रिफ्यूज करना जरूरी, एक्स्ट्रा पैकेजिंग, आजकल ग्लैमर की दुनिया हो गई है, सब लोग इतना ज्यादा पैकेजिंग करते हैं, इतनी सारी चीजें उसमें लग जाती हैं और वो हमारा वेस्टेज होता है, गिफ्ट के बाद वो सारा चीज हमारा वेस्ट में चला जाता है और सिंगल यूज है वो। और रिवाइव करें अपनी अच्छी आदतों को, अच्छे विचारों को, और एक अच्छी जीवन शैली जीने के लिए जो हमारे हमारे सभी पूर्वजों ने भी बताया है कि नेचर के साथ कनेक्ट कब होता है, जब हम सुबह उठे तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना, योग करना, टहलने जाना, अच्छा खाना खाना, जो लोकल हमारा फूड है जो हमारे इस आसपास मिलता है, तो उससे हमारे जो लोकल फार्मर्स हैं उनको भी मदद मिलेगी और हम प्रोसेस्ड फूड की तरफ तो बिल्कुल ही ना बढ़ते जाएं, क्योंकि जितना ज़्यादा हम प्रोसेस्ड और केमिकल से भरा हुआ खाना अपने फ्रिजों में रख रहे हैं, खा रहे हैं, उससे हमारा, आप जानते हैं, आप प्लास्टिक वेस्ट भी जनरेट हो रहा है
2: और बीमारियां भी कितनी बढ़ रही
1: हैं, बीमारियां भी बढ़ रही हैं बिल्कुल। और जो हमारा उत्पादन हो रहा है जब ये बनाया जा रहा है उनको प्रिजर्व करा जा रहा है, तो प्रिजर्व करने के लिए कि उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ सके उस खाने की और आप तक पहुंच सके, तो जितना ज्यादा हम ऑनलाइन, ये जो हमारा फूड जो चेन है पूरी, हमारी सस्टेनेबल डाइट की तरफ से हम बिल्कुल हट गए, तो रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल के साथ साथ रिस्पेक्ट, रीथिंक, रिवाइव, रिफ्यूज, रिपेयर और रीपर्पस। अगर हमारा कोई चीज वेस्ट होगी, हमारे कपड़े हैं, पहले हमारी सब दादी नानी अच्छे से करती थी, क्यों सीमा जी आपको भी याद होगा आपके घर में कुछ भी चीज फट जाती थी तो दादी लोग फेंकने नहीं देते थे, कहते थे इसका पोछा बन जाएगा,
2: पुराने कपड़ों से नए कपड़े बना दिए जाते,
1: नए कपड़े बन, थैला बन गया, पोछा बन गया, झाड़न बन गया,
2: कुछ भी इस्तेमाल हो जाता था, पंखे भी बनते,
1: पंखे
2: पंखे बनते थे।
1: तो अभी क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है, क्लाइमेट एक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, तो मिशन लाइफ जो है हमें इन सब चीजों को जोड़ के कि कैसे हम अपने जीवन में सब चीजों का ध्यान रखते हुए ना केवल अपने को स्वस्थ रखें बल्कि अपनी धरा को भी स्वस्थ और साफ सुथरा और हरा भरा रखें, क्योंकि पेड़ पौधे जितने लगाएंगे, लगाने के साथ साथ उनका जितना ध्यान देंगे हम, जो जलवायु परिवर्तन की जो समस्या भीषण पैदा होती जा रही है वो कहीं ना कहीं मिटिगेट होगी।
0: जी अनुराधा जी, अभी आपने बहुत अच्छी बात बताई थी कि 10 आर मिलकर सिस्टम बनाते हैं, और ऐसे ही कहते हैं ना, कुछ करने के लिए जब 10 हाथ इकट्ठा हो जाते हैं तो वह काम जरूर सफल होता है,
2: यानी कि सामूहिक प्रयास होता है,
0: सामूहिक प्रयास बिल्कुल।
1: और एक बहुत प्यारा सा गाना है, स्वदेश पिक्चर शायद देखी होगी हमारे सभी श्रोतागण ने, एक बहुत प्यारा सा गाना है, ये तारा वो तारा, सब तारों की बात हो रही है, तारे का मतलब हम सब, तो हम सब जब मिल जाएंगे, हम सब यूनिक हैं, हमारे सबके अंदर एक बहुत ही अच्छी क्षमता है बट हम कहीं ना कहीं बिखर गए हैं, तो जब सब मिल जाएंगे तो एक बहुत सुंदर आसमान, क्या हमारा धरा बहुत सुंदर हो जाए, तो चलिए सुनाते हैं वो गाना
0: बिल्कुल।

0: अभी हम लोगों ने गाने में सुना, तारे कितने अच्छे लगते हैं, और कहीं ना कहीं मैं सोच में पड़ गई कि क्या हमारा आसमान स्वच्छ बचा है। जब नए नए प्रयोग होते हैं तो कहीं ना कहीं ये बात चिंता का विषय बन जाती है। अब एक और मेरे मन में सवाल आपकी बात को सुन के आया, 10 हमारे आर्स हैं, तो आप रिड्यूस में ई वेस्ट के लिए आप श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगे कि इस पर वो कैसे कमी ला सकते हैं जब प्रयोग करते हैं?
1: बिल्कुल, ये बहुत ही अहम सवाल है क्योंकि आजकल हम लोग डिजिटल एज में जी रहे हैं
0: जी।
1: और जाहिर सी बात है टेक्नोलॉजी का साथ भी जरूरी है विकास के लिए, बट जब हम टेक्नोलॉजी के साथ की बात करते हैं तो हमें एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना है, और जो भी हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीदते हैं तो सबसे पहले एक मूल्यांकन करें कि क्या सच में हमें इसकी ज़रूरत है।
0: बिल्कुल,
1: और अगर ज़रूरत है तो अगर हमारे पास पुरानी पहले से ही इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल्स पड़े हैं, बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं, तो पहले हम उनको कैसे सही तरह से निस्तारित करें। तो उसको निस्तारित करने के दो ऑप्शंस हमारे पास रहते हैं कि या तो हम जिसके पास नहीं है उसको डोनेट करने की पहल करें, और या कोशिश करें कि अगर हमारा वही मोबाइल कुछ छोटी सी प्रॉब्लम आ गई है उसमें तो उसको क्या हम रिपेयर करा सकते हैं, रिपेयर करा के क्या वो ठीक हो सकती है, चाहे वो हमारा लैपटॉप हो, चाहे हमारा डेस्कटॉप हो, चाहे हमारे इलेक्ट्रॉनिक और भी गैजेट्स हमारे घर में यूज होते हैं। तो रिपेयर का कल्चर बहुत ज़रूरी है, रिस्पॉन्सिबल खरीद बहुत ज़रूरी है कि हम जब भी खरीदें बहुत रिस्पॉन्सिबली खरीदें। डिस्पोज करने के लिए नॉर्मल गार्बेज में डाल देते हैं जो कि बहुत ही हानिकारक है क्योंकि उसमें बहुत तरह के ऐसे पदार्थ होते हैं जो बहुत डेंजरस होते हैं, केमिकल्स होते हैं, लेड होता है, सिलिकन होता है, आर्सेनिक होता है, कैडमियम होता है। रीपर्पस या रीयूज करने के लिए सही सही जगह पे,
0: सही हाथों में पहुंचे,
1: सही हाथों में पहुंचे, उसको नॉर्मल वेस्ट की तरह अपने घर के वेस्ट के साथ मिक्स ना करें।
0: वो बात ज्यादा अच्छी लगी कि हम डोनेट कर दें।
2: बिल्कुल डोनेट,
0: उसे कहना हमने तो इस्तेमाल किया ही, साथ में हमने किसी को अगर इस्तेमाल के लिए दे दिया तो चीज काम भी आएगी, बचाव भी होगा हमारी प्रकृति का।
2: और अनुराधा जी आपने एक बहुत अच्छी बात कही, अक्सर क्या होता है ना हमारे घर में कि अब जैसे ये चलन हो गया है कि घर में चार कमरे हैं तो चार कमरे में अलग अलग टीवी होगा, तो लोगों की जरूरतें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। ऐसे में बिजली का कंजम्पशन भी बहुत ज्यादा होता है, ज्यादा बिजली खर्च होती है, बिजली का बचाव भी हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है पर्यावरण को बचाने के लिए। तो इस बारे में आप हमारे श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगे?
1: मिशन लाइफ में सेफ एनर्जी एक अपने आप में बहुत बड़ा बिंदु रखा गया है, और जब हम बिजली की बात करते हैं तो बिजली आती कहाँ से है, सबसे पहला सवाल ये उठता है। तो बिजली सब हमारे श्रोता जानते हैं कि बिजली हमारी कोयले से आती है, और कोयले में जब आती है तो हमारे फॉसिल फ्यूल्स बर्न होते हैं, तो ये सारी जो ऊर्जा जो उत्पादन में जो हमारी क्षमताएं इस्तेमाल हो रही है, तो उसकी वजह से भी हमारी क्लाइमेट चेंज जो हमारा जलवायु परिवर्तन हो रहा है वो कहीं ना कहीं इसके ऊपर भी निर्भर है। तो हम अपने रोजमर्रा के जीवन में देखें कि कहाँ पे हम बिजली के प्रयोग को सीमित कर सकते हैं। अक्सर जो आपने बात कही चार कमरों में लोग अलग अलग बैठे हुए हैं, तो क्या हम एक साथ नहीं बैठ के टीवी देख सकते? क्या हम जब कमरे से निकल के बाहर जा रहे हैं तो क्या हम स्विच बंद नहीं कर सकते? ये बहुत छोटी छोटी चीजें और सबको पता है, ऐसा नहीं है कि मैं बोल रही हूं, बट हम कर नहीं पाते। तो मिशन लाइफ का पर्पस ही ये है कि हम करने की तरफ अग्रसर हों। तो सेव एनर्जी में यही सारी चीजें कि हम गैजेट्स भी खरीदें तो 5-स्टार एनर्जी रेटिंग देखें उसकी, खरीदते समय की एनर्जी रेटिंग क्या है, सही जगह से खरीदें, और बिजली का कोई प्रोडक्ट अगर हमारा वो हो गया तो उसको सही तरह से डिस्पोज करें, और सबसे पहले रिस्पॉन्सिबली हम हर चीज को यूज करें, अल्टीमेटली वही बात आ जाती है
0: जी। ये तो बहुत अच्छी आपने बात कही। इसी तरीके से एक और बात मेरे दिमाग में आती है कि सिंगल यूज प्लास्टिक, ये भी एक बड़ा मुद्दा है आज के दौर में, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी?
1: सिंगल यूज प्लास्टिक, बिल्कुल आपने ठीक कहा, हर चीज में, पैकेजिंग में, आप चाहे गिफ्टिंग हो, पैकेजिंग हो, कुछ भी सामान खरीदते हैं तमाम हमारे पास पैकेजिंग मटेरियल आ जाता है और वो किसी काम का नहीं होता। तो ये शायद पहल हमें खुद से करनी होगी कि कहाँ तक हम प्लास्टिक को रिफ्यूज कर सकते हैं। हम अक्सर बाजार जाते हैं तो इतनी सी जहमत नहीं उठाते कि हम अपने साथ थैले रख लें, चाहे मोटरसाइकिल से जा रहे हो, चाहे कार में जा रहे हो। बच्चों को भी मैं चाहूंगी कि मदर्स जो है बच्चों को भी, बच्चों की तरफ से ये पहल होती है कि बच्चे अपने बैकपैक में एक थैला रखे रहे, हस्बैंड जा रहे हैं ऑफिस तो वो भी कुछ ना कुछ अपने गाड़ी में कार में रखे रहिए थैला। तो जब भी आपको कुछ इमरजेंसी में भी खरीदना है तो आप पॉलिथीन नहीं लेंगे वेंडर, और कोई देता भी है आपको तो आप उसको मना करिए कि नहीं मेरे पास थैला है। तो सबसे सरल तो जो हमारे पुराने बुजुर्ग लोग करते थे कि जाते थे तो थैला लेके जा, दूध भी आता है तो दूध के पैकेट्स तमाम है, टेट्रा पैक्स तमाम है, और सिंगल यूज प्लास्टिक में तमाम चीजें आती हैं, जितना भी हम जो चीजें फूड से रिलेटेड हमारे कंटेनर्स हैं, ब्लैक कंटेनर्स जो बहुत ही डेंजरस होते हैं, फिर फोक्स हैं, तो अब स्ट्रॉ जो होता था प्लास्टिक स्ट्रॉ जब हम कुछ पीते हैं, तो ये सारी चीजों को हम एक कंज्यूमर की तरह अवेयर हों और जागरूक होकर मना करें, जब भी हम कुछ उपभोग करें तो ये सब चीजों का उपयोग ना करें। तो हम रिफ्यूज जब तक नहीं करेंगे सिंगल यूज प्लास्टिक खत्म नहीं होगा, और रिफ्यूज करें, रिड्यूस करें, और साथ में उसको अगर आ जाती है तो रीयूज करते जाएं। अगर गलती से एक पॉलिथिन आ भी गया तो उस पॉलिथिन को ही हम पूरा हफ्ता पूरा महीना चलाते रहें,
2: जब तक वो बिल्कुल वेस्ट ना हो जाए।
1: जब वो

0: वेस्ट हो जाए तो
1: खराब।
0: उसको सेग्रीगेट करके डालें, उसको मिक्स करके ना डालें, ये बहुत ही ज़रूरी है
1: हाँ ये
0: हम
1: बात
0: अपने
1: आपने,
0: वेस्ट मैनेजमेंट की तरफ।
1: जी ये बात आपने बहुत अच्छी कही कि जैसे कि कहा जाता है कि जागरूक भी करती है सरकार समय समय पर कि जब हम अपने घरों से कूड़ा बाहर निकालते हैं
0: जी
1: तो उसमें गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा को अलग अलग कर दें।
0: जी
1: रसोई से डस्टबिन तक का जो सफर होता है ये इसके लिए पूरी जिम्मेदारी होती है घर की महिला की।
0: बिल्कुल,
1: तो आप ये बताइए कि घर की महिलाएं भी मिशन लाइफ में अपना योगदान कैसे दे सकती हैं।
0: मैं तो चाहूंगी कि घर की महिलाएं नहीं, पूरा घर पूरा परिवार प्रबंधन करे।
1: बिल्कुल
0: हमारे
1: सही।
0: सब लोग कचरे को जनरेट कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर
1: हाँ
0: रहे हैं, तो सबकी उतनी ही जिम्मेदारी है। हमारा ड्राई कचरा जो रिसाइक्लेबल है, प्लास्टिक वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, हमारा लोहा लकड़ी, तो ये सारा हमारा ड्राई वेस्ट है जो रिसाइकल रिपर्पस हो सकता है, उसको हम अलग रखें और गीले कचरे के साथ कभी भी मिलाएं नहीं। और फिर हमारा एक होता है हजार्डरस कचरा, जो हमारी बैटरीज हैं, जो हमारे पेंट्स हैं, बहुत सारी ऐसी तमाम चीज़ें हम यूज़ करते हैं जिसमें केमिकल्स होते हैं, हमारे डायपर्स हैं, सैनिटरी नैपकिन हैं, तो ये सब हम बिल्कुल अलग रखें। तो तीन कैटेगरीज में सेग्रीगेशन कायदे से होना चाहिए घर के स्तर पे भी, और सिस्टम भी वैसा ही होना चाहिए, सरकार की तरफ से भी ये पहल होनी चाहिए कि वो तीनों को अलग अलग ही ले जाने की व्यवस्था बनाए।

0: साथ कभी भी मिलाए नहीं। और फिर हमारा एक होता है हजार्डरस कचरा, जो हमारी बैटरीज हैं, जो हमारे पेंट्स हैं, बहुत सारी ऐसी तमाम चीज़ें हम यूज़ करते हैं जिसमें केमिकल्स होते हैं, हमारे डाइपर्स हैं, सैनिटरी नैपकिन्स हैं, तो ये सब हम बिल्कुल अलग रखें। तो तीन कैटेगरीज में सेग्रीगेशन कायदे से होना चाहिए घर के स्तर पे भी, और सिस्टम भी वैसा ही होना चाहिए, सरकार की तरफ से भी ये पहल होनी चाहिए कि वो तीनों को अलग अलग ही ले जाने की व्यवस्था बनाए। तो पहली बात तो ये। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम एक व्यक्ति क्या कर सकता है कि अलग अलग रखने की कोशिश तो करे, मुश्किल है, चैलेंजिंग होता है, बट क्योंकि आदत नहीं पड़ी है, आदत में लाए, ठीक है। और उसके बाद फिर खाद बनाने की जो पहल है, तो हमारा जितना भी सब्जी के छिक्कल है उससे कितनी सुंदर, सीमा जी और मेघा जी आपने कभी उपयोग कराया कि नहीं, बट इतनी सुंदर खाद
1: नहीं, मैंने कोशिश की खाद बनाने की, थोड़ा सा फल हुई, लेकिन हाँ थोड़े से कई बार उसमें कीड़े पैदा हो जाते हैं, तो ऐसे में लगता है कि छुआ कैसे जाए, तो ऐसे में ग्लव्स पहन के हम इस्तेमाल करते हैं उनका, लेकिन कोशिश मैंने की। देखिए
0: तो वही मैं बता रही हूँ कि मिशन लाइफ बार बार इस बात के ऊपर जोर देता है कि हम खुद से करें, प्रयास करेंगे तो बदलाव आएगा। तो मैं वही कह रही हूँ कि खाद बना के आप अपने ही घर में, छोटे से आंगन में, घर आंगन को सुंदर सब्जियाँ, फल फूल आप गिफ्ट करिए, फिर अच्छी अच्छी ताज़ी सब्जियाँ गिफ्ट करिए, और इससे आप स्वस्थ भी रहेंगे और संसाधन भी बचेंगे, पानी की भी बचत होगी, बिजली की भी बचत होगी, क्योंकि तो सारी चीज़ें इंटीग्रेटेड है, मतलब सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, जीवन का ताना बाना भी वैसा ही है और हमारे मिशन लाइफ भी वैसा ही है। तो ये जो सारे सात बिंदु हैं सारे कनेक्टेड हैं, कोई थीम अपने आप में इंडिविजुअल आइसोलेटेड थीम नहीं है, सब मिलजुल के एक स्वस्थ स्वच्छ जीवन शैली की तरफ हमें बार बार धक्का देते हैं कि आप जाइए और इसको अपनाना शुरू करिए।
1: अब थोड़ा सा गीत संगीत और कर लेते हैं, क्यों मेघा?
2: बिल्कुल
1: है ना, तो अब आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
0: मुझे लगता है हम जिंदगी की बात कर रहे हैं, पर्यावरण की बात कर रहे हैं और एक सुंदर जीवन शैली की बात कर रहे हैं, तो बहुत प्यारा सा गाना है, आपने सुना होगा, लव यू जिंदगी।
1: चलिए सुनवा देते हैं मेघा इनको, लव यू जिंदगी।

0: करना है। और कबीरदास जी का फिर से मुझे दुआ, मुझे कबीरदास जी बहुत पसंद हैं, उनकी सारी जो बातें हैं वो हमारे रोजमर्रा के जीवन में बहुत बहुत लागू होती हैं। तो
1: जी
0: प्यारा सा दोहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी बहुर करे गो कब।
1: क्या
0: तो हम
1: बात,
0: टालते ना रहें चीज़ों को, प्रलय हो रही है, हम देख रहे हैं सारी चीज़ें किस तरह से हमारा पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, हमारी नदियां दूषित हो रही है, हमारे तालाब सरोवर सब खत्म होते जा रहे हैं, हरियाली खत्म हो रही है, फिर भी हम जाग नहीं पा रहे हैं, हम सचेत नहीं हो पा रहे, तो
1: बहुत
0: बस
1: अच्छी,
0: करने की इच्छा होनी चाहिए।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद अनुराधा जी कि आप हमारे स्टूडियो में आई और आपने हमें और हमारे श्रोताओं को जागरूक किया इस मिशन लाइफ के बारे में। बहुत अच्छी अच्छी बातें कही, बहुत अच्छे अच्छे टिप्स बताए।
0: आकाशवाणी लखनऊ को सबसे पहले मैं धन्यवाद जरूर देना चाहूंगी कि एक अवसर दिया कि हम लोग मिलके ये चर्चा कर सके। तो सीमा जी और मेघा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आज आपसे बातचीत करते हुए।
1: हमें भी बहुत अच्छा लगा। बारह बजकर 54 मिनट का वक्त और इस फ्रूटफुल टॉक के बाद मुझे लगता है कि काफ़ी सारा माइंड में हमारे जो कहते हैं ना, जैसे कि हमारा जहन एक दूसरे डायरेक्शन में भी सोचने पर मजबूर हो जाता है। कई बार हम कुछ ऐसी बातें सुन लेते हैं तो ऐसा कुछ ना कुछ हुआ ज़रूर होगा। मतलब आपकी जो डेली लाइफ है उसी को थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है, और उसके बाद देखिए आप अपने आसपास के पर्यावरण और इन ऑल कहीं ना कहीं आप सोसाइटी के लिए बहुत फ्रूटफुल साबित होने वाले हैं। तो बस इसी नोट पर वाइंड अप करेंगे इस प्रोग्राम को इस बेहतरीन से ट्रैक के साथ, और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे आप रहिए कनेक्टेड हमारे साथ 100.7 FM रेनबो पर, जो है धड़कन लखनऊ की। और मुझे लग रहा है शायद एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक का टाइम है, सो स्टे ट्यून्ड।
2: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है। मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 23 जून को दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में इस वर्ष के 65 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इससे पहले पिछले महीने श्रीमती मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित पहले नागरिक अलंकरण समारोह में 66 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए थे। इस वर्ष राष्ट्रपति ने 5 पद्म विभूषणाएं, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कारों सहित कुल 131 पद्म पुरस्कारों को स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में विश्व बैंक के सहयोग से 2741 करोड़ रुपए की लागत वाली एयर शेड आधारित उत्तर प्रदेश स्वच्छ वायु प्रबंधन परियोजना का शुभारंभ किया। उन्होंने पौधारोपण महाअभियान 2026 के अंतर्गत 35 करोड़ पौधारोपण महाअभियान के लोगों का अनावरण किया। इस अवसर पर श्री योगी ने कहा कि पर्यावरण की चुनौतियों का सामना करने के लिए भारत की प्राचीन परंपरा में निहित तत्वों को अपनाना होगा। उन्होंने कहा, जब प्रकृति सुरक्षित रहेगी तभी मानवता सुरक्षित रह पाएगी। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने कुकरेल वन क्षेत्र से एक पेड़ माँ के नाम वृक्षारोपण के प्रदेशव्यापी अभियान का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 2 दिवसीय दौरे पर बलरामपुर पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री तुलसीपुर व गैसड़ी विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। इसी क्रम में मंडलायुक्त दुर्गा शक्ति नागपाल, जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने कल देवी पाटन मंदिर पहुंचकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की 12वीं कक्षा के परिणाम घोषित होने के बाद शिकायत निवारण के लिए 70,000 से अधिक विद्यार्थियों के आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें अंकों के सत्यापन के लिए 7,314 आवेदन और पुनर्मूल्यांकन के लिए 63,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। बोर्ड ने मंगलवार को उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में कमियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोला है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। तब तक आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

ऑलराइट, 1:04 का वक्त हो गया है और आपको बता दूं प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये दिन पूरे विश्व को हमारे ग्रह पृथ्वी की रक्षा के लिए एकजुट होने का संदेश देता है। इस वर्ष 2026 की वैश्विक थीम इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर, अर्थात प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए हमारे भविष्य के लिए। यह थीम हमें ये याद दिलाती है कि पृथ्वी की रक्षा हमारे हाथ में है और हम सब मिलकर सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। अवगत कराना है कि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा दिनांक 5 जून 2026 को मार्स हॉल इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान विभूति खंड गोमती नगर लखनऊ में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। उक्त सेमिनार का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया गया और इसकी जो पूरी डिटेलिंग है इसके लिए हमारे साथी सर्वेश कनेक्ट हो रहे हैं सीधे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान से हमारे साथ। तो आप रहिए कनेक्टेड हमारे साथ उनसे जो हमने बातचीत की उसके बारे में जानकारी लेने के लिए।

0: जी सर्वेश जी, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। मतलब आप वहाँ हैं और हम यहाँ हैं।
1: मैं अभी मौजूद हूँ इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में
0: जी।
1: और जैसा कि आज विश्व पर्यावरण दिवस है, होठों पे तेरी बात, तो मुझे लगता है आज केवल बात पेड़ों की होनी चाहिए, पर्यावरण की होनी चाहिए
0: जी,
1: और जो प्रकृति है उसकी होनी चाहिए। और यहाँ पर प्रोग्राम अराउंड 11 बजे शुरू हुआ था
0: जी।
1: और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी रहे, 1 घंटे तक की उनकी उपस्थिति रही
0: जी।
1: और बहुत सारी बातें उन्होंने बताई। तो पहले मैं इस प्रोग्राम के बारे में आपको बता दूं, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है और आज का दिन जो है एक पेड़ माँ के नाम
0: जी।
1: तो आज एक दिन में 5 करोड़ जो पौधे हैं उनको लगाकर आज इस अभियान का शुभारंभ किया जाएगा। और माननीय योगी जी ने बताया कि जो आने वाला मानसून सीजन है तो उसमें भी वन महोत्सव मनाया जाएगा
0: जी।
1: और उसमें भी बहुत सारे हमें पौधे लगाने होंगे। और उन्होंने ये भी बात कही कि सिर्फ हमें पौधा लगाना ही नहीं है, उसका संरक्षण भी करना है। साथ ही साथ उन्होंने ये बात भी कही कि जल संरक्षण बहुत जरूरी है। अक्सर हम अपनी आदतों में देखते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पर जैसे ब्रश करते हैं तो नल खुला छोड़ देते हैं,
0: जी
1: तो उन्होंने ये सब बातें कही। और धरती माँ की एक पुकार, पौधे रोप वो बारम्बार। और इस साल की जो विश्व पर्यावरण दिवस की थीम है प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए हमारे भविष्य के लिए।
0: जी
1: और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो आज विश्व बैंक के सहयोग से 2741 करोड़ की लागत वाली भारत की पहली एयर शेड आधारित उत्तर प्रदेश स्वच्छ वायु प्रबंध परियोजना की भी लॉन्चिंग की गई। और आगामी जो वन महोत्सव मनाया जाएगा उसमें 35 करोड़ पौधे और लगाए जाने हैं। और साथ ही साथ वृक्षारोपण महाअभियान 2026 के लोगों का भी अनावरण आज किया गया और जिन बच्चों ने इस पुरस्कार जीता इस लोगों को बनाने में उनको माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पुरस्कृत भी किया गया
0: जी।
1: तो ये सारे कार्यक्रम है। और अभी की जो बात है, अभी टेक्निकल सत्र चल रहा है, अभी प्रोग्राम चल ही रहा है
0: जी।
1: और पिछले 9 वर्षों में 242 करोड़ पौधे लगाए गए हैं। और श्रावस्ती जनपद में केन नाला गुलरा वहां

0: एक रामसर जो साइट्स होती है उसका भी उद्घाटन किया गया है, और मुख्यमंत्री जी ने आज कुकरेल रेंज में पौधारोपण करके इस महोत्सव की शुरुआत करी जो आज हम विश्व पर्यावरण दिवस मना रहे हैं। तो बस यही कहना चाहूंगा कि जितने भी लोग सुन रहे हैं
1: जी
0: आकाशवाणी लखनऊ का FM रेनबो धड़कन लखनऊ की,
1: जी
0: तो उन सभी से बस यही कहना चाहूंगा कि पेड़ जरूर लगाएं, और जब आप पेड़ लगाते हैं उसका संरक्षण भी करें, उसे पानी भी दें, खाद भी दें। बस यही एक मैसेज है मेरी तरफ से।
1: जी
0: और फातिमा आप कुछ पूछना चाहें तो मैं बता सकता हूँ।
1: नहीं, बहुत शुक्रिया, आपने तकरीबन हम तक सारी जानकारी हम तक पहुंचा दी
0: जी
1: है
0: जी जी
1: और
0: जी
1: काफी
0: जी बस
1: फ्रूटफुल इन्फॉर्मेशन आपने हमारे लिसनर्स को और हमें खुद भी दी है। थैंक यू सो मच हमारे साथ कनेक्ट होने के
0: जी
1: लिए।
0: बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
1: ओके ओके ओके ऑल राइट। तो सर्वेश जी से बातचीत करने के बाद अब वक्त हो जाता है कि भाई अब कुछ ही समय में आप तक इलाकाई खबरें पहुंचाई जाएं। आप रहिए कनेक्टेड हमारे साथ 100.7 FM रेनबो पर।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

0: आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। आज आलमी योम माहौलियात है। जमीन पर सभी जानदार की जिंदगी की अहमियत बनाए रखने और उसके तहफ्फुज के लिए बेदारी बढ़ाने के मकसद से अक्वामे मुत्तहिदा माहौलियात प्रोग्राम के तहत ये दिन मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 5 जून 1973 से हुई थी। इस मौके पर नायब सदर जमहूरिया सीपी राधा कृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क की आवाम को मुबारकबाद पेश की है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज अपनी सरकारी रिहायशगाह पर आलमी यौमे माहौलियात 2026 के मौके पर एक पेड़ मां के नाम मुहिम के तहत आम का पेड़ लगाकर शजरकारी की। इस दौरान वजीर आला ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरगीब से गुज़िश्ता 9 सालों के दौरान रियासती हुकूमत ने माहौलियात और नेचर के तई अपनी जिम्मेदारियों को अदा करते हुए कई खसूसी पेशकदमी की है। पहले ही साल 2017 में वन महोत्सव के मौके पर डबल इंजन हुकूमत ने 5 करोड़ शजरकारी के बड़े काम को अपने हाथों में लिया है। उन्होंने आवाम को आलमी यौमे माहौलियात की मुबारकबाद भी पेश की। वजीर आला ने कहा
1: कि उस समय तमाम चैलेंजेस हमारे सामने थे, न नर्सरी थी, न इस प्रकार के बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए उस प्रकार के कोई अनुभव ही, लेकिन बाद में वन विभाग और प्रदेश सरकार के अन्य सभी विभागों ने मिलकर के एक बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के दिशा में कार्य किया और गत 9 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर वन महोत्सव के अवसर पर होने वाले वृक्षारोपण के क्रम में अब तक 242 करोड़ वृक्षारोपण के बड़े कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने में प्रदेश सरकार ने सफलता प्राप्त की।
0: आज इस मौके पर चित्रकूट, गाजियाबाद, कानपुर देहात, जौनपुर, मऊ, अमरोहा और दीगर इजला में शजरकारी की गई। दरियासना एक दीगर प्रोग्राम में वजीर आला ने लखनऊ के कुकरैल जंगल हलके में शजरकारी करके रियासत गिर मुहिम का इफ्तिताह किया। इस साल रियासत में एक दिन में 5 करोड़ पेड़ लगाने का निशाना रखा गया है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ के इंदिरा गांधी ऑडिटोरियम में आलमी बैंक के तावन से 2741 करोड़ रुपए की लागत वाली एयर शेड पर मबनी उत्तर प्रदेश साफ हवा मैनेजमेंट प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। उन्होंने शजरकारी महाअभियान 2026 के तहत 35 करोड़ शजरकारी महाअभियान के लोगों का इजरा किया। इस मौके पर वजीर आला ने कहा कि माहौलियात के चैलेंजेस का सामना करने के लिए हिन्दुस्तान की कदीम रवायत में रचे बसे अंसर को भी अपनाना होगा। उन्होंने कहा कि जब कुदरत महफूज रहेगी तभी इंसानियत महफूज रह पाएगी। वजीर आला ने कहा
1: उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए या भारत जैसे देश के लिए जिसके बारे में कहा जाता है ये कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का देश या कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का राज्य, और उसमें अगर मौसम चक्र में अंतर आएगा तो सबसे अधिक प्रभावित कौन होगा? किसान की आमदनी पे असर पड़ेगा, अतिवृष्टि का सामना करना पड़ेगा, अनाव

0: वृष्टि का सामना करना पड़ेगा, खाद्यान्न का संकट खड़ा हो सकता है और पूरी दुनिया आज उन चीजों से चिंतित भी है और उनके लिए असमय घटित होने वाली प्राकृतिक आपदाएं एक चेतावनी भी है।
1: वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज 3 रोजा दौरे पर लखनऊ पहुंचे हैं। इस दौरान वो मुख्तलिफ समाजी तंजीम और अवामी राबता प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे, साथ ही शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अवाम और पार्टी अहदेदारों से मजाकिरात भी करेंगे। वजीर दिफा आज उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ के साथ बायोयुग ग्रीन कमांड प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। वजीर दिफा आज आलमी योम माहौलियात के मौके पर कैंट वाके कस्तूरबा पार्क में एक पेड़ माँ के नाम मुहिम के तहत शजरकारी भी करेंगे। बनारस में ब्रिक्स ममालिक के कल्चरल वर्किंग ग्रुप की 2 रोजा मीटिंग आज दूसरे दिन भी जारी है। मीटिंग में ब्रिक्स अराकीन ममालिक के नुमाइंदे सकाफती तआवुन की मुख्तलिफ अव्वलियत वाले शोबों पर गौर खोज कर रही है। मीटिंग के दौरान क्रिएटिव मईशत, सकाफती विरासत के तहफ्फुज़, तहजीब पर मबनी हमी जहत तरक्की और आवाम से राबते को मजबूत बनाने जैसे मौजू पर बहस हो रही है। वाज़ेह है कि सेशन का इफ्तिताह कल किया गया था, जिसकी सदारत हिन्दुस्तान हुकूमत के सकाफत सेक्रेटरी विवेक अग्रवाल ने की थी। 2 रोजा इस मीटिंग का इख्तिताम आज होगा। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी ने इम्तिहानी अमल को मजीद महफूज और शफाफ बनाने के लिए चेहरे की तस्दीक का निजाम मुतारिफ कराया है। कमीशन ने हाल ही में मुनक़िद होने वाले इब्तदाई सिविल सर्विसेज इम्तिहान और उस साल के इंडियन फॉरेस्ट सर्विस इम्तिहान में कामयाबी के साथ इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। यह सिस्टम इस बात को यकीनी बनाता है कि दरख्वास्त फॉर्म भरते वक्त जिस उम्मीदवार की तस्वीर अपलोड की गई थी वही उम्मीदवार है जो दाखिला कार्ड के साथ इम्तिहानी मरकज में मौजूद है। खवातीन और बच्चों की तरक्की की वजारत ने अगस्त सितंबर के सेशन के लिए अपने इंटर्नशिप प्रोग्राम में शिरकत के लिए खवातीन से दरख्वास्तें तलब की है। इसमें तुलबा, मुहक्किकीन, समाजी कारकुनान और किसी यूनिवर्सिटी या दीगर तालीमी या गैर तालीमी इदारे से वाबस्ता असातज़ा शामिल हैं। और महकमे मौसमियात ने लखनऊ समेत कई जिला में आइंदा कुछ घंटे में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम साइंस मरकज के मुताबिक दारुल हुकूमत लखनऊ समेत रियासत के कई हिस्सों में मुतवस्सित से लेकर हल्के आंधी तूफान और गरज चमक के साथ बारिश होने का इम्कान है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।

1:22 का वक्त और फिल्म दिल है तुम्हारा से ये ट्रैक अभी आपने एंजॉय किया 100.7 एफएम रेनबो पर। अच्छा, आज अभी कुछ देर पहले जैसे हमारी सर्वेश जी से बात हुई थी, उन्होंने कहा था प्रोग्राम होटो पे तेरी बात में जो डिस्कशन होना चाहिए वो पर्यावरण से जुड़ा होना चाहिए। बेशक हमने इस बात को बड़ा सीरियसली ले लिया और हमने सोचा कि भाई आज के वक्त में पर्यावरण संरक्षण जो है वो सिर्फ एक विषय नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से जुड़ा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिस्कशन का मौजू है। जलवायु परिवर्तन, प्लास्टिक प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों की कमी जैसी चुनौतियां लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में हम अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को छोटी उम्र से ही पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाने

ना हमारे लिए बेहद ज़रूरी हो गया है, हमारी ये जिम्मेदारी है, हम इसके लिए अकाउंटेबल हैं। लेकिन अब यहाँ पे आज मैं इस प्रोग्राम के माध्यम से आपसे जानना चाहती हूँ, आपसे ईमेल्स इनवाइट कर रही हूँ आपकी, कि आप हमें ये बताइए कि बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाने के लिए आप कौन सा तरीक़ा अपनाते हैं, खेल खेल में किस तरीके से आप उनके अंदर प्रकृति प्रेम जागरूक करते हैं, उसको मतलब उनके अंदर किस तरीके से इसको डेवलप करते हैं। तो इसके लिए आपको ख़ास ज़्यादा पेंस नहीं लेने होंगे। fmakashwani@gmail.com इस मेल एड्रेस पर मेल करिए। जब तक मैं इंतज़ार कर रही हूँ आपके मेल्स का, आपको बिल्कुल इंतज़ार नहीं करवाऊँगी, आप तक पहुँचाऊँगी एक बहुत ही बेहतरीन सा ट्रैक। तो रहिए कनेक्टेड हमारे साथ। अच्छा, इसी बीच में हमारे पास एक मेल आ गया है, लेकिन हाँ, मोनू जी का मैसेज आया है हमारे पास। इन्होंने लिखा है, पौधा लगाएं, गर्मी दूर भगाएं और धूप से भी छांव फ्री में पाएं। क्या बात है। खैर, फिलहाल मोनू जी, अभी जो मैंने टॉपिक दिया है ना, उस पर ज़रूर अपने व्यूज़ हमारे साथ साझा करिए। बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाने के लिए आप कौन से तरीक़े अपनाते हैं, इस पर ज़रा अपने हमें पॉइंटर्स बताइए। अच्छा, इसके साथ हमारे पास रामराज जी का भी मेल आ गया है। इन्होंने लिखा है, हम सभी से निवेदन करते हैं, पेड़ लगाओ, सभी लोग एक पेड़ माँ के नाम से लगाओ। हमारी तरफ से आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। ओके, तो अब टाइम बिल्कुल नहीं वेस्ट करेंगे, एक बेहतरीन सा ट्रैक आप तक पहुँचाएंगे।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीएमटी सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: ऑलराइट, 1:30 का वक्त हो गया और हमारे पास ईमेल्स कुछ हमें प्राप्त हो चुके हैं। तो पहला ईमेल जो मैं शामिल कर रही हूँ वो किसका है, अंजू ने मेल किया है। इन्होंने लिखा है, अगर हम होम अप्लायंसेस सोच समझ के यूज़ करें तो एनवायरनमेंट को हम सेव कर सकते हैं। सपोज अभी गर्मी में एसी के बजाय कूलर यूज़ करें तो हम हार्मफुल गैसेस से एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं, क्योंकि जो गैसेस एसी और रेफ्रिजरेटर में यूज़ होती हैं उससे ओजोन लेयर में होल हो जाता है, जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है और ग्लोबल वार्मिंग होती है। बट रेफ्रिजरेटर को काफ़ी यूज़फुल है, बट एसी सिर्फ हवा देते हैं और कोई काम नहीं है, बट इसके नुकसान बहुत है। ऑल राइट, ओके। अब एक अगर मार्केट में, ऑल राइट। तो हमें ऐसे ऑप्शंस, अंजू ने ये बताया है कि भाई हमें ऐसे ऑप्शंस तलाशने चाहिए जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो और पॉकेट फ्रेंडली भी हो। थैंक यू सो मच। फिलहाल आज जो हमारा टॉपिक था उस पर किसका मेल हमें प्राप्त हुआ है, ओके ये हमारे पास मेल आया है सल्तनत का, लखनऊ से। इन्होंने लिखा है कि बच्चों के नाम से हमने पौधा लगवाया था। ओके, पिछले साल इन्होंने लिखा है कि हमने अपने घर में जितने बच्चे हैं उनके नाम से एक एक पौधा लगवाया था और उन्हीं से लगवाया था। उन्हें हमने इन पौधों को रोज़ पानी देने की जिम्मेदारी दी। पौधे की ग्रोथ को मापने का एक खेल बनाया है, इससे बच्चे हमारे जो हैं वो नेचर के प्रति और ज़्यादा कनेक्टेड महसूस करते हैं और अब तो वो आ करके अपने जो अच्छे बुरे अनुभव हैं वो भी हमारे साथ शेयर करते हैं और जब कहीं फंस जाते हैं ना तो वो उसका सल्यूशन भी चाहते हैं। गुड, वेरी गुड, बड़ा अच्छा लगा ये जानकर के कि पिछले साल आपने ये इनिशिएटिव लिया था। ऑल राइट, नेक्स्ट हमारे पास एक मेल आया है, ये आयशा का है बाराबंकी से। इन्होंने लिखा है, हमने अपने घर में सूखे और गीले कचरे के लिए अलग अलग डिब्बे रखे हुए हैं। हमारे घर के जितने भी बच्चे हैं उन सभी को सही डिब्बे में कचरा डालने का निर्देश तो हमने दिया हुआ है, लेकिन इसको हमने खेल में तब्दील कर रखा है। ओके, खेल कैसे खेलाते हैं? ओके, हर सही अटेम्प्ट के लिए एक स्टार हम देते हैं अपने बच्चों को। ओके, ऑल राइट, इन्होंने बाकायदा लिखा है कि बहुत प्रॉपरली इन्होंने चार्ट बना रखा है, तो जो भी बच्चा ये अटेम्प्ट करता है, सही डिब्बे में कचरा डालता है ना, वो ईमानदारी से जाके उस चार्ट पे टिक कर देता है और इसके बाद हम मंथ के एंड में उनको छोटे छोटे कुछ गिफ्ट्स देते हैं, जिसके पॉइंट्स ज़्यादा होते हैं उसको गिफ्ट्स मिलते हैं। ग्रेट गोइंग, वेरी

डायशा। इसके बाद हमारे पास एक और मेल आया है, ये हमारे पास सऊद का आया है, लखनऊ से। इन्होंने लिखा है, हमारे घर में 5 बच्चे हैं और हम अपने घर में एक वाटर हीरो नाम की प्रतियोगिता आयोजित करते हैं। ओके, कैसे करते हैं ये? कम पानी इस्तेमाल करने वाले बच्चे को छोटा सा इनाम देते हैं एंड ऑफ द मंथ, और उनसे कहते हैं कि भाई आप बताइए कि जल संरक्षण का महत्व आपको किस लेवल पे समझ में आया है। ऑल राइट, हर महीने ही करते हैं, तो जो भी बच्चा विन करता हो, मेरे ख्याल से ये भी उसी तरीके की कुछ पद्धति इस्तेमाल करते होंगे जैसे आयशा करती हैं, कि भाई कोई चार्ट बना होगा, उस पर टिक करने का या कुछ पॉइंट्स लिखने का होगा। लेकिन हाँ, तरीके बहुत कारगर साबित होने वाले हैं, बाकी लिसनर्स भी जो सुन रहे होंगे ना, उनके लिए भी बड़े फ्रूटफुल साबित होंगे ये सारे के सारे। इसके बाद हमारे पास सुधाकर जाधव जी का मेल आया है, विश्व पर्यावरण दिन की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। आने वाले मॉनसून में हम हमारे खेत के बांध पर 2 पेड़ माँ बाप के नाम लगाएंगे। अच्छा, और आज से पहले इन्होंने 10 साल पहले तकरीबन पेड़ लगाए थे, तो आज उन पेड़ों को देख करके हमें बड़ा गौरवान्वित महसूस होता है। थैंक यू सो मच आपके इस थॉट प्रोसेस के लिए, और जाफराबाद से आपने हमें मेल किया है, थैंक यू मेल करने के लिए। और राइट, बाकी लिसनर से भी हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास भी कुछ पॉइंटर्स हैं कि किस तरीके से आप अपने बच्चों के अंदर ये हैबिट डेवलप करते हैं तो पर्यावरण संरक्षण की, तो प्लीज़ हमारे साथ ज़रूर साझा करिए। हम इंतज़ार कर रहे हैं आपके मेल्स का, क्योंकि घर पे ना हम खेल खेल में कई सारी बातें अपने बच्चों को सिखा जाते हैं, और स्पेशली जब वो घर पे सीखते हैं ना खेल खेल में, नेचर की तरफ जो उनकी जिम्मेदारी है, नेचर से जो उनका लगाव है, अगर वो सीख जाते हैं तो वो उनके साथ लाइफ लॉन्ग चलता है। तो इसी नोट पर एक और बेहतरीन सा ट्रैक आप तक पहुँचाएंगे। आप रहिए कनेक्टेड हमारे साथ 100.7 FM रेनबो पर।

दिलवाले फिल्म का ये ट्रैक अभी आपने एंजॉय किया 100.7 FM रेनबो पर, और प्रोग्राम होटो पे तेरी बात चल रहा है। आप एंजॉय कर रहे हैं आज इस प्रोग्राम को मेरी यानी फातिमा के साथ, और आज हम आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं, आपके ईमेल्स इनवाइट कर रहे हैं इस टॉपिक के बारे में कि भाई बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाने के लिए क्या तरीका अपनाते हैं आप। रोशनी रावत जी, गुड आफ्टरनून। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और मुझे पता है कि आप लोग मुझे मिस करने लगते हैं, इसीलिए देखिए मैं ऑन एंड ऑफ आ जाती हूँ। ऑल राइट, ज़िला उन्नाव से आपका मेल हमें प्राप्त हुआ है। इन्होंने लिखा है, मेरे घर में दीदी के बच्चे हैं, उनको मैं हमेशा छोटी छोटी बातें बताया करती हूँ, पेड़ कैसे लगाते हैं और देखभाल कैसे करते हैं, सब मैं उन्हें सिखाती हूँ। इसके अलावा जब भी मैं गाँव जाती हूँ तो मेरा समय ज़्यादातर उन्हीं के पास गुजरता है, वहाँ बैठ कर अकेले में ही बातें करते हैं। ओके, पेड़, अच्छा इन्होंने कुछ पेड़ लगाए हैं अपने गांव में, वहीं पे इनका टाइम ज़्यादा स्पेंड होता है। साथ ही लिखा है, आज मेरी दोस्त मेरे नाम से एक पौधा लगाएगी। ऑल द बेस्ट आपकी दोस्त को, और उसको ढेर सारा अज्र मिले इस एक्ट का, बस हम यही कह सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जय जी का मेल आया है उत्तम नगर दिल्ली से। इन्होंने लिखा है, पर्यावरण में हमारे चारों ओर मौजूद हर चीज़ शामिल है, हवा, पानी, ज़मीन, पेड़ पौधे और जीव जंतु। ये हमें सांस लेने के लिए ताज़ी हवा, पानी के लिए पानी, अच्छा पीने के लिए पानी और खाने के लिए भोजन देते हैं। अगर हम आपके पर्यावरण को स्वच्छ और हरा भरा रखें तो सभी स्वस्थ रहते हैं। अच्छा, ये सीख ये देते हैं अपने घर पर मौजूद बच्चों को, मतलब ये सब बातें ऐसी नहीं है कि जो एक पर्टिकुलर डे के साथ एसोसिएटेड हो, ये सब बातें आपको ऑन एंड ऑफ करती रहना पड़ेंगी, तभी ये सब चीज़ें इम्पैक्ट लाएंगी हमारी लाइफ में। डे सेलिब्रेट करने का तात्पर्य सिर्फ ये होता है ताकि हमारी जो एक्सपेक्टेशंस है ना, हम उन्हें सेट कर सकें उस पूरे साल के लिए या कुछ टेन्योर के लिए, और उसके बाद उस पर काम कर सकें। क्योंकि अगर एक दिन दे करके आप कोई गोल नहीं सेट करेंगे ना, तो प्रैक्टिकली कुछ भी पॉसिबल नहीं है इस दुनिया में। ऑल राइट, नेक्स्ट है हमारे पास मेल आया है सारा का, लखनऊ से। इन्होंने लिखा है,

सेट करेंगे ना, तो प्रैक्टिकली कुछ भी पॉसिबल नहीं है इस दुनिया में. ऑल राइट, नेक्स्ट है, हमारे पास मेल आया है सारा का, लखनऊ से. इन्होंने लिखा है, मैं बच्चों को कपड़े का बैग इस्तेमाल करने के ऊपर तवज्जो देती हूँ. ओके, इन्होंने ये लिखा है कि जब मेरे बच्चे बाहर जाते हैं कुछ सामान खरीदने, तो वो शुरू में उनकी हैबिट नहीं थी कि वो अपने साथ थैला लेके जाएं, लेकिन ग्रेजुअली मैंने उन्हें ये चीज़ सिखा दी है कि अब वो बगैर थैला लिए कोई भी सामान लेने नहीं जाते हैं. साथ ही साथ बाहर से जो प्लास्टिक की बॉटल्स हैं वो नहीं खरीदते हैं, रीयूजेबल पानी की बॉटल्स घर से लेके जाते हैं, क्योंकि मैंने उन्हें बहुत कायदे से सिंगल यूज प्लास्टिक से होने वाले नुकसान के बारे में अवगत कराया हुआ है. ऑल राइट, बहुत ही अच्छी अप्रोच है आपकी, और उम्मीद है कि जो भी लिसनर्स सुन रहे होंगे ना, उन सबको इन अप्रोचेस से कुछ ना कुछ मदद ज़रूर मिलेगी. ओके, इसके बाद हमारे पास एक मेल, फटाफट में पढ़ लेती हूँ, और प्राप्त हो गया है मैं ये मेल. हमारे पास आया है लखीमपुर खीरी से, साक्षी ने लिखा है, प्रकृति को करीब से जानने का मौका हमें पार्क गार्डन या जंगल सफारी में मिलता है, और इसलिए मैं अपने बच्चों को ऑन एंड ऑफ इन जगहों पर ले जाती हूँ. पक्षियों, पेड़ों और फूलों के बारे में जानकारी देती हूँ. नेचर स्केवेंजर हंट जैसे खेल खिलाती हूँ. बच्चों में इन ये सब करने से पर्यावरण के प्रति जिज्ञासा बढ़ती है, और मैंने देखा है पिछले 1 साल से, जब से मैंने इसको इम्प्लीमेंट किया है, मेरे बच्चों में काफ़ी सारा बदलाव आया है. वेरी गुड, वेल डन. ओके, नेक्स्ट, बाकी लेसन से भी हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी आपके पास अभी कुछ तरीक़े हैं जो आप अपने बच्चों को सिखाते हैं खेल खेल में, कैसे आप पर्यावरण के प्रति अपने बच्चों को जागरूक बनाते हैं, तो हमारे साथ साझा करिए. हमारा ईमेल एड्रेस है fmakashwanilakhnow@gmail.com. सो स्टे ट्यून एंड कीप एंजॉइंग 100.7 FM रेनबो, जो है धड़कन लखनऊ की.

ऑल राइट, बैकग्राउंड में आप ये सॉन्ग इन्जॉय करते रहेंगे, लेकिन उससे पहले क्योंकि वक्त अलाउ नहीं कर रहा है तो मेरे पास पता नहीं क्यों जाते वक्त एकदम आप लोगों को, आप लोग अलर्ट मोड पर आ जाते हैं ना, तो मैं मेल्स कभी भी किसी की अनदेखी नहीं करना चाहती हूँ. एमके राज का मेल हमारे पास आ गया है लखीमपुर खीरी से. इन्होंने लिखा है, हम अपने बच्चों को मोबाइल पर गेम की जगह पर्यावरण, वन और जीव जंतुओं के वीडियो दिखाते हैं और उन्हें सिखाते हैं, साथ ही छोटे छोटे पक्षियों, नदियों व तालाबों के बारे में भी बताते हैं. थैंक यू सो मच इस जानकारी के लिए. सतीश अनेजा जी का मेल आ गया हमारे पास चंडीगढ़ सिटी से. इन्होंने लिखा है, बच्चों को पर्यावरण के बारे में जागरूक करना बहुत ज़रूरी है. छोटे बच्चों को ही पौधों को पानी दिलवाना चाहिए. प्लास्टिक का इस्तेमाल ना हो इसके लिए भी संचित करना चाहिए. पर्यावरण के बारे में उम्दा जानकारी देते रहना चाहिए. ओके सुधाकर जी, आपका मेल हम ऑलरेडी शामिल कर चुके हैं. ओके अजीत भावसार जी का भी मेल हमारे पास हम पहुंच चुका है और इन्होंने गुजरात से मेल किया है और एक अटैचमेंट हमें भेजी है जिसमें एक JPG फाइल है. तो उसमें उन्होंने लिखा है, सिर्फ विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. आपको भी ढेरों शुभकामनाएं. फिलहाल इसी नोट पर आज हम इस प्रोग्राम को यहीं वाइंड अप करेंगे और एक छोटे से म्यूजिकल और न्यूज़ ब्रेक के बाद आपसे दोबारा रूबरू होंगे प्रोग्राम हॉटमेल में. आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज़ 2 बजे के बाद ही हमें मेल करिएगा क्योंकि उसके बाद वाली ही मेल्स और जो फरमाइशें हैं वो हम शामिल कर पाएंगे. स्टे ट्यून्ड एंड कीप एंजॉयिंग.

0: As said, conditions are favourable for further advance of southwest monsoon into some more parts of central Arabian Sea, entire Goa, parts of Maharashtra, Andhra Pradesh, Karnataka, remaining parts of Tamil Nadu and parts of northeastern states during the next 2 to 3 days. The weather agency predicted heavy to very heavy rainfall during the day in places over coastal Karnataka, Kerala and Mahe, north interior Karnataka, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to dedicate and lay foundation stone of multiple development projects worth over 18,800 crore rupees in Gujarat today. Centre grants tax exemption to foreign institutional investors on capital gains in government securities. RBI keeps repo rate unchanged at 5.25%, reduces GDP growth projection to 6.6% from 6.9% for current fiscal. Nepal Foreign Minister Shishir Khanal to arrive in New Delhi on 3-day visit today. World Environment Day being observed, government inaugurates 18 Namo Oxygen Parks in New Delhi. And India to take on arch rivals Pakistan in semi-final of men's under-18 Asia Cup hockey in Japan this evening. With that, we end the midday news.
1: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों के पूंजीगत लाभ पर कर छूट प्रदान की। रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कोई बदलाव न करते हुए उसे 5.25% पर यथावत रखा। चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान 6.9% से घटाकर 6.6% किया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर। विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। सरकार ने नई दिल्ली में 18 नमो ऑक्सीजन पार्कों का उद्घाटन किया और जापान में पुरुषों के अंडर 18 हॉकी एशिया कप के सेमीफाइनल में आज शाम भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों के 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा जाएंगे। प्रधानमंत्री दोपहर में एक जनसभा को संबोधित करने से पहले औद्योगिक और बुनियादी को दमन का दौरा करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी वहां लगभग 2,970 करोड़ रुपए के विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दमन में नमो हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन और आधुनिक नमो अस्पताल का उद्घाटन करेंगे, जिससे केंद्र शासित प्रदेश में क्षेत्रीय हवाई संपर्क और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री आज दमन कन्वेंशन सेंटर, निफ्ट परिसर और एक प्रतिष्ठित ब्रिज समेत कई ऐतिहासिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे। समुद्री विकास की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में प्रधानमंत्री आज केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के लिए भी 885 करोड़ रुपए की बंदरगाह परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं के तहत कल्पेनी और कदमत द्वीपों पर बहुउद्देश्य जेटियों का विकास किया जाएगा, जिससे स्थानीय मछुआरों को एकीकृत मछली पकड़ने और नाव मरम्मत सुविधाएं मिलने के साथ साथ बड़े यात्री और क्रूज जहाजों के लिए साल भर रुकने की व्यवस्था उपलब्ध होगी। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, सूरत।
1: सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों से होने वाले पूंजीगत लाभ और ब्याज से आय को पूरी तरह से कर छूट दे दी है। ये छूट इस वर्ष 1 अप्रैल से लागू होगी। सरकार ने इस संबंध में आयकर संशोधन अध्यादेश 2026 जारी किया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस कदम से सरकारी प्रतिभूतियों पर कराधान कई देशों के समान हो जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि इसी तरह के आयकर छूट बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स को भी दी गई है। रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान प्रमुख ब्याज दरों को यथावत रखा है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने का निर्णय लिया है, जबकि नीतिगत तटस्थ रखा गया है।
3: After हमने बदलती दीर्घ आर्थिक और वित्तीय परिस्थितियों तथा भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा की है। इसके बाद समिति ने सर्वसम्मति से LAF के अंतर्गत नीतिगत

0: रेपो दर को 5.25% पर ही बनाए रखने का निर्णय लिया है।
1: स्थायी जमा सुविधा की दर 5% पर बनी हुई है, जबकि सीमांत स्थायी सुविधा और बैंक दर 5.5% पर ही है। बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान को पहले के 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है। बैंक ने मुद्रास्फीति के अपने पूर्वानुमान को भी 4.6% से बढ़ाकर 5.1% कर दिया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि पॉलीमर आधारित करेंसी नोट का प्रस्ताव बैंक के विचाराधीन है। देश के विभिन्न हिस्सों में बैंक शाखाओं और एटीएम में नोटों की कमी को लेकर कुछ ग्राहकों ने शिकायतें की हैं। इन मुद्दों पर उन्होंने कहा कि बैंक के पास पर्याप्त नकदी है और यदि कोई कमी है तो उसे तुरंत पूरा कर दिया जाएगा। उद्योग संगठन एसोचैम ने आरबीआई के रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने के निर्णय की सराहना करते हुए कहा है कि यह विकास को गति देगा और उद्योग जगत को मजबूती प्रदान करेगा। एसोचैम के महासचिव सौरभ सान्याल ने कहा कि यह निर्णय आर्थिक प्रगति के साथ साथ मुद्रास्फीति को एक सुरक्षित दायरे में बनाए रखने में मददगार होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की डिजिटल बुनियादी ढांचा यात्रा गति पकड़ रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एयर ट्रंक ने भारत में लगभग 3,00,000 करोड़ रुपए का निवेश करने और 5 GW डेटा सेंटर क्षमता विकसित करने की योजना की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि यह देश का डिजिटल बुनियादी ढांचा पारिस्थितिकी तंत्र में प्रस्तावित सबसे बड़े निवेशों में से एक है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन के भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खनाल विदेश मंत्री एस जयशंकर के निमंत्रण पर भारत आ रहे हैं। इस यात्रा के दौरान श्री खनाल नई दिल्ली में डॉ जयशंकर से मुलाकात करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश व्यापार, निवेश, संपर्क, ऊर्जा और जन संबंधों सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से पारस्परिक हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। एक रिपोर्ट।
2: विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य प्रकृति और पृथ्वी की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना और सकारात्मक कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह राष्ट्रीय राजधानी में मैदानगढ़ी स्थित नमो ऑक्सीजन पार्क में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री अपने अपने राज्यों में विश्व पर्यावरण दिवस से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। यह दिवस पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, लोगों को कार्यवाही के लिए प्रेरित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने का अवसर है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय मंत्रियों ने विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत की सभ्यता ने अपने नागरिकों को प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर रहना सिखाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एक पेड़ माँ के नाम जैसी पहलों ने प्रतिवर्ष लगभग 1.1 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये दिन पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को व्यक्त करने का प्रतीक है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज त्रिपुरा के लंकामुरा सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों को संबोधित करते हुए सीमा सुरक्षा को लेकर एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। विश्व पर्यावरण दिवस पर श्री शाह ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सीएपीएफ के पर्यावरणीय योगदान को लेकर कहा कि वर्ष 2019 से सीएपीएफ कर्मियों द्वारा लगभग 6,40,00,000 पौधे लगाए गए हैं।
3: 2019 से लेकर आज तक हमारे सभी सीएपीएफ में जवानों ने लगभग 6,40,00,000 वृक्षों को लगाने का काम किया। इस साल हम 40,00,000 से 60,00,000 वृक्ष लगाने वाले हैं और अगले साल हम सबका एक सामूहिक संकल्प बनने वाला है कि अगले साल एक ही वर्ष में सीएपीएफ के जवान 2 करोड़ से ज्यादा वृक्षों का लगाने का काम करेंगे और पर्यावरण की और देश की सेवा करेंगे।
1: सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने आज नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी परिसर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत पौधा लगाया।

0: आकाशवाणी से बात करते हुए डॉक्टर मुरुगन ने नागरिकों से पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेने की अपील की। उन्होंने जल संरक्षण, वृक्षारोपण और वृक्षों की रक्षा तथा संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया।
1: माँ का नाम से एक पेड़ लगाने के लिए हमारा प्रधानमंत्री जी ऑलवेज एक्सप्रेस एंड ही कॉल्ड टू द नेशन वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे, सो वी आर ऑल ऑब्जर्विंग दिस डे एस एन माँ का नाम से एक पेड़ लगाएंगे।
0: पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राजधानी में 18 नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत कई पर्यावरणीय पहलों का शुभारंभ किया। श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी देश बनकर उभरा है।
2: भारत दुनिया में जो विश्व पर्यावरण संकट है उसमें एनर्जी के क्षेत्र में, वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। जैसा अभी एरेना की रिपोर्ट में भी आया है कि सोलर ऊर्जा में हम दूसरे नंबर पे आए हैं, देश में वन क्षेत्र बढ़ रहे हैं और दिल्ली में आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में धूलमुक्त दिल्ली के लिए कार्यक्रम शुरू हुआ है। दिल्ली में जो लोकल वनस्पतियां और जो पेड़ हैं उसके लिए प्रदर्शनी लगाई गई है, सभी एक पेड़ माँ के नाम पे जरूर लगाएं।
0: इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए हरियाली बढ़ाना सबसे महत्वपूर्ण उपायों में से एक है। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि हब एंड स्पोक मॉडल का उपयोग करते हुए हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद नेटवर्क के माध्यम से लगभग 100 कारीगरों को अमेरिका के बाजारों से जोड़ा जा चुका है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि ये पहल स्थानीय स्तर पर निर्मित हस्तशिल्प को बढ़ावा देती है और वोकल फॉर लोकल के दृष्टिकोण को मजबूत करती है।
3: जो बसंत कुंज में अवस्थित ये मार्केट है, सरकार ने मुझे ये जमीन दी है आर्टिजन के बढ़ावा के लिए, तो हम इसमें आर्टिजन को अभी स्टॉल लगा रहे हैं। लोकल फॉर वोकल है, दूसरा एकदम पर्यावरण अनुकूल।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव का एक लेख साझा किया है। अपने लेख में श्री यादव ने पर्यावरण संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए सामूहिक कार्रवाई और जन भागीदारी का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि भूपेंद्र यादव ने प्रकृति आधारित समाधानों के माध्यम से इन चुनौतियों से निपटने का अनुरोध किया है जो टिकाऊ, किफायती और दीर्घकालिक पारिस्थितिकी लाभ प्रदान करने में सक्षम है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कई मंत्रियों ने एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत पौधारोपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलिया स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुरहा ताल को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि देश के प्राकृतिक परिवेश और विशेष रूप से आर्द्र भूमि की रक्षा के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता इसमें झलकती है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई के पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से दिए गए इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। अन्नामलाई ने हाल ही में भाजपा अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपा था। कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने आज अपने मंत्रालय के आवंटन को लेकर मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बेंगलुरु में संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वे विधायक के रूप में काम करते रहेंगे और कांग्रेस पार्टी में बने रहेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता जारी है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते में स्थायी रूप से ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोका जाना चाहिए। व्हाइट हाउस में ट्रंप ने कहा कि परमाणु अप्रसार उनकी सरकार के दृष्टिकोण का मुख्य उद्देश्य बना हुआ है। एक रिपोर्ट।
4: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भविष्य में किसी भी समझौते के अंतर्गत ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने वर्ष 2015 के परमाणु समझौते की आलोचना करते हुए इसे ईरान के परमाणु हथियार हासिल करने का मार्ग बताया और यह दावा किया कि कोई भी नया समझौता मौलिक रूप से अलग होगा। ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए अमरीकी हमलों का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि ये ठिकाने पूरी तरह नष्ट कर दिए गए थे और उन पर कड़ी निगरानी की जा रही थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर अमरीकी सैनिकों को निशाना बनाया गया तो तुरंत जवाबी कार्रवाई की जाएगी। अमरीका के राष्ट्रपति की ये टिप्पणियां ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर दीर्घकालिक समझौते तक पहुंचने के लिए जारी राजनयिक प्रयासों के बीच आई। समाचार कक्ष से जया भारती।

घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज लगभग 0.4% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलते तक सेंसेक्स 289 अंक फिसलकर 74,071 पर, जबकि निफ्टी 100 अंक लुढ़ककर 23,317 पर था। पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच जापान के काकामेगाहारा हॉकी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण करेंगे। सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों के पूंजीगत लाभ पर कर छूट प्रदान की। रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कोई बदलाव न करते हुए उसे 5.2% पर यथावत रखा। चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान 6.9% से घटाकर 6.6% किया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर, और विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। सरकार ने नई दिल्ली में 18 नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

2:44 का वक्त। बाबू अंसारी जी, अहमदपुर बाजार बाराबंकी से आपका मेल हमें मिल चुका है। हम ऑलरेडी शामिल कर चुके हैं। कुलदीप गुप्ता जी का नाम लिया था आपने, महेंद्र दीपान जी का नाम लिया था। कोशिश हम पूरी करेंगे आपके पसंद का ट्रैक हम प्ले कर पाए। ओके, आफ्ताब अंसारी जी, आपका भी मेल शामिल हो चुका है। पंकज शर्मा जी, आपने एक सॉन्ग सुनने की रिक्वेस्ट की है हमसे, और अब गुड आफ्टरनून हो चुका है सर। सुधीर, नूतन, संदीप, जगमोहन, प्रतिभा, इशप्रीत, इन सब का नाम लेने की रिक्वेस्ट की, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट हमारे पास किसका मेल है, हम फटाफट देख लेते हैं। ये हम सब शामिल कर चुके हैं। ओके, नवोदयन जी का मेल हमारे पास आ गया है, लखीमपुर खीरी से रेगुलर लिसनर है हमारे ये, और एक सॉन्ग सुनने की रिक्वेस्ट की है। थैंक यू मेल करने के लिए, हम कोशिश पूरी करेंगे ये सॉन्ग प्ले हो पाए। राम मोहन विश्वकर्मा जी, गुड आफ्टरनून, हम बिल्कुल ठीक हैं। सीतापुर उत्तर प्रदेश से आपका मेल हमें प्राप्त हो चुका है। आपके बजाए गए गाने तो सभी बेस्ट ही लगते हैं हमको। थैंक यू, हम प्ले ज़रूर करते हैं लेकिन चॉइस हमारे लिसनर्स की ही होती है। ताज मोहम्मद जी, आपका मेल हमें प्राप्त हो गया है, आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से। मेरे ख्याल से आपका भी मेल मैं स्टार्टिंग में पढ़ चुकी हूँ। बबलेश पनवर जी, आपका भी मेल शामिल हो चुका है, थैंक यू मेल करने के लिए। राजेंद्र नारंग जी, आपने हमें बटिंडा रोड मंडी डबवाली से मेल किया है। अंजू, मोहित, तानिया, इन सब का नाम लेने की रिक्वेस्ट की। अब्दुल गफ्फार जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें मेल किया खंडवा से। अब्दुल हक, जियाउल हक, मोहम्मद उमर, राजेंद्र कटोर, इन सब का नाम लेने की रिक्वेस्ट की और लिखा है कोई भी सॉन्ग सुनवा दीजिए। विजय महोपिया जी, हमारी भी हाजिरी लगा लीजिए, गीत कोई भी सुनवा दीजिए। आपकी हाजिरी लग गई भाई। और आपने कविता, सपना, ईशु, पेंटर बाबू, रामगंज, खंडवा, मध्य प्रदेश से मेल किया है मैं। ओके ओके ओके ओके, ओके, ओके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया, आपने मेल किया हमें। गुरमीत सिंह जी, आपका भी ट्रैक ट्रैक नहीं, आपका मेल हम शामिल कर रहे हैं साउथ एक्सटेंशन न्यू दिल्ली से, और थैंक यू मेल करने के लिए, इतना शॉर्ट एंड क्रिस्प मेल हम तक पहुंचाने के लिए। शंभू दयाल जी, आपको भी नमस्कार, कोई भी गीत हम ज़रूर सुनवाएंगे। नेक्स्ट ट्रैक आपको स्पेशली डेडिकेटेड है। विमला देवी, योगेश कुमार, दीपक कुमार, कुमारी पूजा खटक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेल करने के लिए हमें। ऑल राइट, नरेश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें मेल किया पानीपत से। लक्ष्य, लाडो कोयल, पापा जी, नानक चंद्र, पीयूष कोयल, डुगू भाविक, सबका नाम ले लिया हमने। सदानंद मंदोरकर जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें मेल किया है डापकी रोड अकोला से। सुशीला देवी, सदानंद कुमार, गौरव, आप सब का नाम लेने की रिक्वेस्ट की, एक सॉन्ग सुनने की भी रिक्वेस्ट की, कोशिश हम पूरी करेंगे। अहमद जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेल किया हमें। करजत मुंबई से, दुखनी सदव, जूही इकबाल, इमरान अहमद, बिटिया आमना, आसमा, राबिया, आशु अहमद, समस्त परिवार, समस्त फैमिली मेंबर्स को डेडिकेटेड है एक सॉन्ग इन्होंने लिखा है, कोशिश हम पूरी करेंगे उस सॉन्ग प्ले हो पाए। मुकेश कश्यप जी, आपका भी शुक्रिया, मुरादाबाद से आपका मेल हमें प्राप्त हो गया है। सुरेश, सोनू, राजपाल, काजल, मानवी, लक्ष्य, मोहिनी, बलवीर, किसी भी गीत में बस हमें शामिल कर लीजिए, हम बिल्कुल शामिल कर रहे हैं आपको। शंकरलाल जायसवाल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इताला महाराष्ट्र से आपने मेल किया है। गणेश लाल, शुभम प्रसाद, दुर्गेश्वरी जी, आप सबका नाम लेने की रिक्वेस्ट की थी, हमने नाम ले लिया है। सरिता जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहादुरा, नागपुर से मेल किया है आपने। अभिजीत, सरिता, प्रणितर, लाडला, ओके, ये मेरी मेल मेरे ख्याल से शामिल हो चुकी है। सिद्धार्थ गुंडाने जी का मेल हमें प्राप्त हो गया है। राहुल नगर अमरावती से, अर्चना ताई, हीरामणि, प्रणय, प्रतिभा, इन सब का नाम लेने की रिक्वेस्ट की है। अच्छा, अब वक्त हो गया है कि हम एक बेहतरीन सा ट्रैक प्ले कर दें। इस ट्रैक को एंजॉय करिए। रे कनेक्टेड हमारे साथ 100.7 FM रेनबो पर। स्टे ट्यून्ड।

राइट, 2:47 का वक्त हो गया है और हमारे पास नेक्स्ट मेल जो हम रीड आउट करने जा रहे हैं वो किसका है? अमरावती महाराष्ट्र से प्राप्त हुआ है, दिलीप रामेकर जी का। हर्षा, अक्षय, रुद्रा, रुचिका, रामेकर परिवार, इन सब का नाम लेने की रिक्वेस्ट की थी इन्होंने और एक सॉन्ग सुनने की भी रिक्वेस्ट की है। कोशिश हम पूरी करेंगे कि वो सॉन्ग प्ले हो आज प्रोग्राम में। नरेश जी का मेल हमारे पास आ गया है पानीपत से। लक्ष्य, लाडो, कोयल पापा जी, पीयूष, कोयल, सब का नाम लेने की रिक्वेस्ट की, थैंक यू मेल करने के लिए हमें। ओके, नेक्स्ट मेल हम किसका शामिल कर रहे हैं? दिलीप रामेकर जी का। सरफुद्दीन अंसारी जी, आप को भी आदा, बिहार से आप हमारे रेगुलर लिसनर हैं। फातिमा खातून अंसारी, सुरीत रमेश, डॉक्टर डब्लू, डॉक्टर सोनम, दानिश और अभयनंद परमानंद, सबका नाम लेने की रिक्वेस्ट की, थैंक यू मेल करने के लिए। हम फटाफट अब कोशिश कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा मेल शामिल कर लिए। राजू मिगलानी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हांसी से मेल प्राप्त हो गए। बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू डब्बू, ओके, हरजिंदर इनका पढ़ चुके। मूसा शेख जी, आपका भी मेल हमें प्राप्त हो गया है, आपने हमें सनावत से मेल किया है, थैंक यू मेल करने के लिए। और स्वर्ण सिंह जी, आपका मेल हमें ठाकुरावाला से प्राप्त हो गया। दलजीत, राजदीप, गुरनूर, गुरलाल, अविराज, मोहम्मद आमिर, आपका भी

मेल हमें प्राप्त हो गया बरेली से, शमीम वाहे नूर नसरीन समान सारी। आप हमें किसी भी गीत में बस शामिल कर लीजिए, हमने शामिल कर लिया आपको। हमारा नहीं मिला क्या दीदी? मिल तो गया, आपका तो सबसे पहले पढ़ा है इस बार, है ना। रविंद्र मोहनदास जी आपका भी शुक्रिया, किशनगंज बिहार से आपने मेल किया है, आशा देवी का नाम लेने की रिक्वेस्ट की, थैंक यू। नरेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपका मेल में शामिल कर चुकी हूँ ऑलरेडी। जय राम सिंघन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें यवतमाल से मेल किया है, दिशांत और अर्पिता इनका नाम लेने की रिक्वेस्ट की, थैंक यू। शैलेश कुमार जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें मेल किया इसके लिए।

शुक्रिया, आपका मेल में शामिल कर चुकी हूँ ऑलरेडी। जय राम सिंघन जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें यवतमाल से मेल किया है, दिशांत और अर्पिता इनका नाम लेने की रिक्वेस्ट की। थैंक यू। शैलेश कुमार जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें मेल किया इसके लिए। ओके, जौहर पायकारा, आपने हमें छत्तीसगढ़ से मेल किया है, थैंक यू मेल करने के लिए। नेक्स्ट ट्रैक जितने लोगों का नाम मैं ले रही हूँ ना, इसको स्पेशली डेडिकेटेड होगा। सुधाकर जाधव जी, जाफराबाद से आपका मेल हमें प्राप्त हो गया है। प्रशांत राजे, संचित प्रथमेश, प्रणाली, सर्वत, सानवी, कल्पना, सबका नाम लेने की रिक्वेस्ट की थी, थैंक यू, शामिल हो गया है। संदीप मकर जी, आपका भी मेल हमें प्राप्त हो गया है। ज्योति मकर मक और भरत कमल, सबका नाम लेने की रिक्वेस्ट की थी। और चौक गुरैया जलंधर से मेल किया, थैंक यू। ओके, मोहम्मद फरमान, आपका भी मेल हमें मिल गया है मुरादाबाद से, बहुत शुक्रिया। ओके, नरेश जी, पानीपत से आपका मेल मैं शामिल कर चुकी हूँ। भाई, सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि बार बार मेल मत करिए प्लीज़, क्योंकि ऐसा होता है ना कि बाकी जो मेल्स होते हैं ना, फ्रेश होते हैं, वो पीछे चले जाते हैं। पिपरिया से कमलकांत जो गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेल करने के लिए हमें। ओके, संजय साहू जी, आपका भी शुक्रिया, गुड आफ्टरनून। सकारात्मक सोच से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती, और जहाँ चाह वहाँ राह, बस अपने इरादों को मजबूत बनाए रखिए। एक सॉन्ग सुनने की रिक्वेस्ट की है, पूरी कोशिश करेंगे हम ये सॉन्ग प्ले हो जाए। केशरी नंदन जी, अलीगंज सुल्तानपुर से आपने मेल किया है हमें अनुज यादव, और एक सॉन्ग सुनने की रिक्वेस्ट की, हम पूरी कोशिश करेंगे सॉन्ग प्ले हो। अच्छा, इस सॉन्ग की रिक्वेस्ट खासा आती है हमारे पास, इस प्रोग्राम में नहीं, ऐसे भी आती रहती है। और मैंने सुना है तकरीबन अक्सर ही ये ट्रैक एक ना एक बार तो दिन भर में प्ले हो ही जाता है। सादर करने वाली दीदी को हमारा प्यार भरा नमस्कार, आपको भी नमस्कार। किसने मेल किया है? साई गायकवाड़ जी ने मेल किया है हमें। और कहाँ से किया है मेल आपने हमें? महाराष्ट्र से, थैंक यू मेल करने के लिए हमें। सुधांशु जी, आपका मेल हमें मिल गया है, और रेगुलर लिसनर है हमारे, बख्शी का तालाब, जिला लखनऊ से मेल करते हैं हमें, थैंक यू मेल करने के लिए। और कोशिश हम पूरी करेंगे सॉन्ग प्ले हो जाए आज प्रोग्राम में। राजकमल जी, आपका भी शुक्रिया, बाराबंकी से आपने मेल किया है हमें, और लिखा है कि हमारी पसंद का हो सके तो ट्रैक प्ले कर दीजिए। बिल्कुल हो सकेगा, हम ज़रूर प्ले करेंगे आपकी पसंद का ट्रैक। कौशिक वाधवान जी, आपका भी शुक्रिया, आपने हमें राजकोट गुजरात से मेल किया, थैंक यू मेल करने के लिए हमें। अरुण, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ आपने ब्लैक बैकग्राउंड पर लिख के भेज दिया है, ओके ओके ओके। लखीमपुर उत्तर प्रदेश से आपने मेल किया है, लिखा है मैं आपका रेगुलर लिसनर हूँ, मुझे पता है आप हमारे रेगुलर लिसनर हैं। और अमन कनौजिया, सौरभ गुप्ता इनका नाम लेने की रिक्वेस्ट की है, कोशिश हम पूरी करेंगे कि आपकी पसंद का ट्रैक प्ले हो। यासीन अनजान जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, गिरिडीह झारखंड से आप हमारे रेगुलर लिसनर हैं, और मेरे ख्याल से आपका मेल मैं स्टार्टिंग में शामिल कर चुकी हूँ। यस ओके, बहुत सारे नाम हैं अभी भी बाकी रह गए हैं। ऑल राइट, जल्दी जल्दी देख लेती हूँ किसी का छूट ना जाए, बस ना, मेरी कंसर्न यही होती किसी का नाम छूटे ना। अनिल मोहन जी, इन्हीं सॉन्ग पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से आपने मेल किया। उषा टिल्लू मधु इनका नाम लेने की रिक्वेस्ट की है। सुरेश नारंग जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें, सुरेश नारंग जी ने कहाँ से मेल किया है ये तो नहीं लिखा है आपने। आशा नारंग, सोनाली नारंग इनका नाम लेने की रिक्वेस्ट की थी, थैंक यू। सीताराम कांगड़ा जी, आपका भी मेल हमें मिल गया है रोहतांग से। बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मुकेश कश्यप, मुरादाबाद से आपका मैसेज हमें मिल गया है। राजपाल, काजल मानवी, लक्ष्य मोहिनी, बलवीर इनका नाम लेने की रिक्वेस्ट की, कोई भी गीत सुनवा दीजिए। ओके बिल्कुल। सादिक जी, आपका भी मेल हमें प्राप्त हो गया है, आपको दिल से आदाब, आपको भी आदाब। और वैष्णव कॉलोनी सनावत से मेल किया। मुश्ताक मोहम्मद, शाकिर, अलकमा, अल्तमश, रमेश गोड़, इन सब का नाम लेने की रिक्वेस्ट की है। ओके, दिवेश वर्मा जी, आपका मेल हमें मिल गया है, और थैंक यू मेल करने के लिए। रविंद्र मोहनदास जी, आपका भी मेल प्राप्त हो चुका है, मैं पढ़ चुकी हूँ ऑलरेडी। ओके ओके ओके ओके, कोई छूट ना जाए। ओके, वारिस अली जी, आपका मैसेज हमें प्राप्त हो गया है, और जो सॉन्ग सुनने की आपने रिक्वेस्ट की, हम कोशिश पूरी करेंगे ये सॉन्ग प्ले हो। संजय नगर, ऐशबाग, लखनऊ से आपने मेल किया है हमें। ऑल राइट, इरफान खान जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेल किया हमें। और पंजाब

जो आपसे मिल गया है, मुस्कान बेबी आलिया, इनका नाम लेने की रिक्वेस्ट की, नाम हमने ले लिया है। मोहम्मद सादिक का मेल हम पढ़ चुके हैं। ओके ओके ओके, मनोज बंसल जी आपका भी शुक्रिया, हरियाणा से आपने मेल किया। किसी भी गीत में बस हमें शामिल कर लीजिएगा। बिल्कुल शामिल होंगे आप, अभी शामिल हो गए ना आप। वेरी सैड, ओके ये हेडर है। अजीज़ अहमद जी ने मेल किया है हमें, तिहार यूपी 34। ओके, एक खुशमय खुशहाल जीवन जीने के लिए क्या करें क्या ना करें, न जाने क्यों ऐसा लगता है कि कोई अपना नहीं है, मैं बहुत उदास सा रहता हूँ। आज मेरी भी पसंद का सॉन्ग सुनवा दीजिए। ओके, और लिखा है डेडिकेटेड टू मी। बिल्कुल हम कोशिश पूरी करेंगे कि आपकी पसंद का ट्रैक हम प्ले कर पाएँ, लेकिन बिल्कुल भी सैड होने की ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत है और उतार चढ़ाव देखिए सबकी ज़िंदगी में होते हैं, है ना। इसी उतार चढ़ाव को टैकल करते हुए जो लोग ज़िंदगी गुजारते हैं वो खुशहाल रहते भी हैं और दूसरों को भी खुशहाल रखने की पूरी कोशिश करते हैं। तो ऐसा नहीं है, ज़िंदगी इतनी बुरी नहीं है, बहुत खूबसूरत है, सबसे खूबसूरत है। हुकुम करमारकर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, मध्य प्रदेश से आपका मेल हमें प्राप्त हो गया। सुनीता, हार्दिक, प्राची, तनु करमारकर, इन सबका नाम लेने की रिक्वेस्ट की, थैंक यू मेल करने के लिए हमें। फिलहाल वक्त हो गया है कि हम इस प्रोग्राम को यहीं पर वाइंड अप करें। इस वादे के साथ एक छोटे से म्यूजिकल और न्यूज़ ब्रेक के बाद हम आपसे दोबारा रूबरू होंगे। अच्छा, अगर किसी की पसंद का ट्रैक प्ले होने रह गया तो बिल्कुल भी डोंट गेट डिसअपॉइंटेड। आप नेक्स्ट टाइम पे ज़रूर ट्राई करिएगा हॉटमेल प्रोग्राम में, कोशिश की जाएगी उस प्रोग्राम में प्ले हो। फिलहाल स्टे ट्यून एंड कीप एंजॉइंग 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

कानपुर शहर के म्यूजिकल हार्टबीट से एक बार फिर जुड़ चुके हैं आप एंड नाउ इट्स टाइम फॉर प्रोग्राम म्यूजिकर। हेलो एंड वेलकम टू म्यूजिक आर। मैं हूँ वृंदा और आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के सेलिब्रेशन को कंटिन्यू रखने और बेहद ही खास बनाने लेकर आई हूँ स्पेशल म्यूजिक आर बॉलीवुड का नेचर कनेक्शन। जी हाँ, ग्रीन का पेट ग्रीन प्लैनेट। वैसे दोस्तों, पर्यावरण बचाने की बात हो तो हमारा बॉलीवुड देखा जाए तो कहीं भी पीछे नहीं है। कहीं फिल्में एंटरटेनमेंट के साथ साथ प्रकृति से प्यार करना सिखाती हैं तो उसी जगह हमें उसकी रक्षा करना भी सिखाती हैं। और कभी कभी हमारे बॉलीवुड हीरोज ग्रीन हीरोज बनकर हमें इंस्पायर करते हैं तो कहीं मदमस्त गाने हमें सुनहरे दिनों की याद दिला जाते हैं। तो दोस्तों, आज के प्रोग्राम में होंगी ऐसी ही खूबसूरत बातें जो याद दिलाएंगी धुंधली हंसी मुलाकातें। तो चलिए शुरू करते हैं एक बढ़िया से गाने के साथ प्रोग्राम का आगाज। और आज के इस प्रोग्राम में वृंदा है आप सभी के साथ।

ये जवानी है दीवानी फिल्म के इस गाने से आपको वो बैकग्राउंड ज़रूर ध्यान आ गया होगा, वो हंसी वादियाँ और वो जो खुला आसमां था, वो पहाड़ी, सब आपके जहन में ज़रूर आए होंगे। वैसे देखा जाए दोस्तों तो बॉलीवुड की फिल्मों में प्रकृति सिर्फ बैकग्राउंड नहीं रही बल्कि कहानी का अहम हिस्सा भी बनी। पहाड़, नदियों और जंगलों को देखो तो उनके प्रति एक अलग ही क्रेज़ बढ़ जाता है, है ना। लेकिन कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिन्होंने सीधे हमें नेचर के लिए संरक्षित करने की बात तो नहीं कही है और कुछ ने बहुत सीधे तौर तरीके से कही है। तो ऐसी ही फिल्मों के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं, जिसमें से एक फिल्म ऐसी है जिसका नाम है कड़वी हवा। जी हाँ, 2017 में ये फिल्म आई थी। की ये फिल्म कड़वी हवा आई थिंक बॉलीवुड की सबसे इम्पॉर्टेंट नेचर बेस्ड फिल्मों में से एक है और इस पर क्लाइमेट चेंज और सूखे की जो समस्या है ना, उससे कैसे लोग रूबरू होते हैं उसके बारे में दिखाया गया है। बदलते मौसम से प्रभावित होते किसानों की ज़िंदगी की कहानी बयां करती है ये फिल्म। और आज जब मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है तो ये फिल्म हमें ये याद दिलाती है कि पर्यावरण की रक्षा करना हम सब का दायित्व है और हम सब के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है ना।

खुशबू जंगल से प्यार की कहानी जो अगली फिल्म है वो बयां करती है, पर उससे पहले मैं देख पा रही हूँ कि हमारे फेसबुक हैंडल पर लगातार हमारे लिसनर्स अपने कमेंट्स भेज रहे हैं, और ये कमेंट हमें भेजा है, ये हैं जाकिर मंसूरी, ये लिखकर भेज रहे हैं, नमस्कार आदाब, आजकल हमारे आसपास का पर्यावरण बहुत दूषित होता जा रहा है जिसका मुख्य कारण तेज़ी से पेड़ों का कम होना, साथ ही जो हम पॉलिथीन का इस्तेमाल करते हैं ना वो बहुत खतरनाक है। हम सभी को चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, उनकी देखभाल करें और कम से कम पॉलिथीन का इस्तेमाल करें। मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मुंगीसापुर से ये इन्होंने हमें ये कमेंट भेजा है, और साथ ही कुछ और नाम शामिल करने को कहा है। जी हाँ बिल्कुल, हम वो नाम भी शामिल कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में, और ये हैं मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, शबिस्ता मोहम्मद, नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी। अगला कमेंट हम तक पहुंचा है, ये है अशोक दाले, और साथ ही इनके परिवारजन भी हैं, सविता दाले, ऋषिकेश, जीविका, सानिका, और ये पुनवाले पुणे से हैं, साथ ही अजय सोनवाने, कृष्णा, अविका और विशाखा। अभिजीत, साथ ही सरिता, प्रणीता, सिद्धांत और अर्जुन ने भी हम तक कमेंट अपना पहुंचाया है। तो दोस्तों आप भी हमसे जुड़ सकते हैं हमारे प्रोग्राम में, हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है aarkansomedia@gmail.com। और अभी फ़िलहाल उस मूवी की बात कर लेते हैं जिसकी हम अपने म्यूज़िकल प्रोग्राम में बात करने जा रहे थे। नेचर से रिलेटेड ये मूवी है, जी हाँ, मिट्टी की खुशबू जंगल से प्यार की कहानी कही थी 2021 की फिल्म शेरनी ने। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक फॉरेस्ट ऑफिसर की नहीं थी, इंसान और वन्य जीवों के बीच बढ़ते संघर्ष को दिखाती है। अच्छा देखा जाए तो एक परिपक्व पेड़ यानी एक अच्छा खासा पेड़ जो होता है ना, वो एक साल में इतनी ऑक्सीजन देता है कि दो लोगों के काम आ सके। जंगल सिर्फ जानवरों का घर नहीं, पृथ्वी की सबसे खास ऑर्गन में से एक है। सोचिए अगर जंगल कम होंगे तो जीवन कितना कठिन हो जाएगा। म्यूजिकल प्रोग्राम आप एंजॉय कर रहे हैं ओनली ऑन 102.2 FM रेनबो कानपुर।

दोस्तों वैसे आपको भी क्या करना है, हम बता दें कि अगर आप अपने ईमेल्स हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारी ईमेल आईडी है aarkansomedia@gmail.com। और बता दें आपको, हमारे म्यूजिकल प्रोग्राम में लगातार आपके कमेंट्स हम तक पहुंच रहे हैं और ये कमेंट हमें किया है रामचंद्र मखीजा ने, ये लिखकर भेज रहे हैं छत्तीसगढ़ से और साथ ही कुछ और नाम शामिल करने की इन्होंने गुजारिश की है। और ये हैं सविता मखीजा, बेबी स्वाति, काफिर भाई और साथ ही समस्त परिवार। पुंजा जी, धर्मेंद्र छिप्पा, खिल्लू परवेज और कमल जी, इन्होंने भी कमेंट हम तक पहुंचाया है हमारे फेसबुक हैंडल पर। गोविंद, राजपाल राज और साथ ही साथ सत्येंद्र चौरसिया ने भी कमेंट किया है फेसबुक पर। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे म्यूजिकल प्रोग्राम में, आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और आज हम ऐसी मूवीज़ की बात कर रहे हैं जो डायरेक्ट

और इनडायरेक्ट वे में बेस्ड हैं नेचर पर। जी हाँ, कुछ ऐसी अनसुनी मूवीज़ की हम बात कर रहे हैं, तो अगली फिल्म है डायरेक्ट नेचर पर बेस्ड तो नहीं है, लेकिन हाँ नेचर के साथ साथ हमारे रिश्तों को नेचुरली खूबसूरती से दिखाती है, और एक ऐसी ही फिल्म थी रोड मूवी। जी हाँ, ये रोड मूवी जो है ये रेगिस्तान, खुला आसमान और प्रकृति के बीच इंसान की यात्रा की का एहसास कराती है, और ये दिखाती है कि आज के मॉडर्न लाइफ की भाग दौड़ भरी दुनिया में प्रकृति से हम कितना दूर होते चले जा रहे हैं। अच्छा दोस्तों, वैसे अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि आखिरी बार आपने सूरज उगते हुए यानी कि सूर्योदय होते हुए कब देखा था, तो शायद बताना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, बट अगर आपको याद है या आपकी कोई ऐसी ही याद जुड़ी हुई है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है airkansomedia@gmail.com।

0: ae@gmail.com। और ब्रेक में जाने से पहले कुछ और नाम हम लेना चाहेंगे जिनका कमेंट हमें अपने FP हैंडल पर मिला है, और ये नाम है अनिल वर्मा और साथ ही साथ मुगलपुरा बागपत से हैं अब्दुल सत्तार अब्बासी। सुधीर नूतन, इशप्रीत शर्मा, मीनाक्षी तिवारी, प्रतिभा शर्मा, जगमोहन प्रजापति, संदीप गुगलानी, करनाल से हैं सुधीर नूतन, और ये समस्त परिवार के अलावा हमें ये अगला जो फेसबुक हैंडल पर कमेंट मिला है ये है सुरेश राठौर का, और ये लिखकर भेज रहे हैं आज विश्व पर्यावरण दिवस है और सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। गुजरात से ये थे, साथ ही साथ इनके साथ हैं सुरेश, मंजुला, विशाल और निशा। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए FM रेनबो कानपुर।
1: The Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for 10+2 BTech Cadet Entry Scheme Permanent Commission. Last date for submission is 18 June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy, combat ready, cohesive, Atmanirbhar, safeguarding seas for a Viksit Samriddh Bharat. Join Indian Navy.

वैसे दोस्तों, आपकी अखियों में हंझू यानी कि आंसू नहीं आने चाहिए बिल्कुल भी, तो बिल्कुल भी घबराइए नहीं। आपके नाम हम शामिल कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में, तो आप भी चाहें तो हमसे जुड़ सकते हैं आज के प्रोग्राम में। हमारी ईमेल आईडी है AIRKANSOMET।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
4: FM रेनबो कानपुर से इस टाइम आप एंजॉय कर रहे हैं प्रोग्राम म्यूजिक आर।

अच्छा दोस्तों, ज़रूरी नहीं होता कि हर फिल्म प्रकृति की कहानी कहे, पर कुछ फिल्में इनडायरेक्ट वे में हमें प्रकृति से खिलवाड़ न करने की सीख देती हैं। जैसे बत्ती गुल मीटर चालू फिल्म का भी ये जो आपने गाना सुना, ये हमें ये सिखाता है कि गंगा नदी की पवित्रता को बरकरार रखना कितना ज़रूरी है। गांव, पानी और टिकाऊ विकास की बात कह गई स्वदेश फिल्म की कहानी पीपली लाइव मूवी, जिसमें किसानों की समस्याओं और प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भरता को बड़े ही सहज ढंग से दिखाया गया। वहीं स्वच्छता का संदेश देती टॉयलेट एक प्रेम कथा और इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन और उसके खतरों की याद दिलाती भोपाल एक्सप्रेस। ऐसी न जाने कितनी फिल्में हैं जिनका जिक्र करें तो महीनों बीत जाएं, पर सभी का संदेश एक ही है, प्रकृति को बचाना है और एक जागरूक नागरिक बनना है। देश में

वैसे दोस्तों सही में हमारा देश जो है ना वो रंगरेज है और यहाँ के लोग भी उसी तरह से रंग बिरंगे हैं और हमारा बॉलीवुड भी कहीं इससे अछूता नहीं है। जी हाँ, हमारे बॉलीवुड कलाकार ग्रीन हीरोज बनकर प्रकृति की रक्षा भी कर रहे हैं। कई बॉलीवुड कलाकार वृक्षारोपण अभियानों से जुड़े रहते हैं। हमारे सदी के महानायक को ही ले लीजिए, अमिताभ बच्चन जी। जी हाँ, वो कितना कुछ करते हैं प्रकृति के लिए। जल संरक्षण, प्लास्टिक प्रदूषण, जैव विविधता जैसे मुद्दों पर लगातार काम करने वाली पर्यावरण की सशक्त आवाज़ दिया मिर्ज़ा, और साथ ही साथ पानी बचाने की मुहिम को आगे बढ़ाया आमिर खान ने, तो वहीं नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा दिया जग्गू दादा। जी हाँ, हमारे जग्गू दादा यानी कि जैकी श्रॉफ ने। एनिमल लवर है हमारे जॉन इब्राहिम और आलिया भट्ट, और क्लाइमेट वॉरियर हमारी भूमि पेडनेकर। ऐसे न जाने कितने बॉलीवुड कलाकार हैं जो ग्रीन हीरोज बनकर प्रकृति की रक्षा कर रहे हैं। और साथ ही हमारे लिसनर्स भी लगातार हमें कमेंट भेज रहे हैं। जी हाँ, ये अगला कमेंट आया है मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा से। ये हैं लामसे मीना, तेजस जय और हर्षिता। साथ ही साथ अगला ये हमें कमेंट भेजा है भेरूलाल धाकड़, भोला, प्रवीण, रियांश और प्रतीक। साथ ही नेक्स्ट ये जो अगला है ये है अशोक बब्बर, और अगला भरत चंदेल ने हमें कमेंट भेजा है। फाजिल्का पंजाब से हैं खेड़ा परिवार, भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल खेड़ा, लाडी खेड़ा, शालिनी और समस्त परिवार। और साथ ही सोहन जोशी हमसे जुड़े हुए हैं फेसबुक पर, और उमेश कुमार गौर हैं। साथ ही साथ नाना लाम से मध्य प्रदेश से हैं, और ये हमें भेजा है राशिद हुसैन अंसारी ने। तो इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और अभी फिलहाल एंजॉय कीजिए ये सॉन्ग।

आप भी हमसे सुनते चलिए ये जाते जाते एक फसाना है जी हाँ, एक जाते जाते सॉन्ग आपको जरूर सुनवाएंगे। बट आज विश्व पर्यावरण दिवस पर हम भी आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि क्यों ना हम भी ग्रीन हीरो बनकर लोगों को प्रेरित करें। चलिए एक ग्रीन चैलेंज लेते हैं, एक पौधा लगाएंगे, पानी बचाएंगे, कपड़े का बैग यूज़ करेंगे, क्योंकि पर्यावरण बचाना एक दिन का काम नहीं, हर दिन की आदत होनी चाहिए। धरती हमारी जिम्मेदारी है और उसका सम्मान करना, उसे स्वच्छ रखना हमारा कर्तव्य। वृंदा लेती है इजाजत म्यूजिक का प्रोग्राम से, जाते जाते एंजॉय दिस ट्रैक और गाने के उस पार होगी स्वास्थ्य की बात। टिल देन खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और प्रकृति से प्रेम करते रहिए।

0: वो भी ऐप से। वाह,
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: नमस्कार, मैं हूं सिंगर अभय जोधपुरकर एंड यू आर लिसनिंग टू 102.2 FM रेनबो कानपुर। सुनते रहिए और म्यूजिकली बने रहिए FM रेनबो कानपुर के साथ। थैंक यू।

0: कार्यक्रम का आज का अंक लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ मैं दीपशिखा गुप्ता। और आज हमने अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है शहर के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर नीरज कुमार जी को, जो कि लक्ष्मीपति सिंघानिया हृदय रोग संस्थान के डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियक सर्जरी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी हैं। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका आकाशवाणी कानपुर के हमारे स्टूडियो में।
1: जी धन्यवाद।
0: डॉक्टर साहब, आज हम बढ़ती गर्मियों का जो स्वास्थ्य पर असर होता है और कैसे इसको दूर कर सकते हैं, इस बारे में आपसे बातचीत करना चाहेंगे जिसका फायदा हमारे लिसनर्स को मिले। तो सबसे पहले हमारा आपसे सवाल है कि बढ़ती गर्मियों के चलते बहुत सारी एडवाइजरीज सरकार ने जारी कर दी है, बच्चों के स्कूल्स भी बंद हो गए हैं, ऐसे में गर्मियों के प्रकोप से खुद को बचाने के लिए हम लोगों को जनरली किन बातों का ख्याल रखना चाहिए?
1: गर्मी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, एक अलग तरह के चैलेंजेस किसी भी इंसान को फेस करने पड़ते हैं। उसमें सबसे बड़ा चैलेंज होता है डिहाइड्रेशन और शरीर के जो बाहरी हिस्सा है उसका बढ़ता हुआ तापमान, जिससे कि क्या होता है कि हमारे शरीर में पानी की मात्रा बहुत तेज़ी के साथ कम होती है और जो टेम्परेचर शरीर का बढ़ता है उससे जो हमारे अंग हैं वो डिहाइड्रेट होकर बुरी तरह से प्रभावित हो जाते हैं। और बहुत ज़्यादा जो गर्मी पड़ती है या जो लोग लू को बर्दाश्त करते हैं, जैसे जो खुले में काम करने वाले लोग हैं, उसमें काफ़ी खतरा हो जाता है कि उनके जो अंग जो कि बहुत ही सेंसिटिव हैं, जैसे कि किडनी, ब्रेन, हार्ट, वो काफ़ी हद तक प्रभावित हो जाते हैं। तो इसका जो मेन जो कल्प्रिट होता है वो होता है डिहाइड्रेशन, शरीर में पानी की मात्रा कम होना। तो इसके लिए बचाव के लिए एक तो हमको बार बार पानी पीते रहना पड़ेगा। आप अपने आप को प्रॉपर मात्रा में हाइड्रेट रखिए। आप दिन में 3-5 लीटर जैसा भी आपका वर्क है आप पानी जरूर पीजिए। इससे आपके कम से कम जो अंदर के अंग है, शरीर के अंदर के अंग है, वो इतना ज्यादा प्रभावित नहीं होंगे। स्किन तक आपका हीट जो है वो रहेगा। दूसरा होता है कि आप एक्सपोजर को रोकिए, यानी कि आपको धूप में निकलना ही नहीं है या उन जगहों पर नहीं जाना है जहाँ पे गर्मी का प्रभाव बहुत ज्यादा है, जैसे ह्यूमिड एरियाज हैं, और डायरेक्ट सनलाइट से बचना है। आप अगर बाहर जाते हैं तो आप कोशिश करें कि पीक आवर्स में ना निकले, जैसे भरी दोपहरी में आप ना जाएं, आप सुबह शाम काम करें। अगर आपको जाना पड़ रहा है आप छाते का या किसी चीज से आप सर ढक कर निकलें, लाइट कलर के कपड़े पहने, ऐसा खाना ना खाएं जो कि इसको पचाने के लिए शरीर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जैसे कि बहुत ऑयली फूड मत खाइए, स्पाइसी फूड मत खाइए, क्योंकि उसके लिए आपके शरीर को पानी ज्यादा चाहिए होगा। एक गलत धारणा लोगों में है कि बहुत ज्यादा ये आपके जो पेय पदार्थ आते हैं, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक हुआ या अलग अलग तरह के जूस होते हैं, आप कोशिश करिए उनको अवॉइड करिए, क्योंकि ये सब आपके शरीर में और पानी के डिमांड को बढ़ाएंगे। उसके अंदर जो शुगर होती है, और शुगर आपको एक तो यूरिन करा देगी, बार बार आपको पेशाब करना पड़ेगा, दूसरा शुगर पानी खींचती है, तो आपको और पानी की जरूरत पड़ सकती है, आप और डिहाइड्रेट हो सकते हैं। तो कोशिश कीजिए आप सिंपल प्लेन वाटर आप पीजिए, बहुत ठंडा पानी नहीं पीना है। इसके बाद जो आपके लिए जो मेन चीज होती है, आप अपने डाइट में उन सब चीजों को इन्वॉल्व करिए जिसमें कि पानी जाता है, जैसे कि पानी वाले जो सैलेड्स होते हैं, खीरा हुआ, ककड़ी, तरबूज, खरबूजे, ये सब आपको फ्रूट्स लेने हैं। आप खान पीन का ध्यान रखेंगे और अगर आप एक्सपोजर को अपने कम कर लेते हैं तो काफी हद तक आपका जो गर्मी का प्रभाव है आपके शरीर पर नहीं पड़ेगा।
0: आपने अभी बताया की

0: पानी का टेम्परेचर भी ऑप्टिमम होना चाहिए, यानी कि बहुत ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। लेकिन हमने देखा है कि गर्मियों में अक्सर लोग घरों में आते हैं बाहर से, तब बहुत ठंडा पानी लेकर पीते हैं, तो इसका क्या नुकसान हो सकता है, ये चाहेंगे आप हमारे लिसनर्स को बताएं ताकि वो इसे अवॉइड करें।
1: देखिए ये हाँ बहुत ज़रूरी होता है, हमारी बॉडी जो है वो बॉडी के टेम्परेचर को अपने आप मैनेज करती है
0: जी।
1: हमारा शरीर के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है, एक वहाँ पर सेंटर होता है जो कि शरीर के तापमान को सर्दियों में गर्म रखता है और गर्मी में अंदर ठंडा रखता है। अगर आप टेम्परेचर के साथ बहुत वेरिएशन, जैसे कुछ लोग होते हैं कि बाहर अचानक से बाहर थे फिर एकदम बहुत ठंडे एसी के अंदर आकर बैठ गए, या धूप में खड़े थे और उन्होंने बहुत ही ठंडा पानी पी लिया, तो ये इससे आपको टेम्परेचर शॉक हो सकता है। टेम्परेचर शॉक क्या होता है कि आपके वो एरिया जो कि एक्सपोज होंगे, गर्मी में हमारा शरीर गर्म हो जाता है, जो शरीर की नसें हैं वो फैल जाती हैं, और सर्दी में वही नसें शरीर की सुकड़ जाती हैं। तो अगर आपने अचानक से आप बहुत ठंडे, चाहे वो पानी पी लीजिए या बहुत

0: और उन्होंने बहुत ही ठंडा पानी पी लिया, तो ये इससे आपको टेम्परेचर शॉक शॉक हो सकता है। टेम्परेचर शॉक क्या होता है कि आपके वो एरिया जो कि एक्सपोज होंगे, गर्मी में हमारा शरीर गर्म हो जाता है, जो शरीर की नसें हैं वो फैल जाती हैं, और सर्दी में वही नसें शरीर की सुकड़ जाती हैं। तो अगर आपने अचानक से आप बहुत ठंडे, चाहे वो पानी पी लीजिए या बहुत ठंडा आपने कोल्ड ड्रिंक पी लिया है, या आप अचानक से बहुत ठंडे रूम में चले गए हैं, तो जो अचानक से ही आपके शरीर का जो अंदर का टेम्परेचर है वो ज्यादा है और स्किन के जो नसें होंगी वो सुकड़ जाएंगी, तो बॉडी के अंदर दो हिस्से बन जाएंगे, एक जो कि गर्म है, एक जो कि ठंडा है। इससे आपके शरीर पर बहुत प्रभाव पड़ता है और आपके हार्ट पर अचानक से बहुत तेज प्रभाव पड़ेगा, जिसमें आपको सीने में दर्द, बीपी का कम होना, इवन धड़कन का बढ़ना, और यहाँ तक कि हार्ट अटैक भी हो सकता है। तो इस चीज से हमको बचना है। और टेम्परेचर का वेरिएशन ऐसा रखिए कि 4-5 डिग्री का वेरिएशन ही रहे। जैसे कि अगर आप किसी 32-35 डिग्री वाले एरिया में काम कर रहे हैं, तो एसी का टेम्परेचर 26-27 से ज्यादा मत रखिए। अपने कमरे को एकदम चिल्ड 16 या 18 डिग्री वाला मत रखिए।
1: डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक कहा आपने कि इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर अपने स्वास्थ्य का हम ख्याल रख सकते हैं। बातें अभी कार्यक्रम में और भी होंगी, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम चाहेंगे कि अपनी पसंद का कोई एक गीत आज आप हमारे लिसनर्स को सुनवा दें।
0: एक गाना है किशोर जी ने गाया है, ये जीवन है इस जीवन का।

0: खूबसूरत सा गीत सुनने के बाद एक बार फिर से लौट चुके हैं आकाशवाणी कानपुर के अपने स्टूडियो में, जहां आज बात कर रहे हैं शहर के जाने माने कार्डियक सर्जन डॉक्टर नीरज कुमार जी से। डॉक्टर साहब, आगे बढ़ते हुए हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो लोग मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं सुबह सवेरे और एक्सरसाइज भी करते हैं, उनके लिए आपके पास क्या इंस्ट्रक्शन है कि किस समय जाना चाहिए मॉर्निंग वॉक के लिए और किस मात्रा में एक्सरसाइज करनी चाहिए, कितना लिमिट करना चाहिए उसे इन बढ़ती गर्मियों के मौसम में?
1: देखिए, जब भी कोई व्यक्ति एक्सरसाइज करता है, इवन वो वॉक करता है, तो बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन होता है, क्योंकि आप स्वेट करते हैं, आपका पसीना बाहर निकलता है, और गर्मियों में ये समस्या थोड़ी ज़्यादा होती है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप कोशिश करिए कि जितना अर्ली मॉर्निंग है आप एक्सरसाइज करिए, जब तक धूप जो है वो बहुत ज़्यादा ना बढ़े और बहुत ज़्यादा हीट आपका टेम्परेचर वेरिएशन ना होए। आप अपने साथ एम्पल अमाउंट में पानी रखिए, आप जितना पानी पियेंगे आपकी बॉडी डिहाइड्रेट नहीं करेगी, क्योंकि गर्मियों में पसीना ज़्यादा आता है, जिसकी वजह से शरीर के अंदर नमक यानी कि सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम का भी मात्रा कम हो जाती है, तो आपका शरीर में ऐंठन हो सकती है, आपका शरीर सुस्त हो सकता है, आपका जो ब्रेन है, अगर सोडियम की मात्रा बहुत ज़्यादा कम हो गई तो आपका दिमाग भी सुस्त हो सकता है। और जो पेशेंट जो भी किसी वजह से दवाई ले रहे हैं हार्ट की या बीपी के पेशेंट हैं, वो रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं मॉर्निंग में, तो उनके अंदर बीपी कम होने की समस्या भी हो सकती है। तो आप एक्सरसाइज करिए, जरूर करिए, लेकिन ध्यान रखिए कि एक जब टेम्परेचर आपका बाहर का टेम्परेचर ठीक है आप तभी करें, और अपने साथ भारी मात्रा में पानी लें और पानी का सेवन लगातार करते रहें।
0: जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आगे बढ़ते हुए आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल और पूछना चाहेंगे कि गर्मियों के मौसम में अक्सर देखा है कि बहुत ज्यादा गर्मी बाहर होने पर लोग चक्कर खा के बेहोशी आ जाती है, उनको गिर पड़ते हैं, तो ऐसे में क्या करना चाहिए, आसपास के लोगों को कैसे उनका ध्यान रखना चाहिए?
1: ये आपने एक बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट सवाल किया है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि लोग होते हैं आसपास, और जब इस तरह की कोई घटना होती है, कोई डायरेक्ट किसी के पास विजन नहीं होता है कि हमको क्या करना है
0: जी।
1: उसके चलते बहुत लोग अपना लाइफ भी खो देते हैं और इवन बीमारी सीरियस तो हो ही जाएगी। तो अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी कंडीशन में, अगर आप कहीं भी हैं, आपको कोई गश खा के गिरा है, तो सबसे पहला काम होता है कि उसको एकदम फ्लैट एरिया पे लिटा दिया जाए। आप ये मत सोचिए कि इनको बेड तक लेके जाना है या ऐसा नहीं, आप सुरक्षित एरिया होना चाहिए
0: जी।
1: आप उनको एक फ्लैट लेटा दीजिए और उनके जो पैरों का हिस्सा है वो ऊपर कर दीजिए, आप अपने हाथों से टांग पकड़ के आप ऊपर उठा देंगे। इससे क्या होगा कि जो बीपी कम हुआ था जिसकी वजह से उनको चक्कर आया है, तो पैरों का सारा खून बहुत तेजी से हार्ट की तरफ जाता है और हार्ट उसको पुश कर देता है ब्रेन की तरफ, तो ब्रेन के अंदर जो है वो जैसे ज्यादा खून पहुंचेगा वो व्यक्ति तुरंत ही उसमें चेतना आ जाती है और उसके जो बीपी कम होने वाले लक्षण है वो खत्म हो जाते हैं। अगर आप ऐसा कर देंगे तो वो निश्चित रूप से उसको विद इन सेकेंड्स ही आराम मिल जाता है। तो सबसे जरूरी यह है कि पहले उस व्यक्ति को एकदम फ्लैट हम लेटा दें किसी सुरक्षित जगह पे, उसके पैर ऊपर करें, और वो जब होश में आ जाता है तो उसको कहें कि आप तुरंत उठ के ना बैठें, आप थोड़ी देर तक ऐसे ही आधे घंटे तक लेटे रहिए और फिर धीरे धीरे उठेगा, तब तक वो इस बीच में पानी का सेवन कर लेंगे या कुछ पीने का मिल जाएगा तो उसको आराम मिल जाएगा। और इतना करने के बाद जब वो अपने घर जाएं तो उनको एडवाइस कीजिए कि आप किसी डॉक्टर को जरूर दिखा लें।
0: डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बातें आज आपने हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से लिसनर्स तक पहुंचाई, और चलते चलते हम चाहेंगे कि गर्मियों में अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने के लिए कुछ मैसेज आप हमारे सभी लिसनर्स को देते चलें।
1: गर्मी से बचने का बस एक ही तरीका है कि आप पानी और पानी और केवल पानी आप पीते रहिए, और पानी पीते रहिए, इसके साथ साथ आप, चूंकि जैसे मैंने अभी बताया था कि नमक और पोटेशियम कैल्शियम का भी शरीर में कमी हो जाती है, तो अगर आपको लग रहा है कि आपको पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है तो उसके लिए आप इलेक्ट्रोल पाउडर या इस तरह जैसे घर में आप नींबू शिकंजी बना सकते हैं, इस तरह की चीज़ों का ज़्यादा सेवन करिए। खाने में सिंपल फूड लीजिए जिसमें कि पानी की मात्रा ज़्यादा है, और ऑयली और बहुत स्पाइसी, और खासकर जो लोग शराब या बियर का सेवन करते हैं, मैंने कई बार सुना है कि गर्मी में लोग बियर ज़्यादा पीने लगते हैं, तो वो बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि उससे आपका इतना ज़्यादा यूरिन आएगा और आप क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं अल्कोहलिक ड्रिंक के बाद, तो आपको पता ही चलेगा आपकी बॉडी कितनी डिहाइड्रेट कर गई है। उन सब चीज़ों से बचना है और अपना खान पान का विशेष ध्यान रखें, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि अगर आप गर्मी को एक्सपोज ही नहीं होंगे तो बहुत अच्छा रहेगा।
0: डॉक्टर साहब, इतनी सारी ज्ञानवर्धक बातें आज हमारे श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि अगले अंक में भी आप कुछ अच्छी बातें हमारे श्रोताओं के साथ साझा करेंगे। फिलहाल आज यहाँ आने के लिए और हमसे इतनी सारी बातें करने के लिए आपका धन्यवाद।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: कार्यक्रम

आपकी पसंद के नगमे लेकर वृंदा हाजिर हो चुकी है ओनली ऑन 102.2 एफएम रेनबो कानपुर। आज आपकी पसंद प्रोग्राम में रहेंगे कुछ खूबसूरत नगमे और हमारे खूबसूरत नगमों के लिए जिन्होंने फरमाइश की है, जी हाँ, हमारे प्यारे प्यारे श्रोता भी आज हमसे जुड़े हुए हैं लगातार। तो हमारे लिसनर्स कौन हमसे जुड़ रहे हैं और किस गीत की है फरमाइश, तो आपको बता दें कि राजा भैया फिल्म से हम आपके लिए गीत सुनवाने जा रहे हैं। पर उससे पहले हम बता दें कि इस गीत की फरमाइश की है सनावत से हैं शेख मूसा मोहसिन। बालोद से हैं हरिशंकर डोम और अनीता डोम। जेल रोड बक्सर से हैं असलम अंसारी, शमसुल हक राज अंसारी और फातिमा राज अंसम। अगले अपने श्रोता का नाम बताने से पहले चलिए आप सभी को एंजॉय कराते हैं ये ब्यूटीफुल सा सॉन्ग, पहुंच रहा है आप सभी के रेडियो सेट तक।

राजा भैया फिल्म से अभी आपने ये खूबसूरत सा सॉन्ग सुना और इस गाने को गाया था उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति ने, नदीम श्रवण का संगीत और गीत के बोल लिखे समीर ने। ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से ये अगला ईमेल हम तक पहुंचा है। मोहम्मद सैयद अब्बासी, निखत परवीन अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और समस्त अब्बासी परिवार का। उत्तम नगर दिल्ली से हैं बोधराज खोरवाल, कमला रानी, भानु प्रकाश और गीतिका खोरवाल। मेरठ कैंट से हैं दिग्दर्शन और कविता। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय, नमन और अपार। और अगला हम नाम बताना चाहेंगे, मध्य प्रदेश खरगोन सनावत से हैं मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र, शेख मूसा और राजकुमार बड़ाना। और साथ ही साथ ये खंडवा से हमें ईमेल भेजा है लक्ष्मी, नंदनी, ऋतु, रोहित और मुकेश ने। तो चलिए अगला सॉन्ग आप सभी को सुनवाते हैं जुड़वा फिल्म से, और ये गाना गाया है कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति ने, अन्नू मलिक का संगीत है और देव कोहली ने गाने के खूबसूरत से बोल लिखे हैं। तो चलिए आप सभी को सुनवाते हैं ये खूबसूरत सा सॉन्ग।

0: एक आवश्यक सूचना सुनिए। कानपुर देहात और उन्नाव जनपद के उपभोक्ताओं की डाक विभाग की सेवाओं से संबंधित शिकायतों के निस्तारण हेतु अधीक्षक डाकघर कानपुर मुख्य प्रखंड के कार्यालय कक्ष में पता कानपुर जीपीओ भवन बड़ा चौराहा दिनांक 15 जून 2026 को समय 11 बजे डाक अदालत का आयोजन किया जा रहा है और इसमें उपभोक्ताओं की पंजीकृत वस्तुओं, धनादेशों, बीमाकृत वस्तुओं, बचत बैंक और अन्य संबंधित शिकायतों का निस्तारण किया जाएगा। अपनी समस्याओं, शिकायतों के निदान हेतु डाक अदालत में उपस्थित होने के इच्छुक उपभोक्तागण अपनी समस्याओं अथवा शिकायतों के पूर्ण विवरण सहित अधीक्षक डाकघर कानपुर मुख्य प्रखंड कानपुर के कार्यालय में दिनांक 10 जून 2026 तक अवश्य उपलब्ध करा दें। निर्धारित तिथि तक प्रतिवाद प्राप्त न होने पर प्रतिवाद अथवा समस्या पर विचार नहीं किया जाएगा। सूचना समाप्त हुई।
1: The Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for 10+2 BTech Cadet Entry Scheme Permanent Commission. Last date for submission is 18 June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy, combat ready, cohesive, Atmanirbhar, safeguarding seas for a Viksit Samriddh Bharat. Join Indian Navy.
2: आपकी गिनती देश की शान जनगणना से जन कल्याण।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
4: नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें। ले आए आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
5: पहला नशा, पहला खुमार।
6: हाय, दिस इज उदित नारायण। यू आर लिसनिंग 102.2 FM रेनबो। शहर की म्यूजिकल हार्टबीट। दिल से जुड़े रहे और सुनते रहे शहर की म्यूजिकल हार्टबीट को।
0: शहर के म्यूजिकल हार्टबीट 102.2 FM रेनबो कानपुर से कनेक्टेड हैं आप और एंजॉय कर रहे हैं प्रोग्राम आपकी पसंद।

अनिरुद्ध जी हाँ, ये है वो फिल्म जिसका गाना अभी आपने एंजॉय किया और किशोर दा की दिलकश आवाज थी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था और आनंद बख्शी ने गीत के बोल लिखे। अगला ईमेल हम तक पहुंचा है खंडवा से, हैं हमारे किसान श्रोता जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम पटेल, ज्योति पटेल, शुभम, देवी किशन, भावना, मन, मानस और कनिका। नीलू शर्मा रूपपुर चंदेला से हैं और ये साथ में लिखकर भेज रही हैं कि इश्क के बाजार में हुस्न का मेला रह गया, भीड़ बहुत है पर दिल अकेला रह गया, दिखावा करने वाले ले गए मोहब्बत लूट कर, मेरी दोस्त शिद्दत से चाहने वाले हर शख्स अकेला रह गया। वाह क्या बात है नीलू जी। और साथ में इन्होंने कुछ और नाम इसमें शामिल किए हैं, सोनी, स्नेहा, पीहू और सारा। जमशेदपुर से हैं हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया और पप्पी भाटिया। अगला ईमेल हम तक पहुंचा है, ये है गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से, आफताब अंसारी, रियाज अंसारी, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी। ये लिख रहे हैं कि वृंदा जी को प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ, प्यार भरा नमस्कार आपको भी और अपना ईमेल हम तक पहुँचाने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। गाज़ियाबाद से ये अगला ईमेल पहुंचा है, ये हमें नाम यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, मनोहर लाल गांधी जी ने हमें ये ईमेल किया है और ये लिखकर भेज रहे हैं कि सादर नमस्कार जी और कोई भी गीत सुनवा दे। चलिए ठीक है, आपको हम अगला खूबसूरत सा गाना सुनवा रहे हैं, आप भी इंजॉय कीजिए और हमारे सभी लिसनर्स भी एक सॉन्ग इंजॉय करेंगे। तो फिलहाल आप सभी के रेडियो सेट तक पहुँच रहा है ये खूबसूरत सा सॉन्ग।

0: लता मंगेशकर और किशोरदा की आवाज़ों में अभी आपने ये खूबसूरत नगमा सुना। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। और लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए एफएम रेनबो कानपुर।
1: डियर रेनबो लिसनर्स, आपका और हमारा रिश्ता है बड़ा पुराना, पर इसे और भी गहरा बनाने आ रहा है एक खास बहाना।
2: जी हाँ, एफएम रेनबो कानपुर के कार्यक्रमों पर अब आपकी राय, आपकी पसंद और आपके सुझावों का रहेगा हमें इंतजार। लेकर आ रहे हैं हम अपना फीडबैक शो मेल मिलाप।
1: हमें बताइए आपको हमारे प्रोग्राम्स कैसे लगते हैं, क्या और सुनना चाहते हैं आप। तो नोट कीजिए, हर महीने के चौथे बुधवार दोपहर 3:45 पर होगा हमारा आपका मेल मिलाप।
2: अपनी प्रतिक्रियाएं हमें लिखकर भेजें इस पते पर, कार्यक्रम मेल मिलाप, विज्ञापन प्रसारण सेवा, आकाशवाणी कानपुर, बेना झाबर रोड, कानपुर, पिन कोड है 208002।
1: हमें ईमेल करें, हमारा ईमेल एड्रेस है fmmelmilaap@gmail.com पर, यानी कि fmmelmilaap@gmail.com। भूलिएगा मत, हर महीने का चौथा बुधवार दोपहर 3:45 सिर्फ एफएम रेनबो कानपुर पर मेल मिलाप।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
4: एक आवश्यक सूचना सुनिए, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कारों के लिए नामांकन आरंभ हो चुके हैं। ये पुरस्कार वीरता, खेल, सामाजिक सेवा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, कला और संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने वाले बच्चों को दिए जाते हैं। 5 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी बच्चा जो भारतीय नागरिक है और भारत में रहता है, इन पुरस्कारों के लिए पात्र है। इस हेतु नामांकन awards.gov.in पर स्थित राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। पुरस्कारों के लिए स्व नामांकन और अनुशंसा दोनों पर विचार किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर जाएं। एक बार फिर से सुन लीजिए, awards.gov.in। सूचना समाप्त हुई।

आकाशवाणी के एफएम रेनबो कानपुर चैनल से इस टाइम आप एंजॉय कर रहे हैं प्रोग्राम आपकी पसंद। आपकी पसंद का अगला खूबसूरत नगमा आप सभी के रेडियो सेट तक पहुंच रहा है, जो कि है दुश्मन फिल्म से। और ये गाना जो है उसे गाया है कुमार सानू और लता मंगेशकर ने, उत्तम सिंह का संगीत। तो चलिए आप सभी के लिए प्ले कर रही हूँ ये सॉन्ग।

पहुंचा है दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा, कुणाल मेहरा जी का। छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद से ये हैं प्रकाश, सुषमा, प्रांजलि, सोहम, सदानंद, विराज, स्वीट अंशुमन और बेबी ओवी। खंडवा से अब्दुल गफ्फार, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक, मोहम्मद उमर, राजेंद्र और छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी और पायल जोशी। छत्तीसगढ़ से ही एक और ईमेल हम तक पहुंचा है, ये है मिश्री लाल विश्वकर्मा, मीरा देवी, विशाल, मानस और गंगा देवी विश्वकर्मा। नूर महल मेहरोस सीतामणि बिहार से ये हैं मुसरत जहां और तलहत जहानाज, फरहत जहानाज, रिफत जहां, नुसरत जहां, साजिया, नाजिया और समस्त परिवार। छत्तीसगढ़ भाटापारा से एक और ईमेल हम तक पहुंचा है, हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा का। तो चलिए एक और प्यारा सा गाना आप सभी के रेडियो सेट तक पहुंच रहा है, जुर्म फिल्म से कुमार सानू और साधना सरगम की आवाजें, राजेश रोशन का संगीत और गीत के बोल लिखे इंदीवर ने।

एक आवश्यक सूचना सुनिए। चीफ पोस्टमास्टर प्रधान डाकघर कानपुर से संबंधित उपभोक्ताओं की समस्याओं एवं शिकायतों के त्वरित निस्तारण हेतु त्रैमासिक डाक अदालत का आयोजन चीफ पोस्टमास्टर प्रधान डाकघर कानपुर की अध्यक्षता में दिनांक 12 जून 2026 दिन शुक्रवार को सुबह 11 बजे चीफ पोस्टमास्टर के कक्ष में किया जाएगा। डाक अदालत में प्रधान डाकघर कानपुर से संबंधित समस्याओं अथवा शिकायतों, विशेषतः स्पीड पोस्ट शिकायतों का निस्तारण किया जाएगा। ग्राहक अपनी समस्याओं अथवा शिकायतों के निवारण हेतु डाक अदालत में उपस्थित होने के इच्छुक उपभोक्तागण अपनी समस्याओं अथवा शिकायतों के पूर्व विवरण सहित चीफ पोस्टमास्टर प्रधान डाकघर कानपुर के कार्यालय में दिनांक 5 जून

2026 दिन शुक्रवार तक अवश्य उपलब्ध करा दें। उक्त तिथि के बाद प्राप्त शिकायतों पर डाक अदालत में विचार नहीं किया जाएगा। डाक अदालत में सुनवाई

अदालत में सुनवाई हेतु नए मामले नहीं लिए जाएंगे। केवल उन्हीं मामलों को विचार हेतु प्रस्तुत करने का अनुरोध किया जाता है जिनका निस्तारण किसी कारणवश नहीं हो पाया है अथवा कोई संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। पूर्व में प्रेषित शिकायत का विवरण भी प्रमाण स्वरूप साथ में संलग्न अवश्य कर दें। सूचना समाप्त हुई।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
4: हमारे प्यारे दोस्तों, हम लेकर आ रहे हैं आपके होंठों पर सजने वाले सॉन्ग्स को,
5: जो होंगे आपकी मेल्स पर बेस्ड मेलोडियस सॉन्ग्स।
4: तो अपने फेवरेट सॉन्ग्स को सुनने के लिए आप शाम 4 से 5 बजे हमारे साथ रहिएगा आपकी पसंद के सफर पर।
6: मैं कोई ऐसा गीत गाऊं के आरज़ू जगाऊं अगर तुम कहो।
4: Only on 102.2 FM Rainbow, the musical heartbeat. तो मेल करने के लिए हमारा मेल आईडी है airkansomedia@gmail.com। तो हमारे साथ सुनिए रेनबो कानपुर पर 4 से 5 आपकी पसंद प्रोग्राम।
7: और इस टाइम आप भी एंजॉय कर रहे हैं आपकी पसंद के नगमे, आपकी पसंद प्रोग्राम वृंदा के साथ। आप सभी से इजाजत चाहूंगी अगला गीत सुनवाने की। जी हाँ, इजाजत फिल्म से है अगला गीत, पर उससे पहले आपके कुछ नाम जो हैं, जो ईमेल हम तक पहुंचे हैं, वो मैं जरूर शामिल करूंगी। अगला ईमेल आया है, ये है अहमद भाई, दुखनी सफत आरजू, जूही इकबाल, इमरान अहमद, नई दिल्ली से आमना, आसमा, परी, राबिया, आशु और समस्त फूल वाले परिवार। वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से हैं नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश खर्चे, कार्तिक खर्चे, परी खर्चे, स्वाति, प्रयाग, देविका और समस्त परिवार। राजस्थान से हैं लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी। जिला मुरादाबाद दूलापुर उत्तर प्रदेश से हैं मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलबीर। दमदम एयरपोर्ट कलकत्ता से हैं बसंत कुमार सिन्हा, रेखा देवी, अजय कुमार गुप्ता, रिम्पी, तनुश्री गुप्ता, अभय कुमार, शिवानी, मुन्नी और जयप्रकाश। कलकत्ता से ही हैं रिया, जिया, तुलसी, आयुषी, अनिरुद्ध और अन्विका बेबी। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिप्पा, कपिल छिप्पा, ईशान और पूजा परिहार। और साथ ही साथ ये हमारे श्रोता हैं कानपुर देहात मदारीपुर से अनिल कटियार, डिम्पी कटियार।

गौरव सौरव और खुशी कटियार। तो चलिए इजाजत फिल्म से आप सभी को चलते चलते ये गाना सुनवाते हैं आशा भोसले की खूबसूरत आवाज में। आरडी बर्मन का संगीत और गुलजार साहब ने गीत के बोल लिखे हैं। आज विश्व पर्यावरण दिवस पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और चलते चलते इंजॉय दिस सॉन्ग।

आपकी पसंद प्रोग्राम से अब दीजिए इजाजत, वृंदा फिर आपसे मिलेगी, तब तक के लिए सुनते रहिए एफएम रेनबो कानपुर। अगला प्रसारण होगा हमारे लखनऊ केंद्र से, कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। सरकार ने

इस अवधि में विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से देश के सामाजिक और आर्थिक स्थिति में व्यापक बदलाव लाने का कार्य किया है। गरीब, वंचित, ग्रामीण, महिला, युवा और छोटे व्यवसायियों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू की गई योजनाओं ने आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा को मजबूत आधार प्रदान किया है और सरकार की विकास विश्वास और जनकल्याण की सोच को मजबूती से स्थापित किया है। खुद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी कहा कि इन वर्षों में सरकार ने मजबूत फैसले लिए हैं, दशकों पुरानी बेड़ियों को तोड़कर आगे बढ़ा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व पर्यावरण दिवस पर शुक्रवार को कुकरेल में पौधरोपण कर एक पेड़ मां के नाम अभियान का शुभारंभ किया। यहां पर मुख्यमंत्री ने महर्षि चरक औषधि वन की स्थापना की और कपूर का पौधा लगाया। यहां पर मुख्यमंत्री ने स्कूली बच्चों के साथ सेल्फी भी ली और मिष्ठान वितरित किया। सभी ने मुख्यमंत्री को जन्मदिन की बधाई भी दी। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि पीएम मोदी ने देशवासियों के सामने लक्ष्य रखा कि नागरिक के रूप में मां व मातृभूमि के प्रति हमारा दायित्व बनता है, इसीलिए उन्होंने एक पेड़ मां के नाम महाअभियान की थीम मां को समर्पित की। वन विभाग ने 50 करोड़ से अधिक पौधे तैयार किए हैं। आज 5 करोड़ पौधरोपण लक्ष्य के साथ यह कार्यक्रम बढ़ रहा है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने आज नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत पौधा लगाया। आकाशवाणी से बात करते हुए डॉ मुरुगन ने नागरिकों से पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेने की अपील की। उन्होंने जल संरक्षण, वृक्षारोपण और वृक्षों की रक्षा तथा संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया। विश्व पर्यावरण दिवस पर इटावा में एक पेड़ मां के नाम थीम के तहत वृहद वृक्षारोपण हुआ। नगर वन लायन सफारी रोड पर सदर विधायक सरिता भदौरिया की अध्यक्षता में कार्यक्रम हुआ। विधायक, जिलाधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ल और एसएसपी ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव ने पौधरोपण कर अभियान शुरू किया। जिले में आज 5.50 लाख पौधे लगाए जा रहे हैं। विधायक ने कहा, मोदी योगी सरकार आने के बाद पर्यावरण जैसे मुद्दों पर गंभीर काम हुआ। जिलाधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ल ने कहा, ग्रीन कवर में इटावा अग्रणी जिला है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 6 बजे प्रसारित होगा। सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: सुनो ना,
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है, हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे?
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।

जी, और 5:04 और अब वक्त हो चुका है FM टॉप 10 का। तो मैं एक काम करती हूँ, 10th नंबर से शुरू करती हूँ।

0: Vamos a tener.
1: जी, आप सोच रहे होंगे कि मैं 50 के दशक की आज बात करने वाली हूं और 50 के दशक के टॉप 10 सॉन्ग्स, बट नो, यू आर मिस्टेकन। मैंने सोचा आज एनवायरमेंट डे पर कुछ स्पेशल किया जाए। वैसे हैप्पी एनवायरमेंट डे। जी, आपको मैं बेस्ट विशेस अभी तक नहीं दे पाई और ये भी नहीं बता पाई कि मैं वनिता हूं आपके साथ। तो वेरी गुड इवनिंग। 5:08 हो चुके हैं, कुछ सेकंड्स भी हो चुके हैं, मगर इन सेकंड्स में धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ रहे हैं। टॉप 10 से शुरू किया है मैंने 10वें नंबर का वो गाना जो 50 के दशक का सुपरहिट गाना था। और आज भी जब हम सुहाने सफर की बात करें या एनवायरमेंट फ्रेंडली जो सॉन्ग्स होते हैं जिनमें कुछ अपनी प्रकृति से जुड़े कुछ गीत होते हैं जो कि अपने मन को भी झंकृत करते हैं, उनमें ये गाना मुझे 50 के दशक का सबसे टॉप गाना लगा। और मैंने क्या किया कि आज जो है मैंने टॉप 10 में हर दशक के ऐसे गाने लिए, राइट? तो 50 के दशक से शुरू किया है और अब देखिए कि 60 के दशक का कौन सा गाना। ये भी आप सुनेंगे तो बिल्कुल मानेंगे, यही मानेंगे मेरी बात कि भाई ये गाना तो हमेशा से लाजवाब रहा है। और इसको भी जब हम प्रकृति की अपनी बात करते हैं अपने हिंदी सिनेमा के गीतों में बहुत ही खूबसूरती से इस गीत में पुरोया गया है, प्रकृति को, हमारी सुंदरता को।

0: to be the ninth song of the day. नौवें पादान पर है ये 60 के दशक का गाना और इसके बाद एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक.
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है. कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था. कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है. पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना. मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा.
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in.
3: हर घर सूर्य घर.
4: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है.
5: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज. एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ.
4: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा.

माय ऑल टाइम फेवरेट सॉन्ग जो कि 70 के दशक का है। जी हाँ, और प्रेम पर्वत फिल्म का, वो एक ऐसी फिल्म जो कि बहुत हिट तो नहीं हुई मगर ये गीत इतना हिट रहा कि आज भी जब सुनते हैं तो तरोताजा हो जाते हैं हम, और आसपास की प्रकृति जो है वो झूम उठती है।

और ये हमने रखा था आठवीं पादान पर। जी हाँ, हमने सुहाना सफर जो ये शुरू किया, ये आज एनवायरमेंट डे पर स्पेशल टॉप 10 जो, उसमें सुहाना सफर ही सबसे पहला था। वो गीत जो मधुमती फिल्म का था, हमने उस बारे में आपसे थोड़ा सा जिक्र नहीं किया भाई। एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म जिसने कि कितने अवार्ड्स जीते, और सलिल चौधरी साहब का म्यूजिक था आफ्टरऑल, और मुकेश साहब की आवाज थी। इंटरेस्टिंग बात यह कि 10वें और 9वें दोनों पादानों पर मुकेश साहब की ही आवाज में गीत था, और सलिल चौधरी साहब ने फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड जीता था इस फिल्म में। और मुकेश साहब का ये जो गीत था सुहाना सफर, ये बहुत ही पसंद किया गया था। और उसके बाद जो हरी हरी वसुंधरा, इतना खूबसूरत सा गीत।

वंस अगेन जो है आपने सुना, जो मुकेश साहब की आवाज में जो नौवीं पादान पर था, और उसके बाद ये प्रेम पर्वत का, हाय लता जी की आवाज में ये जो गीत है ना, ये तो मेरी जान ही ले लेता है। मैं क्या ही बताऊं, एक्चुअली आपको अगर बताएं कि ये 70 के दशक का सिर्फ ये गीत क्यों, बहुत सारे गीत थे जो कि लिस्ट में शामिल थे और लग रहा था कि कौन सा गीत रखें, मगर भाई मैं इसमें पार्शल हो जाती हूँ और मुझे यही गीत बजाना था और आप तक पहुँचाना था। फिलहाल तो हम आ गए हैं अब कौन से दशक में, जी 50 और 60 और 70 के बाद अब हम 80 के दशक में आ गए हैं। वंस अगेन 80 के दशक में भी इतने सारे गाने जिसमें कि मुझे तो लग रहा था कि टाई हो रहा था दो गानों में, एक तो ये वाला जो था ना तेरी कसम का, ये जमी गा रही है अमित कुमार साहब की आवाज में, और उसके बाद ये वाला गीत जो कि हमने किशोरदा की आवाज में चुना। तो अब ये जो गाना है ये है सातवीं पादान पर,

जी, तो हम बात कर रहे थे उस गाने की जो कि अभी आप सुन रहे थे, ये वाला। हमने आपसे बोला था ना कि टाई हुआ था, मगर फिर मैंने इसको चुना। और वैसे ये सारे जो गाने हैं आप लोग काफ़ी देर से सुन रहे होंगे मुझे लगता है कि इस तरह के गाने, मगर आज मैं अपने आप को रोक नहीं पाई टॉप 10 में इन गानों को शामिल करने में। और पता बड़ा खासा मुश्किल रहा, मगर क्या कहते हैं ना कि यहाँ पे हम जब इस हॉट सीट पर बैठते हैं 100.7 FM AIRFM रेनबो की जी, आकाशवाणी के रेनबो की जो धड़कन है लखनऊ की, तो हमारे पास पूरा पूरा मौका होता है कि हम अपने हिसाब से आपको बताएंगे भाई हमको तो यही चाहिए। हाँ जी, तो हमने आपको कहाँ तक पहुँचाया, 50, 60, 70 और 80 के दशक तक पहुँचाया। 90 के लिए एनी गेसेस? भाई एक ऐसी फिल्म जिसने जो है तहलका मचा दिया था घर घर में, और आज भी हर शादी के माहौल में घर घर में ये गाना बजता है, चाहे वो गेम्स हो शादी में, चाहे फिर वो डांसेस हो शादी में, और फिर चाहे कुछ भी धूम धड़ाका हो बैठ कर जब होता है, तो ये गाना जो है ज़रूर, और इस गाने के साथ साथ और भी इस फिल्म के गाने जो हैं ज़रूर बजते हैं और गाए जाते हैं और डांस किया जाता है इन पर। मगर इस फिल्म में जो वो गाना है ना जो मौसम से जुड़ा हुआ है, वो अभी भी थिरका देता है मुझे, और मुझे अब भी ये बहुत पसंद है। तो ये है मौसम का जादू, और ये है 90 के दशक की इस फिल्म का जादू जिसको अब आप सुनेंगे। 9, 8, 7 ये तो ऑलरेडी काउंटडाउन कर रहे हैं। 3 वैसे आपको बता दें कि छठी पायदान पर है ये। स्टार्ट।

0: भाई लग गई यार, घुटना गया लगता है।
1: भाई अब मैच का क्या होगा?
0: अब तो डॉक्टर ही बचाए।
2: खेल के दौरान छोटी चोटें कब बड़ी हो जाती हैं पता ही नहीं लगता, पर चरक हॉस्पिटल के होते हुए टेंशन नहीं।
3: जहां जॉइंट रिप्लेसमेंट और स्पोर्ट्स इंजरी एक्सपर्ट्स आपका रखते हैं पूरा ख्याल।
2: साथ ही जॉइंट प्रिजर्वेशन और पेन रिलीफ के लिए आजमाइए GFC, PRP और स्टेम सेल थेरेपी।
3: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल करें 666-4444।
4: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
5: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
4: और लाइट बिल के
5: अब 0 रुपए कैसे दूं?
4: ओहो भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
5: पक्का।
6: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

लता जी की आवाज के बाद एक बहुत ही खूबसूरत डुएट किनका है जी, किनकी आवाज में? साधना सरगम और उदित नारायण की आवाज में, क्यों हो गया ना फिल्म का नाम था। बहुत हिट तो नहीं हुई और इसकी जोड़ी जो थी वो भी हिट नहीं हुई असल जिंदगी में। जी हाँ, विवेक ओबेरॉय और ऐश्वर्या राय की हम बात कर रहे हैं, मगर ये गाना है बहुतों के दिल में आज भी बहुत गहरी जगह बना कर रखे हुए है। आओ ना, बिल्कुल बार बार बुलाता है ये गाना, सुनो ना जी आप ही के लिए। दो हजार के दशक का ये ट्रैक आपके लिए चुना है।

तो आओ ना, कहाँ तक पहुंचे हम ना। हम 50 के दशक से शुरुआत हमने की थी टॉप 10 सॉन्ग्स की, जो आज हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे स्पेशल कर रहे हैं टॉप 10। तो 50 के दशक से फिर हम 60 के दशक में आए, फिर 70 के, फिर 80 के, फिर 90 के, और फिर 2000 के दशक में हमने आओ ना से अभी आपको सराबोर किया। बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक। देखिए, हमारे जो गाने हैं ना, वो इतने ज़्यादा जुड़े होते हैं हमारे आसपास के नेचर से, उसमें कितना खूबसूरती से पिरोया होता है। गूंजी सी हैं जैसे हवा, जैसे बजती हों शहनाइयाँ। तो मतलब हम वो जो म्यूज़िक है ना नेचर का, उसको महसूस करते हैं। क्यों हम नेचर से खिलवाड़ करते हैं ना, फिर पता नहीं। तो अगर आप उस नेचर के म्यूज़िक को महसूस करते हैं ना अपने दिल में, तो कभी भी आप कोई नुकसान अपने पर्यावरण को कभी नहीं पहुंचाएंगे। यही उद्देश्य है आज के दिन का। और इनफैक्ट 365 दिन 24/7 हमको इस पे काम करने की ज़रूरत है। एंड दैट्स द ट्रू एक्चुअली वे टू मैनेज योर हेल्थ, और उसी के साथ साथ एनवायरमेंट की हेल्थ। तो अब हम पहुंचे हैं 2000 के बाद। अब हमने क्या किया कि 2000 के बाद तो सीधे हम दो ही तीन गाने बजते, अगर हम 2000 के बाद सीधे 2010 पे आ जाते, फिर 2020 पे आ जाते और ख़त्म हो जाता, तो हमने 5-5 साल का गैप ले लिया। 2000 के बाद हम 2005 के दशक में आ गए, और तब हमने उस फिल्म को चुना जो 2006 में आई थी। 2005 से 2010 के बीच के हमने दशक को चुना दरअसल, और उस फिल्म को चुना जो 2006 में आई थी। यशराज फिल्म्स थी, जिसमें कि हमारे आमिर खान थे, और उनके साथ एक ऐसी बहुत ही खूबसूरत सी जोड़ी जो कि बहुत ज़बरदस्त लगी थी। हालांकि इसमें भी ऐश्वर्या राय को चुना गया था। एक्चुअली इसमें भी मैंने इसलिए कहा क्योंकि इसके पहले ऐश्वर्या राय का गाना था, तो ऐश्वर्या राय को ही चुना गया था लीड रोल के लिए। बट आमिर साहब की गुजारिश पर इसमें काजोल को लिया गया, और वो बहुत ही बेहतरीन उसमें लगी थी। और बाकायदा 5 साल के गैप के बाद वो पूरी तरह से धमाल मचाने आई थी अपने आमिर खान के साथ, एक लीड रोल में उनके साथ पेयर कर रही थी। और ये मूवी बहुत पसंद की गई, बहुत ही ज़्यादा, और यशराज फिल्म्स जैसी होती हैं वैसे ही थी ये फिल्म। और इसका ये गाना, आह, आज भी जब बारिश होती है तो हम अभी भी इसको बजाते हैं, और खूब बजाते हैं, और इसी प्लेटफॉर्म से बजाते हैं, और आप महसूस करते हैं उस बारिश को। तो थोड़ा महसूस हम भी कर लेते हैं, जो आज सुबह की करवट ली है ना मौसम ने, उसको इंजॉय करते हैं, उसको फील कर लेते हैं रादर, जो थोड़ा सा ठंडक आई थी। और केरला के बारिश वाले जो प्री मानसून शावर्स हैं, उनका एहसास करते हुए इस गाने को सुन लेते हैं, जो है कौन सी पादान पर, चौथी पादान पर आज।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट।

0: एक्सपर्ट इलाज, एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
1: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: स्टे ट्यून्ड टू स्टे अपडेटेड। कीप लिस्निंग टू FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

भाई इस फिल्म को देखकर तो वाकई लगता है कि जिंदगी खूब जी भर के जी लो, क्योंकि ये पता नहीं मिले ना मिले दोबारा। जी 2011 की ये फिल्म, इसका ये गाना मुझे बेहद पसंद आया। अगर हमने बात करी कि कहीं सूरज, कहीं चंदा, कहीं तारे और कहीं फूल, कहीं पौधे, कहीं आसमान, कहीं बारिश, तो उसमें हमने इसको खरा पाया।

सूरज की बाहों में अब तो ये जिंदगी, मुझे याद आ गया वो लिंक जो अभी मैंने पिछले प्रोग्राम में बोला था कि सूरज की बाहों में ये जिंदगी है। यस माय डियर, अगर आपके जीवन में सूर्य की रोशनी नहीं है तो जीवन जो है ये मिथ्या है, समझे प्रभु। यस, अभी से सोच लीजिए कि आपको करना क्या है। अगर आपको कुछ बेहतर करना है तो जीवन में अपने सूर्य की रोशनी का प्रकाश डालकर अपने जीवन को प्रकाशमान करिए। कुछ अधिक हिंदी हो गया तो भी समझ सकते हैं आप, मुझे लगता है ना। एंड यस, दीज पॉजिटिव फीलिंग्स यू मे दे मेक यू फील सो पॉजिटिव कि आपको लगता है ना कि कुछ अच्छा आप कर सकते हैं और आप बहुत कुछ बेहतर कर सकते हैं अपने जीवन में अगर आप ये छोटी छोटी छोटी छोटी बातें अगर एनवायरमेंट फ्रेंडली जो हैं उनको करें तो। तो ये कौन से पादान पर था गाना? तीसरे पादान पर था, मैं भी बजाते बजाते भूल गई। और अभी उसके बाद दूसरी पादान पर जो गाना है वो बहुत ही खूबसूरत सा गाना है जो कि मोनाली ठाकुर की आवाज़ में है। और इसको भी अब जो मैंने

अमिल की अपने टॉप 10 लिस्ट में आज एनवायरनमेंट फ्रेंडली जो सॉन्ग्स हैं अगर हम कहें तो आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर, तो मेरे ख्याल से आप भी इत्तेफाक रखेंगे इस गाने से कि बारिश जो होती है सबसे प्यारी तो वही लगती है मौसम में, है ना। और ख़ासतौर से जब इस समय जब तपती हुई धरती है, तपता हुआ हमारा तन मन है, तो ऐसे में तो बारिश की बूंद का सब इंतज़ार करते हैं कि भाई प्री मानसून शारजी आ जाएं थोड़े, तो उसी से हम थोड़ा सा बहल जाएं। वैसे तो बारिश इस बार जो है बीच बीच में आकर लुका छिपी कर रही थी हमसे, क्योंकि हमने ही बहुत खेल किया था अपने एनवायरनमेंट के साथ, तो वो टाइम बे टाइम आकर फसलों को भी नष्ट कर रही है, और फसलों को नष्ट करने के साथ साथ वो हमारे सेहत से भी खिलवाड़ कर रही थी, और अभी भी अगर हम चेते नहीं तो वो बहुत कुछ नुकसान कर देगी। वैसे मैं आपको टेंशन में बिल्कुल नहीं डाल रही हूँ और आपको दूसरी पायदान वाला गाना सुनवा रही हूँ। सब लोग सोच रहे होंगे पहली पायदान पर कौन सा गाना है, मैं भी सोच रही थी कौन सा गाना रखूँ। By God, 2026 के लिए मुझे कोई गाना ही नहीं समझ में आया। चलिए वो पहली पायदान पर जब आएगा तब आपको सुनवाऊंगी, फिलहाल तो छमा छम ये गाना, मेरे ख्याल से आप गेस कर चुके होंगे, बागी फिल्म का ये गाना जिसमें टाइगर श्रॉफ और श्रद्धा कपूर क्या जबरदस्त डांस कर रहे हैं, बहुत अच्छा।

तो उसी से हम थोड़ा सा बहल जाएं। वैसे तो बारिश इस बार जो है बीच बीच में आकर लुका छिपी कर रही थी हमसे, क्योंकि हमने ही बहुत खेल किया था अपने एनवायरनमेंट के साथ, तो वो टाइम बे टाइम आकर फसलों को भी नष्ट कर रही है, और फसलों को नष्ट करने के साथ साथ वो हमारे सेहत से भी खिलवाड़ कर रही थी, और अभी भी अगर हम चेते नहीं तो वो बहुत कुछ नुकसान कर देगी। वैसे मैं आपको टेंशन में बिल्कुल नहीं डाल रही हूँ और आपको दूसरी पायदान वाला गाना सुनवा रही हूँ। सब लोग सोच रहे होंगे पहली पायदान पे कौन सा गाना है, मैं भी सोच रही थी कौन सा गाना रखूँ। बाई गॉड 2026 के लिए मुझे कोई गाना ही नहीं समझ में आया। चलिए वो पहली पायदान पर जब आएगा तब आपको सुनवाऊंगी, फिलहाल तो छमा छम ये गाना, मेरे ख्याल से आप गेस कर चुके होंगे, बागी फिल्म का ये गाना जिसमें टाइगर श्रॉफ और श्रद्धा कपूर क्या जबरदस्त डांस कर रहे हैं। बहुत अच्छा डांस करते हैं वैसे टाइगर श्रॉफ, एंड एट द सेम टाइम मोनाली ठाकुर की आवाज इस गाने में बहुत जबरदस्त लगी। श्रद्धा कपूर ने भी खूब साथ दिया टाइगर श्रॉफ का, और इस गाने को हम हमेशा ही बजा लेते हैं, जैसे देखो ना फिर आओ ना, उसी तरह से ये छम छम छम है ना।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगू।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
1: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।

सन 2026 का ये गाना, जो कि एक्चुअली मूवी सॉन्ग नहीं एल्बम सॉन्ग है, मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने चौथी पादान से शुरू किया था कि 2005, फिर 2010, इस तरह से करते करते मैं 2015 पे आई, फिर 2025 पे भी अब आ चुकी हूँ 2025 के बाद के गाना, तो वो 2025 के बाद का तो 2026 ही हुआ ना, तो इसमें ये गाना मैंने चूज़ किया क्योंकि अभी तक में मुझे वो गाना नहीं मिला जो मैं टॉप पर लाऊं। और ये गाना थोड़ा अच्छा लगा, सॉफ्ट सा है और इसको सागर बैरागी ने गाया है और इसमें जो चेहरे दिखाए गए हैं वो थोड़े अच्छे लग रहे हैं क्योंकि वो सिद्धार्थ मल्होत्रा के हैं और तमन्ना के हैं। तो ये गाना आप सुनिए और मुझे बताइएगा कि आपको टॉप पर ये गाना पसंद आया या नहीं। हो सकता है कुछ लोग डिसअपॉइंट हुए हों, बट आई ट्राइड माई बेस्ट कि आपको बेस्ट दूं और कोशिश पूरी रही कि आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इस तरह से आपके साथ सेलिब्रेट करूं। चलिए मुझे लग रहा है गाना तो सुनवाई दें थोड़ा सा ना आपको, एक काम करते थोड़ा सा रिवाइंड कर लेते ताकि आप थोड़ा और सुन लें।

राजनाथ सिंह शुक्रवार को लखनऊ में अपर्णा यादव के आवास पर पहुंचकर उनके पति स्वर्गीय प्रतीक यादव के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपर्णा यादव को ढाढ़स बंधाया और उनकी पुत्रियों से भी बात की। इस मौके पर रक्षा मंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक, महापौर सुषमा खरकवाल, महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी, एमएलसी मुकेश शर्मा, विधायक ओपी श्रीवास्तव उपस्थित रहे। उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने आज लखनऊ में अकादमी सम्मान समारोह में वर्ष 2021 से 2024 तक के लिए चयनित कलाकारों को सम्मानित किया। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी द्वारा आयोजित समारोह में 51 विशिष्ट कलाकारों को संगीत, नृत्य, नाटक और लोक कलाओं के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए ये सम्मान प्रदान किए गए। वाराणसी में आयोजित ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दो दिवसीय बैठक का आज समापन हो गया। बैठक के दूसरे दिन ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने सांस्कृतिक सहयोग और आपसी साझेदारी को और मजबूत बनाने पर बल दिया। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस महत्वपूर्ण बैठक में ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब समेत 11 देशों ने भाग लिया। संस्कृति मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव अमिता प्रसाद सरभाई ने बताया कि आज बैठक में भारत की मूल्यवान धरोहरों को वापस लाने पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा विकास और संस्कृति के समन्वय के साथ आगे बढ़ने को लेकर भी चर्चा की गई। प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने और उत्कृष्ट शिक्षकों को सम्मानित करने के राज्य अध्यापक पुरस्कार 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रदेश के पात्र शिक्षक और शिक्षिकाएं 7 जून से 30 जून 2026 तक प्रेरणा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। राज्य अध्यापक पुरस्कार 2025 के लिए केवल नियमित रूप से कार्यरत ऐसे शिक्षक और शिक्षिकाएं पात्र होंगे जिन्होंने न्यूनतम 15 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली हो या जिनकी सेवानिवृत्ति में कम से कम 5 वर्ष का समय शेष हो। शिक्षकों का चयन शैक्षणिक उपलब्धियों, विद्यालय विकास में योगदान, छात्र नामांकन वृद्धि, नवाचार आधारित शिक्षण, डिजिटल संसाधनों का उपयोग आदि के आधार पर किया जाएगा। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित होगा। सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
2: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।

0: शिद्दत मोहब्बत और खलूस से भरपूर एक शाम है। शाम अवध इस शाम का उन्वान है।
1: शाम अवध हर शाम 6 से 7 आपके अपने आकाशवाणी FM पर, क्योंकि जहां हैं आप वहीं हैं हम। 100.7 FM।

जी वर्षा में अवध में मैं इस्तकबाल करती हूँ वनिता आपका। कैसे हैं आप? वेरी गुड इवनिंग। बहुत खूबसूरत सी शाम कर रही हूँ आपके नाम और आपसे कहूंगी कि 100.7 FM रेनबो जो आपने ट्यून किया है तो आपको बिल्कुल भी हम क्या कहें, हाँ बिल्कुल आपको हम परेशान नहीं करने वाले, अच्छे अच्छे गाने सुनाने वाले हैं और कुछ अच्छी बातें भी करने वाले हैं। भाई अच्छी बातें तो आज वैसे भी दिन ही इतना अच्छा है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और कितने सारे पौधे पूरे प्रदेश में, पता है 5 करोड़ पौधे आज प्रदेश में लगे भाई इस खास दिन पर। और इसी के साथ साथ दमदार अंदाज में थोड़े देर से ही, 3 दिन देर से ही मगर केरला में पहुंच गया मानसून। तो अब हम इंतजार कर रहे हैं इस बात का कि और क्या क्या खबर है हम आपके पास, हमारे पास। हाँ हाँ आप भी बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं हमें, एंड एट द सेम टाइम हम तो बताने के लिए यहाँ बहुत कुछ बैठे ही हुए हैं। तो सुनते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ और धड़कन लखनऊ की जो है उसके साथ ताल से ताल मिलाते चलिए।

इस गाने को सुनते ही मुझे कोई और गाना याद आ गया जिसको कि मैंने क्यू कर लिया ऑलरेडी, और मुझे इस गाने में ऑब्वियसली बहुत सारे लोग थिरक रहे होंगे और आपको लग रहा होगा कि भाई ये तो इस दौर का, इस दशक का सबसे सुपरहिट गानों में से एक गाना है, डांस फ्लोर पर

रखने के लिए। बट मुझे इसके बाद इसको सुनते ही जो गाना याद हमेशा बार बार आता है और अभी फिर याद आया, जिसको मैंने क्यों कर रखा है, अनडाउटेडली आप जब कंपैरिजन करेंगे तो आप इसको पहले नंबर पर ही रखेंगे। फिलहाल तो हम आपको बता दें कि हमारे शहर में कहाँ कहाँ पर बहुत ज्यादा शोर है और कहाँ कहाँ की हवा सबसे ज्यादा नुकसानदायक है। तो अगर हम अपने शहर की बात करें, जी हाँ लखनऊ की बात कर रहे हैं शामे अवध में, तो अलीगंज की हवा जो है वो सबसे ज्यादा खतरनाक इस समय हो रही है। और उसमें हम ये बात कर सकते हैं कि जब AQI लेवल जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लेवल पर आ जाता है, तो ऐसे में वहां पर सांस लेना यूं समझ लीजिए कि आप जहर, एक बार सिर्फ एयर पोल्यूशन पर ही इतना ज्यादा फोकस कर लेते हैं, बट हम बिल्कुल गौर नहीं करते कि जो साउंड पोल्यूशन है, जो नॉइज पोल्यूशन है, वो भी कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो ऐसे में आलमबाग को सबसे ज्यादा शोर वाली जगह बताया गया है। आई एम श्योर कि वहां पर क्योंकि बसों का आवागमन है, वाहनों का बहुत ज्यादा आना जाना है और बार बार आता है जाता है, ये शोर जो है मतलब इस वजह से ज्यादा है क्योंकि आना जाना लगा है और जाम बहुत ज्यादा वहां पर लगता है। इसके अलावा वहां पर जो कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं सड़कों के, चौड़ीकरण भी हो रहा है, इससे भी जो है पॉल्यूशन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और पूरे शहर में इस वजह से काफी ज्यादा नॉइज पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन है। और किस किस एरिया में वो तो हमने आपको बता दिया सबसे ज्यादा, बट आप भी बचे नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि इतना बड़ा शहर है हमारा कि हम अलीगंज में अगर हवा सबसे ज्यादा जहरीली है तो हम यहाँ बैठे हैं हुसैनगंज में या विधानसभा मार्ग पर, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं नहीं जी, नुकसान सबको पहुंचता है, कहीं कहीं दूर तक पहुंचता है, हवा में सब कुछ तैर कर इधर से उधर जाता है। और अगर आलमबाग की बात करें तो वैसे भी वो बहुत ज्यादा दूर नहीं है यहां से भी, और कहीं से भी शोर जो है ना, मतलब वो बहुत, उसका डेसिबल अगर बहुत हाई होता है तो वो कहीं भी दूर तक जाकर नुकसान करता है। तो प्लीज अब की जब आप ट्रैफिक में फंसे हो और पीछे से पौं पौं पौं बजा रहे हो ना हॉर्न रेड लाइट पर भी, तो जरा सोचिएगा कि आपको भी वो नुकसान पहुंचा सकता है। एंड एट द सेम टाइम इट्स नॉट वेरी वेरी फ्रेंडली फॉर एनवायरमेंट। सो सेव एनवायरमेंट एंड सेव योरसेल्व्स।

अल्लाह क्या बात है, गाना एकदम सुपर डुपर हिट है ना। बताइए, मैंने गलत कहा था कि सही कहा था कि ये हमेशा उससे तो ऊपर ही रहेगा। चलिए, कंपैरिजन हम लोग करने लग जाते हैं ना, क्या है, फितरत है इंसान की। वैसे बहुत ही बेहतरीन काम मेट्रो ने किया है, हमारी लखनऊ मेट्रो ने। मेट्रो से सफ़र करने वाली महिला यात्रियों को उनके डेस्टिनेशन तक बिल्कुल सेफ साउंड पहुँचाने के लिए आज ही से महिला राइडर वाली ईवी बाइक सेवा की शुरुआत हो चुकी है भाई। और ये जो फीमेल हमारी जो हैं यात्री हैं, जो उनके केवल 15 रुपये में 5 किलोमीटर तक की दूरी तय करने का उनको सुअवसर प्राप्त हुआ है। और मेट्रो अपने 4 स्टेशनों से महिला विशेष ईवी बाइक सेवा, उसको पता है क्या उन्होंने नाम दिया है, माई दीदी। माई दीदी मतलब मेरी दीदी की शुरुआत आज से कर चुका है। और सेवा के शुभारंभ के अवसर पर ये पांच तारीख से लेके 13 जून तक ये ऑफर जो है ये सबके लिए है, उन फीमेल्स के लिए है जो यात्रा करेंगी। और उनको ये सुविधा जो है जी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराई जाएगी। और महिलाओं की सुविधा और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए यूपी मेट्रो फीडर सेवा माय दीदी ईवी बाइक सेवा शुरू कर रही है, आज से शुरू कर चुकी है। तो कितना अच्छा दिन जब पर्यावरण दिवस पर ये बहुत ही बेहतरीन सा काम कर रहे हैं हमारे मेट्रो वाले। तो और आपको बताएं कि हमारे प्रबंध निदेशक जो हैं मेट्रो के, उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय, आईटी कॉलेज, भूतनाथ और कृष्णानगर मेट्रो स्टेशन पर ये फीडर सेवा उपलब्ध है। और इन मेट्रो स्टेशंस पर माय दीदी फीडर सर्विस का स्कैनर लगाया गया है और स्कैन करके ही महिला यात्री अपनी राइड बुक कर सकती हैं। उनके पास कुछ मिनट में ही महिला राइडर वाली ईवी बाइक सेवा उपलब्ध होती है और हर मेट्रो स्टेशन पर 6 ईवी बाइक महिला राइडर के साथ उपलब्ध हैं। शुभारंभ के दिन आज यानी कि इस बेहतरीन दिन पर सेवा का उपयोग करने वाली पहली 10 महिला यात्रियों को उपहार भी दिए गए। क्या बात है, मतलब एक तो उपहार फ्री ऑफ कॉस्ट, ये जो फीडर बस सेवा मतलब फीडर सेवा जो मिली उनको बाइक राइडर्स की, फीमेल बाइक राइडर्स की, और उसके साथ साथ उपहार भी मिले, वाह वाह। तो आपको बता दें कि वैसे लखनऊ मेट्रो से इस समय हर दिन करीब 88,000 लोग सफ़र कर रहे हैं और जिनमें बड़ी संख्या में हमारी फीमेल्स भी शामिल हैं। तो दैट इज़ समथिंग वेरी कमेंडेबल फ्रॉम मेट्रो, लखनऊ मेट्रो। आप लोगों को हम थैंक यू कहेंगे, बींग अ फीमेल, तो मैं सिर झुका कर आपको धन्यवाद करूंगी, प्रणाम करूंगी कि इतना अच्छा सा आपने काम किया है। और एक बार फिर हम टेंगा दिखाएंगे, ये हमारे लिए है ये राइड अपने मेल काउंटर पार्ट्स को। और शाम्यवध में जनाब आप सुन रहे हैं मुझे यानी वनिता को, 6:26 आप हैं आज मेरे साथ यानी वनिता के साथ। कीप एंजॉइंग, कीप लिसनिंग टू 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
1: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
0: पाइन पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट न आए।
1: चरक हॉस्पिटल दुबक

धूप में गदराए गुलमोहर अमलतास, या फिर तपती जमी पर बारिश का एक कतरा। हां, मैं हूं रजनीगंधा। सतरंगी चैनल का एक ऐसा एहसास जो है हर दिल के लिए खास, सिर्फ 100.7 FM पर हर रात 10 से 12। रजनीगंधा।

हाँ भाई, थिरक रहे हैं कि नहीं आप? अरे वीकेंड एकदम लगा हुआ है बिल्कुल। किसी किसी का तो सैटरडे जो ऑफ होता है ना, मुझे लगता है क्या बढ़िया काम है यार। है, बहुत सारा काम कर लेते हो आप, मस्ती ज्यादा कर लेते हो, सो भी ज्यादा लेते हो, और ये मुफ्त में मिल जाता है आपको सैटरडे संडे के साथ फ्री, है ना? दिल मुफ्त में मिलता है कि नहीं पता नहीं, जब दिल देंगे या लेंगे तब ही पता चलेगा। आप बताइएगा अगर आपको मुफ्त में मिल रहा हो तो। वैसे मुफ्त में कुछ भी दुनिया में मुझे तो नहीं लगता कि मिलता है, और ये जो पढ़ाई है ना, इस पर तो बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है, तभी जो है ये मेहनत रंग लाती है। तो मुफ्त में कुछ नहीं मिलता बच्चा जी, बच्चा तुम्हारी ही बात कर रहे हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय ने राष्ट्र गौरव सहित अन्य विषयों की परीक्षाओं का कार्यक्रम अपनी वेबसाइट पर जारी कर दिया है। सुन रहे हो बच्चा, स्नातक दूसरे चौथे और ओल्ड स्टूडेंट्स की राष्ट्र गौरव और एनवायरमेंट स्टडीज की परीक्षा 12 जून को सुबह 8:30 से 10 बजे तक होगी। और वहीं MBA टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट दूसरे सेमेस्टर और मास्टर ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट दूसरे सेमेस्टर बैक पेपर एग्जेम्प्टेड की परीक्षा 12 से 24 जून तक संचालित की जाएगी। BBA टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी दूसरे सेमेस्टर की परीक्षाएं 13 से 24 जून तक। MA पॉलिटिकल साइंस दूसरे सेमेस्टर की परीक्षाएं 12 से 24 जून तक। MA पॉलिटिकल साइंस दूसरे सेमेस्टर की परीक्षाएं 12 से 24 जून तक आयोजित की जाएंगी। और सुनिए, लखनऊ विश्वविद्यालय ने LLB 3 और LLB इंटीग्रेटेड दूसरे सेमेस्टर का परीक्षा कार्यक्रम कल जारी कर दिया। LLB 3 वर्षीय और 5 वर्षीय दूसरे सेमेस्टर की परीक्षाएं 12 से 25 जून तक आयोजित की जाएंगी। विस्तृत समय सारिणी यानी कि आपको पूरी टाइम टेबल जो है वो लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है, वहां पर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। ये सूचना बिल्कुल पक्की है, आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि परीक्षा नियंत्रक ने हमें बताया है, मतलब हमें नहीं, हमने जहां से ये न्यूज ली है वहां पर ये लिखा था, तो हम ऑथेंटिक सोर्स से आपको बता रहे हैं। तो बच्चा पढ़ाई कर लो और उसके बाद अच्छा अच्छा रिजल्ट ले आओ, फिर ये मौसम भी अच्छा लगेगा, ये पर्यावरण भी अच्छा लगेगा और ये गीत भी अच्छा लगेगा। शामी अवध में जो अब मैं बजा रही हूं, वनिता आपके साथ हूं मैं, 6:38 मिनट हो गए, ठीक, ओके, सुनते रहिए धड़कन लखनऊ की।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: सुनो ना।
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
2: ओ 8700014। 8700014242 पर।

0: www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy. Combat ready, cohesive, Atmanirbhar. Safeguarding seas for a Viksit Samriddh Bharat. Join Indian Navy.
1: सात रंग का इंद्रधनुष है, सात सुरों की सरगम है, सात जन्म है, सात समंदर, साथ हमारा हर दम है। जिंदगी के सतरंगी रंग, FM रेनबो के संग।

महतारी शब्द की बात कर रहे थे। जी हाँ, जब हम व्याख्यान करते हैं अपने श्री राम की बाल लीला का, तो वहाँ पर हर्षित महतारी जो शब्द आता है ना, वो एकदम मन को प्रसन्न कर देता है, और उसी के लिए उन्होंने लिखा। तो मुझे लगा शामी अवध में इस बात को आप तक पहुँचाकर आपसे भी पूछते हैं कि कितना जानते हैं आप अपने अवध को, कितना जानते हैं आप अपने लखनऊ को, जो शामी अवध रोज़ सुनते हैं। तो ज़रा सा ध्यान दीजिए इस भाषा पर, जो कहीं खो ना जाए और ये ममत्व, ये अपनत्व कहीं चला ना जाए। जिस तरह से पर्यावरण को सहेज रहे हैं, उसी तरह से अपनी बोली भाषा सबको, अपने खान पान को, अपनी संस्कृति को, अपनी धरोहर को, सबको संभालने की, अपने लोकगीतों को, जी इन सबको संभालने की बहुत ज़रूरत है। और इसी खूबसूरत से नोट के साथ मैं वनिता इजाज़त लूँगी। आज के शामी अवध से आप बने रहिए, क्योंकि अगले घंटे भी मैं रहूँगी आपके साथ न्यूज़ ब्रेक के बाद।

6 बजकर 56 मिनट, वक्त कैसे झमाझम बीत जाता है पता ही नहीं चलता। इतना सारा समय आपके साथ हमने बिता दिया, और चलते चलते फर्स्ट क्लास हमको जो बात लगती है ना शामी अवध में, वो बात कहना चाहूंगी कि अपने अवध की जो भाषा है वो बहुत प्यारी है, और इसमें जो छलकता है ना अपनापन, वो अवध के लोग ही समझ सकते हैं। और अभी अपने शहर में श्री राम कथा करने के लिए पद्म विभूषण रामभद्राचार्य जी आए थे, और उन्होंने भी कहा कि अवध की इस भाषा में मातृत्व का अनुपम वात्सल्य छलकता है, और वो किस शब्द पर आकर उनका दिल अटका जब वो

नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं। अब सुनिए टॉप 10 समाचार। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रदेश भर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृहद पौधारोपण किया जा रहा है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में एक पेड़ मां के नाम महाअभियान का शुभारंभ किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 3 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंचे। दौरे के पहले दिन उन्होंने बायो युग ग्रीन कमांड 2026 का शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार देश को एथेनॉल हब बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। स्थानीय सांसद व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शुक्रवार को लखनऊ में बीजेपी नेता अपर्णा यादव के आवास पर पहुंचकर उनके पति स्वर्गीय प्रतीक यादव के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में एनडीए सरकार के 12 साल पूरे होने पर आज से विशेष अभियान की शुरुआत हो गई है। अभियान के तहत प्रदेश में भी आज से 21 जून तक जनपदों के प्रभारी मंत्री और जनप्रतिनिधि समाज के प्रबुद्ध वर्ग के साथ संवाद स्थापित करेंगे। उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने आज लखनऊ में अकादमी सम्मान समारोह में वर्ष 2021 से 2024 तक के लिए चयनित कलाकारों को सम्मानित किया। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी द्वारा आयोजित समारोह में 51 विशिष्ट कलाकारों को संगीत, नृत्य, नाटक और लोक कलाओं के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए ये सम्मान प्रदान किए गए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि मामले में आज सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने मामले की पत्रावली पर विचार करते हुए रिवीजन याचिका में बहस के लिए अगली तारीख 25 जून निर्धारित की है। वाराणसी में आयोजित ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की 2 दिवसीय बैठक का आज समापन हो गया। बैठक के दूसरे दिन ब्रिक्स

सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने सांस्कृतिक सहयोग और आपसी साझेदारी को और मजबूत बनाने पर बल दिया। बलिया स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुरहा ताल को देश का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश की इस उपलब्धि पर खुशी जताई है। प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने और उत्कृष्ट शिक्षकों को सम्मानित करने के राज्य अध्यापक पुरस्कार 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रदेश के पात्र शिक्षक और शिक्षिकाएं 7 जून से 30 जून 2026 तक प्रेरणा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। पीलीभीत में 25 किलोमीटर लंबाई में प्रदेश की पहली और देश की छठी लेपर्ड सफारी बनाई जाएगी। इसका शिलान्यास 1 जुलाई से शुरू हो रहे वन्य जीव सप्ताह में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीलीभीत में करेंगे। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 7:20 पर प्रसारित होगा। सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

आफ्टर 6 months. ओके, आप गेस कर रही हैं तो मैं आपको बता दूं, 7 महीने बाद आई हूँ. बहुत दिनों बाद. दीदी कहाँ थी आप? मैंने आपको बहुत मिस किया. भैया थे यहीं पे, बस मिल गए अभी अचानक से. आप कैसी हैं? खैरियत से हैं? इतना टाइम ना लगाया करिए हमसे मिलने, जल्दी आया करिए. जी, लॉट्स ऑफ लव दीदी. थैंक यू सो मच एमन. बहुत प्यारा सा आपने मेल भेजा, स्वीट सा, और बहुत सारी मोहब्बतों के साथ भेजा. और मुझे लगता है कि मैं इतने सारे प्यार का जवाब किस तरह से दूं आप लोगों को. और इतने प्यारे प्यारे जो गाने आप लोग कभी कभी फरमाइश भी कर देते हैं, और कभी कभी जो है हम अपनी तरफ से जब बजाते हैं तो वो भी आप बहुत ही प्रेम से हमें बताते हैं कि हाँ हाँ प्लीज आपने जो बजाया ना बड़ा अच्छा लगा. ये जो बात कही आपने बड़ी अच्छी लगी. तो हमें बड़ा अच्छा लगता है जब हम आपसे रूबरू होते हैं, कभी मेल से कभी फोन के जरिए. तो बस आप नंबर मिलाएं, जल्दी से हमसे बात करें, और या फिर मेल करें तो हम उसमें भी आपका मेल पढ़ देंगे. भाई फिलहाल तो ये ट्रैक आपके लिए.

तो इतना सुंदर सा गीत, और इस गीत के बाद इतनी सुंदर सुंदर आपकी बातें हमको सुनने को मिलेंगी। मगर हम उसका इंतजार करें उसके पहले कुछ लोगों ने मेल बरसाना शुरू कर दिया है जी। और इसमें एमन नवाब जो हैं वो संडीला से हमें मैसेज कर रही हैं, मतलब मेल कर रही हैं। हेलो डियर वनिता दी, मे बी

0: tinha fodinha.
1: FM रेनबो सुबह 6 से रात 12 बजे तक हर घड़ी हर पल आपके साथ आपका सच्चा हमसफर।

जी। और हेलो एफएम में हमारे साथ कोई श्रोता हैं जो जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो हेलो जी, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो जी, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? हेलो हेलो, जो भी श्रोता हैं प्लीज़ ज़रा हेलो हेलो कर लें तो हम भी हेलो हेलो कर लें आपके साथ, और उसके बाद हम आपकी से बातें करने के साथ साथ आपकी फरमाइश भी ले लेते हैं। तो मुझे लगता है कि आपसे बात तो नहीं हो पा रही है, राइट? और अगर नहीं हो पा रही है बात, तो फिर हम कर भी क्या सकते हैं, हमें तो आवाज़ आपकी नहीं आ रही है। तो एक काम करते हैं कि एक अच्छा सा गाना और आप तक पहुँचा देते हैं, और देख लेते हैं इस बीच अगर कोई हमारे पास मेल आया हो तो वो भी चेक कर लेते हैं भाई। ओ हो, बड़े सारे मेल हैं भाई। तालिब अंसारी जी ने हमें मेल भेजा है गुड इवनिंग के साथ कि वनिता मैम 7 मंथ के बाद आई हैं, हम कुछ नहीं लिखेंगे इसके आगे बिकॉज हम नाराज़ हैं। अरे बाप रे, इतनी नाराज़गी। मोहम्मद आसिफ आपने क्या लिखा है भाई? हैदराबाद तेलंगाना से सुन रहे हैं दीदी, प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है। मैं हैदराबाद तेलंगाना से सुन रहा हूँ, रहने वाला राजा कटरा अहमदपुर बाराबंकी का हूँ। मेरे पिछले प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा आपको। अच्छा, ये आपने लिखा कि पिछला प्रोग्राम आपको बहुत अच्छा लगा। शैलेश कुमार जी नहीं, आपने जो है नीरू शर्मा रूपपुर चंदेला से यह बोल रही हैं। सर झुकाकर सलाम करती हूँ, दिल से दुआ मांगी आपके नाम करती हूँ, अगर स्वीकार हो तो मुस्कुरा देना वनिता जी, ये प्यारी शाम आपके नाम करती हूँ। नमस्ते, गुड इवनिंग, कैसी है वनिता जी? 2 दिन पहले आपको याद कर रहे थे और हम बहुत ज़्यादा आपसे नाराज़ भी हैं, इतने दिन बाद क्यों आई है भगवान, सब लोग गुस्सा क्यों है? और अब फिर रोशनी चौरसिया है जो हैं वो कह रही हैं कि प्लीज़ फ़ोन कॉल भी शामिल करिए। बिल्कुल उसी की कवायद चल रही है और हम कोशिश यही कर रहे हैं कि हम आपसे किसी तरह से जुड़ जाएं। सावित्री देवी ने मुझे मेल किया था थोड़ी देर पहले और उन्होंने पूछा था, बहुत दिन से आपका इंतज़ार कर रही थी, आपकी आवाज़ सुनकर मैं इमोशनल हो गई हूँ, खुशी से ज़्यादा तो आंखें नम हो गई, मतलब मुझे बिलीव नहीं हुआ कि इतना भी कोई प्यार कर सकता है हमसे। और आप भारतपुर बरगदी पोस्ट अर्जुनपुर डिस्ट्रिक्ट लखनऊ से प्रोग्राम सुन रही हैं सावित्री, थैंक यू सो वेरी मच। और हम कोशिश बिल्कुल कर रहे हैं कि आपसे हम फ़ोन से जुड़े, नाराज़ आप बिल्कुल ना होइएगा क्योंकि भाई फ़ोन पे बात नहीं हो पा रही है, तो हम मेल से तो आपसे जुड़े ही हैं। और वैसे भी धड़कन लखनऊ की है तो धड़कन से धड़कन तो जुड़ी ही है ना। अशोक राज जी नमस्कार, आपने भी भेजा है और पता भी आपने भेजा है अपना, रायपुर ओदारा मितौली लखीमपुर खीरी से, प्रोग्राम अच्छा लग रहा है और आपने कुछ गाने बताए हैं और आपने लिखा है कि अजय राय बलिस्टर राज उत्तम राज कुछ नाम है। अच्छा अच्छा, आपने डेडिकेट किया होगा। तो एक काम करते हैं कि बढ़िया सा गाना आपको सुनवा देते हैं और उसके बाद लौटते हैं और फिर आपके हमारी कवायद चलती रहेगी, कोशिश रहेगी आपसे हम फोन से जुड़े। फिलहाल तो ये मस्त वाला ट्रैक आपके लिए।

0: हेलो
1: डे डे डे हेलो हेलो हेलो।
0: हेलो
1: हाँ जी, पहला पहला कॉल
0: जी
1: मुबारक
0: जी
1: आपको। कौन बोल
0: नमस्कार,
1: रहे
0: गुड
1: हैं?
0: इवनिंग
1: वेरी गुड इवनिंग। कौन बोल रहे हैं बताइए जल्दी से।
0: जी। विनीत कुमार बोल रहे हैं, ग्राम अर्थापुर, पोस्ट रामगढ़, चीनी जिला सीतापुर।
1: जी नमस्कारम। और आपका गाना हम निकाल चुके हैं, जल्दी से जो कहना कह डालिए, वक्त बहुत कम है हमारे
0: बहुत
1: पास।
0: टाइम आज गड़बड़ चल रहा, मतलब ट्रांसफर नहीं हो पा रही, तो मित्र लोग नाराज ना हो बता रहे हैं
1: हाँ हाँ बिल्कुल। थोड़ी
0: जी।
1: देर में हिंदी में समाचार होंगे, प्रादेशिक हिंदी समाचार।
0: ये आशिक फिल्म का
1: तो
0: गाना है,
1: जी बिल्कुल
0: कालम मैं क्या बताऊं तुझे,
1: बिल्कुल।
0: और
1: तो
0: दोस्तों को डेडिकेट करते।
1: हाँ हाँ जल्दी से डेडिकेट करिए, थोड़ा सा कम सा वक्त है,
0: जुड़े
1: जल्दी से बोलिए
0: सीतापुर
1: आप।
0: से हैं, ओम
1: हाँ
0: बार सीतापुर से हैं, सीमा
1: हाँ
0: परवीन अंसारी सीतापुर से हैं,
1: जी
0: और सीमा रावत राजा जी पुरम लखनऊ से हैं, नवनीत हरकेश लखनऊ से हैं, पिंकी पिंकी राय बरेली से हैं, संतोष मौर्या हरदोई कोथावा से हैं, और ममता
1: चलिए
0: हरदोई से हैं,
1: जी,
0: संजू हरदोई से हैं, जितने सुने सभी को।
1: चलिए बहुत बहुत धन्यवाद फोन करने के लिए। और आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, जहां जल्दी ही आप सुनेंगे प्रादेशिक हिंदी में समाचार।
2: सात सुरों की सरगम है, सात जन्म है, सात समंदर, साथ हमारा हर दम है जिंदगी के।
3: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व पर्यावरण दिवस पर एक पेड़ माँ के नाम महाभियान का किया आगाज, कहा पौधरोपण और जल संरक्षण कर जनता भी निभाए जिम्मेदारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में बायोयुग ग्रीन कमांड 2026 का किया शुभारंभ, कहा वायु प्लास्टिक का इस्तेमाल आत्मनिर्भर भारत की दिशा में है बड़ा कदम। बलिया स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुरहाताल प्रदेश का 13वां रामसर स्थल घोषित, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपलब्धि पर जताई खुशी। और वाराणसी में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की 2 दिवसीय बैठक का आज हुआ समापन, अंतिम दिन ब्रिक्स सदस्य देशों ने सांस्कृतिक सहयोग और आपसी साझेदारी को मजबूत बनाने पर दिया बल। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रदेश भर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत बृहद पौधरोपण किया जा रहा है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में एक पेड़ माँ के नाम महाअभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 35 करोड़ पौधरोपण लक्ष्य के अंतर्गत एक पेड़ माँ के नाम पौधरोपण महाअभियान 2026 के लोगों का भी अनावरण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल एक अभियान नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल से बचें और पेड़ लगाकर प्रकृति का संरक्षण करने का संकल्प लें।
4: 5 संकल्प हम सबको इस अवसर पर लेने होंगे। एक, हर नागरिक एक पेड़ माँ के नाम पर अवश्य लगाएगा, कम से कम एक पेड़, यह हर नागरिक का दायित्व है। दूसरा, पेड़ लगाना ही नहीं, उसकी सुरक्षा का दायित्व भी लेना है, हर एक ओर से उसे बचाना है। तीसरा, जल संरक्षण को अपने जीवन का हिस्सा बनाना। चौथा संकल्प होना चाहिए, सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह रोके, उससे भी हमें पर्यावरण को होने वाले नुकसान के साथ हमें वो करना पड़ेगा। और अंतिम जो संकल्प है वह प्रकृति के अनुकूल जीवन शैली को अपनाना।
3: कार्यक्रम में विश्व बैंक के सहयोग से 2,741 करोड़ रुपए की लागत वाली उत्तर प्रदेश स्वच्छ वायु प्रबंध परियोजना का भी शुभारंभ किया गया। साथ ही श्रावस्ती स्थित गुलेरा केन नाला को बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में विकसित किए जाने की घोषणा की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री की मौजूदगी में विश्व बैंक और प्रदेश सरकार के बीच MOU का हस्तांतरण हुआ। इससे पहले मुख्यमंत्री ने लखनऊ की कुकरेल रेंज में पौधरोपण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने महर्षि चरक औषधि वन की भी स्थापना की। यहां उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बच्चों को सम्मानित भी किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 3 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंचे। दौरे के पहले दिन उन्होंने बायोयुग ग्रीन कमांड 2026 का शुभारंभ किया। ये पहल पारंपरिक प्लास्टिक के विकल्प के रूप में बायो प्लास्टिक को बढ़ावा देने के लिए की गई है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश में गन्ने के मूल्य में अच्छी बढ़ोतरी की गई है और बायो इकोनॉमी को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गन्ना आधारित बायोप्लास्टिक के इस्तेमाल से न सिर्फ पर्यावरण संरक्षण होगा बल्कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ये महत्वपूर्ण कदम होगा।
5: जब हम गन्ने से बायोप्लास्टिक बनाएंगे तो हमारी निर्भरता विदेशों पर कम होगी और हम धीरे धीरे आत्मनिर्भर बनेंगे। साथियों, पीएलए दुनिया के सबसे सस्ते बायोप्लास्टिक में से एक है और जब यह डिस्पोज होगा तो यह कचरा नहीं खाद बनेगा, फर्टिलाइजर मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाएगा, यानी कि हर तरीके से फायदा ही फायदा, कहीं से कोई नुकसान नहीं।
3: बलिया स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुराहताल को देश का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश की इस उपलब्धि पर खुशी जताई है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि देश के प्राकृतिक परिवेश और विशेष रूप से आर्द्र भूमि की रक्षा के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता इसमें झलकती है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि भारत ने पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण और आर्द्र भूमि सुरक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। श्री योगी ने कहा कि ये उपलब्धि विकास और पर्यावरणीय स्थिरता के बीच सामंजस्य स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सुराहताल प्रदेश का 13वां रामसर साइट है। लखनऊ में विश्व पर्यावरण दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में वन राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने सुराहताल के रामसर साइट बनने का प्रमाण पत्र मुख्यमंत्री को सौंपा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बलरामपुर में 294 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रदेश की पहचान निवेश और सुरक्षा के माहौल के लिए हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार आज हर जनपद के समग्र विकास के लिए काम कर रही है।
6: यूपी में बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके और बिना थके डबल इंजन की सरकार डबल स्पीड के साथ आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश के नौजवानों के उज्जवल भविष्य के लिए कार्य कर रही है। अन्नदाता किसानों के चेहरे पे खुशहाली ला रही है। बहन और बेटियों के स्वावलंबन के लिए कार्य कर रही है। व्यापारी को बेहतर सुविधा उपलब्ध करवा रही है। बेहतरीन कनेक्टिविटी के माध्यम से आज हर जनपद विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ा है।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। वाराणसी में आयोजित ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की 2 दिवसीय बैठक का आज समापन हो गया। बैठक के दूसरे दिन ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने सांस्कृतिक सहयोग और आपसी साझेदारी को और मजबूत बनाने पर बल दिया। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस महत्वपूर्ण बैठक में ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब समेत 11 देशों ने हिस्सा लिया। संस्कृति मंत्रालय की अतिरिक्त सचिव अमिता प्रसाद सरभाई ने बताया कि आज बैठक में भारत की मूल्यवान धरोहरों को वापस लाने पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा विकास और संस्कृति के समन्वय के साथ आगे बढ़ने को लेकर भी चर्चा की गई।
7: हमेशा यही कोशिश रही है सरकार की और स्पेशली संस्कृति मंत्रालय की कि जो हमारे जो भी स्टोलन आर्टिफैक्ट्स हैं या जो स्मगल करके ले गए जाए गए या उसके पहले कॉलोनियल टाइम्स में ले जाए गए उनको कैसे वापस लाया जाए क्योंकि वो हमारी धरोहर, तो उसी के ऊपर चर्चा हुई है और कैसे डेवलपमेंट और कल्चर साथ साथ हो, विरोधाभास ना हो उसमें।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में एनडीए सरकार के 12 साल पूरे होने पर आज से विशेष अभियान की शुरुआत हो गई है। अभियान के तहत प्रदेश में भी आज से 21 जून तक जनपदों के प्रभारी मंत्री और जनप्रतिनिधि समाज के प्रबुद्ध वर्ग के साथ संवाद स्थापित करेंगे। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में रात्रि चौपालों का आयोजन कर जन समस्याओं का निस्तारण करेंगे। इसी क्रम में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने लखनऊ में वृक्षारोपण कर समेकित जन कल्याण और जन जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया। अभियान के बारे में जानकारी देते हुए प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का सम्मान पूरे विश्व में बढ़ा है।
8: भारतीय जनता पार्टी ने और सरकार ने 5 जून से 21 जून के बीच में कार्यक्रम निर्धारित किया है। आज एक पेड़ माँ के नाम, तो आज यही कहूंगा 12 वर्ष नहीं, इसी तरह 2047 जो उनका सपना है कि 2047 में हमारा विश्व में देश हमारा बहुत आगे रहे, पूरी दुनिया को दिशा दे और आगे बढ़े और गरीबों की सेवा करते रहे।
3: उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने आज लखनऊ में अकादमी सम्मान समारोह में वर्ष 2021 से 24 तक के लिए चयनित कलाकारों को सम्मानित किया। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी द्वारा आयोजित इस समारोह में 51 विशिष्ट कलाकारों को संगीत, नृत्य, नाटक और लोक कलाओं के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए ये सम्मान प्रदान किए गए। बीते 24 घंटों में प्रदेश के कई जनपदों में आंधी बारिश का सिलसिला जारी रहा। मौसम विभाग ने कल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में कहीं कहीं बारिश का अनुमान जताया है। साथ ही पूर्वी जनपदों में तेज हवाएं चलने और बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व पर्यावरण दिवस पर एक पेड़ माँ के नाम महाअभियान का किया आगाज। कहा पौधरोपण और जल संरक्षण कर जनता भी निभाए जिम्मेदारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में बायोयुग ग्रीन कमांड 2026 का किया शुभारंभ। कहा बायोप्लास्टिक का इस्तेमाल आत्मनिर्भर भारत की दिशा में है बड़ा कदम। बलिया स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुराहाताल प्रदेश का 13वां रामसर स्थल घोषित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपलब्धि पर जताई खुशी। और वाराणसी में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की 2 दिवसीय बैठक का आज हुआ समापन। अंतिम दिन ब्रिक्स सदस्य देशों ने सांस्कृतिक सहयोग और आपसी साझेदारी को मजबूत बनाने पर दिया बल। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

0: जी, और ये दिल का आलम बताने के लिए हमारे साथ कौन है? लखनऊ की धड़कन के साथ। हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी, आपको आवाज आई हमारी। गुड, हमको तो आ गई भाई, है ना?
1: हाँ जी, आ रही है आपकी आवाज, आ रही है।
0: हाँ तो बताइए कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, फटाफट।
1: मैं श्री दुलारे गिरी ग्राम दरी पोस्ट नीलवा जिला लखीमपुर खीरी से बोल रहा हूँ।
0: अरे नाम तो बता दीजिए।
1: वही तो बता रहा हूँ, नाम ही बता रहा हूँ, शिव दुलारे गिरी।
0: शिव दुलारे। अच्छा, ओके। आपने एक सुर में बताया ना, तो मुझे लगा अभी तक आप एड्रेस ही बता रहे
1: मैं
0: हैं।
1: पूरा एड्रेस हमने बताया था।
0: बिल्कुल, पूरा एड्रेस ही बताना चाहिए, वरना पता गलत हो जाएगा तो पहुंचेंगे कैसे, है ना?
1: हाँ जी
0: हाँ जी, तो बताइए करते क्या है जी?
1: जी मैं यही खेती किसानी का काम करता हूँ।
0: तो इस समय क्या चल रहा है खेत वेत में सीन?
1: इस समय की गन्ना चल रहा है।
0: गन्ना।
1: गन्ना।
0: अच्छा ये बताइए, आपका गन्ना चूसते हुए कभी कोई दांत उखड़ा है?
1: जी
0: गन्ना चूसते हुए कभी कोई दांत हिला विला है आपका?
1: नहीं, कभी नहीं हिला है
0: अच्छा, एकदम चौचक।
1: जी।
0: हमको तो बहुत डर लगता है, अगर हम गन्ना चूसेंगे तो पक्का निकल आएगा एक आध।
1: नहीं नहीं निकलेगा नहीं।
0: अच्छा अच्छा, मतलब आप अपने खेत में ऐसा गन्ना उगाते हैं कि जिसको हम जो है अगर चूसेंगे तो मेरा दांत नहीं हिलेगा, ये गारंटी आप लेते हैं, है ना?
1: मैं गारंटी लेता हूँ।
0: ये हुई ना बात, तो फिर तो पता आपने एकदम सही बताया, अब तो पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि गन्ना चूसे हुए जमाना हुआ भैया, बचपन में चूसा था कभी, है ना? चलिए, तो आपने एक अच्छी बात ये बताई कि हम अपने मन से गाना सुना दें, तो बिल्कुल हम अपने मन से गाना सुना देंगे और बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे आपका। कुछ कहना चाहते हैं तो जल्दी से कह डालिए। और
1: कहना क्या है, कहना यही है कि जो रोज रोज फोन लगाते हैं तो किसी दूसरे को भी मौका दें,
0: अच्छा
1: ताकि दूसरे का भी फोन लगे, आपसे बात हो जाए।
0: अच्छा ठीक है, तो मतलब आपकी बहुत दिन बाद बात हो रही है, इसका मतलब
1: बहुत दिन बाद बात हो रही है।
0: तो आप बाकी लोगों से नाराज है कि फोन को बिजी किए रहते हैं। चलिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद शिव दुलारे जी।
1: नाराज नहीं है, उनसे यही कहना हमारा है कि जो मतलब दूसरे को भी मौका दें।
0: बिल्कुल बिल्कुल, सब लोगों ने सुन लिया, धन्यवाद, है ना? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद फोन करने के लिए। और हम आपको बता दें कि हमारे साथ जो है बहुत सारे लोगों का मेल आ चुका है, और ये कुछ लोगों ने मुझे कंफ्यूज किया है रत्ना से, तो मैं बता दूं कि भाई मैं वनिता हूं। और गुड इवनिंग किन्हीं गुलफसा सिद्दीकी ने संडीला से मेल भेजा है, और फिर उसके बाद राजकिशोर जी ने भी पर्यावरण को बचाने के लिए बात करी है कि सिंगल यूज प्लास्टिक का बहिष्कार करें, पानी बिजली की बचत करें, कचरे का सही तरीके से निपटान करें, और बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें लोग भेज देते हैं तो अच्छा लगता है। छविराम जी ने हमें भेजा है फरुखाबाद से मेल, है ना? और नियमित श्रोता बोल रहे हैं, इन्होंने ये भी बताया है। और मेरा फोन नहीं लगता है 3 महीने से, तो इसीलिए इन्होंने मेल कर दिया। वकील अहमद जी ने लिखा है कि बहुत दिनों के बाद आई हैं, जल्दी जल्दी आया करिए, आवाज़ आपकी अच्छी लगती है। धन्यवाद भैया। और आम की बाग में है, गन्ने की सिंचाई हो रही है, टेबल में नहाने जा रहे हैं। मेरे ख्याल से आपने ट्यूबवेल लिखने की कोशिश करी है, जो कि टेबल हो गया है। चलिए टेबल पर चढ़कर ट्यूबवेल से नहाइए, और क्या हम कहेंगे। और ये आप जो हैं चाचा अनीस अहमद बबलू यादव इरफान वकील अहमद मंसूरी कटका हथुरी जिला सीतापुर, इतना बड़ा वाला एड्रेस भेजा है आपने, है ना? और ये जितेंद्र नामदेव बबलू नामदेव अंजू नामदेव खनक नामदेव ने ग्राम पोस्ट खन्नौधी से लिखा है कि दूसरे का नाम कम लें, क्योंकि वो खुद फोन लगाते हैं। कुछ श्रोताओं से इन्होंने विनम्र निवेदन किया है ताकि दूसरे श्रोता को भी मौका मिले, जैसे कि अभी हमारे ये श्रोता बोल रहे थे, है ना? और तेलंगाना हैदराबाद से नमस्कार भेजा गया है मुझे। और भाई संतोष जी ने बताया, प्रोग्राम अच्छा लग रहा है दीदी, पूजा भारद्वाज का नाम ले लीजिए, मेरी पत्नी का। आए है, पत्नी का नाम ले लिया, आज खाना बढ़िया वाला मिलेगा आपको, पक्की बात है ना? और श्री गणेशाय नमक इन्होंने भेजा है भाई, जिला रायबरेली गांव पहाड़ीपुर से रामराज राजू भानु शंकर भैया पप्पू पासी मनीष नीरज बंधु। अरे इतना सारा लिख देते हैं आप लोग, हम भी कन्फ्यूज आ जाते हैं भाई। कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है, कोई भी गाना सुना दीजिए। चलिए ऐसा है ना, हम आप कोई भी गाना सुनवा देते हैं और उसके बाद जो है लौट कर आते हैं, तब आपसे हम और बातें करते हैं, फोन पर भी और मेल भी आपकी पढ़ देंगे, पक्की बात। 7:40, अब भैया 20 मिनट में जो हो जाएगा वही कर पाएंगे, है ना? तो गलती माफ,

0: चलिए भाई, अब इस गाने के बाद देख लेते हैं कि हमारे साथ और कौन से श्रोता हैं फोन पर। हेलो,
1: जी नमस्ते जी,
0: नमस्ते जी, कौन बोल रहे हैं?
1: प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से।
0: उज्जैन से? क्या बात है, दिल खुश
1: जी
0: कर दिया
1: हाँ
0: आपने प्रेम जी।
1: जी, थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप?
0: बढ़िया हैं। और आप बताइए, क्या कहना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं आप?
1: जी, फिल्म का नाम है मोहब्बतें, और गाने के बोले चलते चलते यूं ही रुक जाता हूँ मैं।
0: और
1: जी
0: आप और क्या खास कहना चाहते हैं?
1: जी मैं आकाशवाणी लखनऊ और रेनबो सुनता रहता हूँ मोबाइल ऐप से, और आपको बताऊँ कि 3-4 महीने से रेगुलर रेनबो ऐप से मैं जुड़ा हुआ हूँ।
0: 3-4 महीनों से?
1: हाँ जी, अभी भी नया श्रोता बना हूँ मैं।
0: अच्छा,
1: हाँ जी, और जैसे कि आपको बताऊँ, आकाशवाणी लखनऊ में भी मैं कॉल लगाता हूँ जब दिन में प्रोग्राम आता है ना, कुछ तुमको कुछ हम कहें कार्यक्रम।
0: हाँ,
1: हाँ जी, उसमें भी पार्टिसिपेट।

0: करता हूँ, उसमें भी दीप्ति जोशी से मेरी कई बार बात हो चुकी है। उसके अलावा जितने भी आज आते हैं ना, बहुत सारी बात मैंने कर रखी है वहाँ पे।
1: जी, मगर अच्छा लगा कि आप यहाँ जुड़े और आपका फोन भी लगा, और आप एकदम नए नए श्रोता हैं, ये सुनकर और भी अच्छा लगा।
0: जी,
1: और जी,
0: अलका सिंह जी है ना, रेनबो में आते हैं कार्यक्रम देने के लिए।
1: जी जी,
0: उनसे भी मेरी 2-3 बार बात हो चुकी है।
1: चलिए, बहुत बहुत बधाई हो आपको। कुछ
0: किसी आपसे पहली बार बात हो रही है ना?
1: जी बिल्कुल, हमारी पहली बार बात हो रही है मेरे ख्याल से, क्योंकि हम तो आ ही रहे हैं बहुत महीने के बाद और आप 3-4 महीने पुराने श्रोता हैं, तो बट ऑब्वियस है कि पहली बार बात हो रही है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर कॉलिंग। किसी विशेष को सुनाना चाहते हैं तो जल्दी से नाम ले दीजिए।
0: जी बिल्कुल, हमारे एक दोस्त हैं मिंटू तिवारी जी, अभी अभी वो हमारे नए दोस्त बने हैं, रेनबो सुनते हैं वो भी, और वो बोलते हैं कि मेरा कॉल नहीं लगता है, लेकिन मैं उनसे कहूंगा कि आप बार बार प्रयास करिएगा, आपका कॉल जरूर लगेगा।
1: क्या बात है, तो ये महाकाल की नगरी से फोन करें तो ना मिले, भला ऐसा कैसे हो सकता है। जय महाकाल।
0: बिल्कुल बिल्कुल, जय श्री महाकाल। और एक बात बताऊं मैं आपको, जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारा कॉल नहीं लगता है, लेकिन कहा जाता है कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, और बिना कोशिश किए जे जयकार नहीं होती।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद इतनी बढ़िया बढ़िया बातों के लिए। और चलिए अब आपका गाना आपके लिए।

0: बिल्कुल यही प्यार है, इसीलिए आप जुड़ जाते हैं हमारे साथ 7:51। हेलो FM पर आप हैं हमारे साथ। हेलो, कौन है भैया आप? हेलो हेलो,
1: नमस्कार।
0: नमस्कारम, कैसे हैं, कहाँ से हैं?
1: मैं सत्यम कुमार बात कर रहा हूँ, ब्रह्मा पोस्ट परसेंडी कैसरगंज भराई।

0: सत्यम बहराइच से,
1: जी
0: है ना, कट शॉर्ट करके बात कर लेते
1: जी मैम,
0: हैं। जी तो बताइए, क्या खास कहना चाहते हैं आज?
1: कहना चाहता हूँ वो शिकायत करते हैं, थोड़ा दो बता रहे हैं उनकी कॉल लगती है, लेकिन जो लोग ईमेल करते हैं वो शिकायत करते हैं तो हमें बुरा लगता
0: अच्छा, तो चलिए गुस्सा जो है
1: है मैम।
0: पिकदान में थूक दीजिए।
1: 11 बजे उनका जलसा मिल रहा है।
0: और अब हमको जो है गुस्सा आएगा तो क्या होगा, क्योंकि आपकी आवाज ही नहीं मिल रही हमको। सत्यम जी, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, सदम सत्यम सत्यम बोल रहे हैं कि आपकी आवाज नहीं मिल रही है हमको। तो हम आपसे ये बताना चाहेंगे कि इस वजह से हमको फोन काटना पड़ा, क्योंकि आपकी आवाज हमको नहीं मिल रही और बाकी

आपकी आवाज, क्योंकि कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना। और ये अरुण जी जो है, देखिए कितने सुंदर नाम है इनका, अरुण मित्र नाम है इनका। तो मित्र कैसे हैं आप? लखीमपुर खीरी से आपने हमें मेल किया है और सॉन्ग भी बड़ा सुंदर सुनना चाहा है, अमन कनौजिया, सौरभ गुप्ता, थैंक यू मैम, और आपके रेगुलर लिसनर हैं ये भी इन्होंने बता दिया है भाई। और अकबर आजम, अकबर अंसारी, चौकबंदी, चौखंडी बाराबंकी से, प्रोग्राम बहुत अच्छा करती हैं आप और सॉन्ग भी लिसनर अच्छे अच्छे सुन रहे हैं, लेकिन हम कॉल लगा रहे तो कॉल उठ नहीं रही है। आपकी शक्ल हमको अच्छी नहीं लगती, उसमें शक्ल दिख रही है इसलिए हम नहीं उठा रहे, समझ गए जाओ। आप लोग कहते हैं तो हमें सच में ऐसा लगता है कि अरे भैया ना उसमें नाम दिख रहा है, ना दाम दिख रहा है, ना शक्ल दिख रही है, हमको क्या पता आप फोन कर रहे हैं और हम नहीं उठा रहे हैं। तो अब ये देखिए किसी की भी कॉल उठ जाए वो हमें क्या पता। तो आपने लिखा कि ये चीज़ अच्छी नहीं होती, तो हम भी नहीं बता, हम भी बता रहे हैं कि ये भी बात अच्छी नहीं होती कि आप ये शिकायत करते हैं। हाँ नहीं तो और आपके आने से श्रोताओं में खुशी की लहर, मीठी बोली के कारण कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगता है, हमारे फोन कभी भी नहीं लगते। अच्छा, ग्राम अमृता मोहली सीतापुर से इंद्रपाल मिश्रा जी, मतलब आपने नाराजगी भी जता दी और तारीफ भी कर दी, ये बढ़िया बात करी आपने। और सफर कर रहे हैं राधे श्याम जी कासगंज से, प्रोग्राम मस्त लग रहा है, नाइस प्रेजेंटेशन, थैंक्स, वेरी वेरी थैंक यू। आप लोग अच्छी बातें कर लेते हैं, अच्छा लग जाता है, ज़्यादा बातें कई लोग नहीं करते हैं। महोना थाना इटौंजा बख्शी का तालाब से सुधांशु ग्राम भगवतीपुर से बोल रहे हैं राधे राधे। तो आपकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, मुझे गाना सुनाइए। अच्छा, मेरी आवाज़ इतनी अच्छी कि आपको मेरी आवाज़ में गाना सुनना है? देखिए हम शुरू हो जाएंगे फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। चलिए भाई, मगर बहुत सारे मेल्स पढ़ दिए, एक फ़ोन जिसमें कि आवाज़ ऐसे करके आ रही थी, और फिलहाल तो तुम तक हम ये गाना पहुँचा रहे हैं जो आप में से किन्हीं एक की पसंद का है।

0: भाई ये पहुंचेगी पार कैसे नाजुक सी नैया, ये मैं पहुंच ही नहीं पाई नितिन तक, नितिन इतनी देर से 1 घंटे से मेरे बगल में बैठे और मैं नितिन को फोन करके पे कह रही हूँ नितिन तुमको प्रोग्राम करना है, कहाँ हो? तो कह रहा है मैं तो यही हूँ। ये हर कुछ दिन पे शक्ल बदल लेते हैं भाई, है
1: जी हाँ
0: हाँ, मतलब इतना सोच के बता रहे, मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया क्या?
1: नहीं नहीं हम ये कह रहे हैं कि ये शक्ल दिखेगी तो है नहीं, अब सबके मन में उत्सुकता जाग गई होगी
0: कि कैसे लग
1: कि
0: रहे हैं आप?
1: कैसे लग रहे हैं हम।
0: हाँ तो बहुत सारी दाढ़ी है,
1: तो
0: मूंछ है और बाल
1: हाँ
0: बिखरे हुए हैं, अभी कुछ वक्त पहले ये बिल्कुल साफ साफ सुथरे से दिख रहे थे, कुछ भी नहीं था
1: बिल्कुल।
0: चेहरे पर।
1: तो अब आप लोग हमारी आवाज के साथ में चेहरा भी देख सकते हैं अपने मन की आंखों से।
0: आय आय आय, तो नितिन बस होंगे थोड़ी ही देर में आपके साथ, फिलहाल तो मैं वनिता इजाजत दूंगी तुम तक के साथ ब्यूटीफुल ट्रैक, और आपसे बाय बाय कहूंगी, जल्दी ही फिर आएंगे, अब इतना लंबा वक्त बिल्कुल नहीं लगाएंगे, यूं ही बुलाते रहिए, यूं ही हम आते रहेंगे, सुनते रहिए धड़कन लखनऊ की।

0: सात रंग का इंद्रधनुष है, सात सुरों की सरगम है, सात जन्म है सात समंदर, साथ हमारा हरदम है, जिंदगी के सतरंगी रंग FM रेनबो के संग।
1: ले जाए जाने का हवाएं, हवाएं, ले जाए तुझे का हवाएं, हवाएं।
2: नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। बलरामपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 294 करोड़ की लागत से 75 विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, सिंचाई और अन्य आधारभूत सुविधाओं से जुड़े विकास कार्य शामिल हैं। इस अवसर पर उन्होंने आवास योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना सहित अन्य योजनाओं के लाभार्थियों को चाबी एवं चेक देकर सम्मानित किया। लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार प्रदेश के प्रत्येक जिले के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इन परियोजनाओं से बलरामपुर के नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 3 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंचे। दौरे के पहले दिन उन्होंने बायोयुग ग्रीन कमांड 2026 का शुभारंभ किया। ये पहल पारंपरिक प्लास्टिक के विकल्प के रूप में बायोप्लास्टिक को बढ़ावा देने के लिए की गई है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार देश को एथेनॉल हब बनाने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि गन्ना आधारित बायोप्लास्टिक के इस्तेमाल से न सिर्फ पर्यावरण संरक्षण होगा बल्कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलेगा। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रदेश भर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत वृहद पौधरोपण किया जा रहा है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में एक पेड़ माँ के नाम महाअभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 35 करोड़ पौधरोपण लक्ष्य के अंतर्गत एक पेड़ माँ के नाम पौधरोपण महाअभियान 2026 के लोगों का भी अनावरण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल एक अभियान नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल से बचें और पेड़ लगाकर प्रकृति का संरक्षण करने का संकल्प लें। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड ने वर्ष 2026 की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट का इम्प्रूवमेंट व कंपार्टमेंट परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आरंभ करने की घोषणा कर दी है। पात्र परीक्षार्थी कल से 27 जून तक परिषद की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकेंगे। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 10 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
1: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: हमारे दिल की धड़कनों पर आपकी आवाज आई कि आपको हमारा इंतजार है। कुछ कहो कुछ समझो वाली क्विक बंदियों की हर धड़कन तलबगार है। ये रुत जब गुलमोहर कह रहे हैं सुर्ख जमी से मोहब्बत का अफसाना, इसी दिलकशी का मेला सजाकर हाजिर ये दिलजू आबशार है।

कलम गिरती है कागज पर, कलम गिरती है कागज पर, स्याही फैल जाती है। जो लिखा कुछ नहीं पढ़ना, मनाही फैल जाती है। हमारे साथ में रहना, हमी से अफसुर्दा भी रहना। ये तख्तोताज झूठे हैं, मुनादी फैल जाती है। कलम गिरती है कागज पर, स्याही फैल जाती है।

उसके चेहरे की रोशनी कुछ ऐसी है, दिल नहीं देखा जाता उसके चेहरे की रोशनी कुछ ऐसी है। यूं ही नहीं कहते उसे शीरी जबां, उसके अल्फाज में चाशनी कुछ ऐसी है। वो कह तो देता है कि कोई मरासिम अब ना निभाए जाएंगे, वो कह तो देता है कि कोई मरासिम अब ना निभाए जाएंगे, मगर तलाश लेता है वो तीरगी में भी उसका हाथ, उसकी आंखों की रोशनी कुछ ऐसी है। दिल नहीं देखा जाता उसके चेहरे की रोशनी कुछ ऐसी है।

थक गई थी क्या जो तुमने पूरी तरह से इन्हें फेर लिया है? आंखें ही थक गई थी क्या जो तुमने पूरी तरह से इन्हें फेर लिया है? ये रात कैसी है कि हमें छोड़ तुमने हर किसी का खबरों खैर लिया है? खबरें सुनकर ही कांप जाते हैं पांव, न जाने क्यों अब तो उम्र है, सफर है या डर है, न जाने किस किस से हमने बैर लिया है। आंखें ही थक गई थीं क्या जो तुमने पूरी तरह से इन्हें फेर लिया है।

जानकर जमाने वालों ने इश्क को इश्तहार कर दिया है, जानकर जमाने वालों ने इश्क को इश्तहार कर दिया है। मन में छिपाए रहने वालों को कैसे बेकार कर दिया है, जो कहा नहीं गया वो हुआ ही नहीं है ये मानने लगे हैं सब, जो कहा नहीं गया वो हुआ ही नहीं है ये मानने लगे हैं सब। इस कदर इम्तहान लिखे हैं इश्क के जिंदगी को ही कोहसार कर दिया है, जानकर जमाने वालों ने इश्क को इश्तहार कर दिया।

ये बात किसने कही है जो हम पर इल्जाम हो गई, ये कैसे पल भर में ही जिंदगी की शाम हो गई, जो जा रहा है उसे रोकने के लिए जतन करने गए थे, हमारी बेनियाजी कैसे खबरे आम हो गई।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: 8:44 और 57 सेकेंड्स। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे समाचार संध्या।

0: नमस्कार।
1: संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया, कहा भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर हरित भविष्य की ओर अग्रसर। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.7% रहने का अनुमान। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू किए जाने के अंतिम चरण में संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में अगले वर्ष इसे प्रायोगिक आधार पर शुरू किया जाएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर, गोवा और कर्नाटक के कई क्षेत्रों में पहुंचा और भारत पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अंडर 18 एशिया कप हॉकी के फाइनल में पहुंचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमण में 9,270 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने नमो अस्पताल और नमो हवाई अड्डे का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री इस समय एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं।
2: मैं देशवासियों को आर्थिक क्षेत्र की इस नई ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं देश को फिर आश्वस्त करता हूं कि देश दुनिया भर में चल रहे इन संकटों का सामना करते हुए रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के रास्ते पर ऐसे ही दृढ़ संकल्प के साथ तेज गति से आगे बढ़ता ही रहेगा, ये मेरी देशवासियों को गारंटी।

0: सस्टेनेबल हो।
1: गुजरात के सूरत में आज 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
0: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है, इकोनॉमी भी इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है, इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात में है। उन्होंने कहा कि गुजरात सौर ऊर्जा से आगे बढ़कर ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के क्षेत्र में भी बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। ये भारत को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम सौर ऊर्जा उत्पादन में 5 प्रमुख देशों में से एक हैं।
0: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है, ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है। और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है, उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था, आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने सदैव अराजकता और अस्थिरता की राजनीति को नकारकर विकास को प्राथमिकता दी है। उन्होंने लोगों से विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए एकजुट होकर काम करने की अपील की। सूरत के विकास का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सूरत एक ग्रीन सिटी के रूप में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
0: सूरत सिर्फ स्वच्छता और सर्कुलर इकोनॉमी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्रीन ग्रोथ के दूसरे माध्यमों का भी अभूतपूर्व गति से विस्तार हो रहा है। सूरत ऐसी व्यवस्था बनाने में जुटा है जहां सड़कों पर चलने वाली सारी बसें इलेक्ट्रिक होगी।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृह मंत्री आज त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंकामोरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
2: हमने तय किया है कि बीएसएफ जहां जहां है, एसएसबी जहां जहां है, वहां पर स्मार्ट बॉर्डर का निर्माण करना और एक चतुष्कोणीय सुरक्षा रणनीति के तहत स्थानीय प्रशासन को साथ में लेते हुए, टेक्नोलॉजी को साथ में लेते हुए सीमाओं को एकदम अभेद बनाना। और इस स्मार्ट बॉर्डर का कंसेप्ट फाइनलाइजेशन के स्टेज पर है। इसका पायलट प्रोजेक्ट आने वाले साल में हम निश्चित रूप से इंट्रोड्यूस कर देंगे। एक साथ देश की अलग अलग सीमाओं पर 7 या 8 जगह पे पायलट प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे।
1: गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमाओं पर घुसपैठ के कारण जनसंख्या में किसी भी तरह के बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने बताया कि सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बाड़ लगाने का काम प्राथमिकता पर किया जा रहा है। इसी कड़ी में त्रिपुरा में 119 किलोमीटर लंबी सीमा पर नई डिजाइन की बाड़ लगाने को मंजूरी दी गई है। इसका पहला चरण शुरू हो चुका है। कार्यक्रम में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा, सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक प्रवीण कुमार तथा कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में

0: आपका फिर स्वागत है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार रहेगी। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। एक रिपोर्ट।
1: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र में 3.2% की वृद्धि दर देखी गई है, जो मुख्य रूप से कृषि और मत्स्य पालन क्षेत्रों के प्रदर्शन से प्रेरित है। वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में भारत की वास्तविक

0: बाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र में 3.2% की वृद्धि दर देखी गई है, जो मुख्य रूप से कृषि और मत्स्य पालन क्षेत्रों के प्रदर्शन से प्रेरित है। वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.8% रहने का अनुमान लगाया गया है। वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 87,77,000 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद सरकार ने आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए कई सक्रिय कदम उठाए हैं। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती, सुधारों की सफलता और 140 करोड़ भारतीयों के अथक परिश्रम को दर्शाती है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार लोगों के जीवन को सुगम बनाने, व्यापार में सुगमता और युवाओं के लिए अवसरों को बढ़ाने के हर संभव प्रयास करेगी। मई माह में भारत की यात्री वाहन बाजार में लगभग 4,40,000 वाहनों की बिक्री हुई है। ये पिछले वर्ष की तुलना में 23% अधिक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में ऑटोमोबाइल सेक्टर के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद ये वृद्धि मजबूत उपभोक्ता मांग को दर्शाती है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। श्री पुरी ने कहा कि प्राकृतिक गैस का भंडार 355 मीटर की गहराई पर मिला है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दिल्ली के मालवीय नगर में हुई आग की घटना में 13 विदेशी नागरिकों की मौत हुई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि मृतकों में एक व्यक्ति मोजाम्बिक, 4 नाइजीरिया, 1 लाइबेरिया, 3 किर्गिस्तान, 1 उज्बेकिस्तान, 1 बांग्लादेश, 1 कांगो और 1 इराक का नागरिक था। भारत अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि दोनों देशों के बीच हुई बातचीत सकारात्मक रही।
2: The negotiating team which came from
3: बातचीत करने वाली टीम यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के कार्यालय से आई थी। इसमें अमेरिकी पक्ष के मुख्य वार्ताकार भी शामिल थे। ये बातचीत इस महीने की 1 और 4 तारीख के बीच हुई। ये चर्चा सकारात्मक और रचनात्मक रही है और दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया।
1: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत नेपाल के साथ बहुआयामी साझेदारी मजबूत करने का इच्छुक है।
3: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपनी इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
2: पार्टनरशिप दैट वी हैव विद नेपाल।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नेपाल के विदेश मंत्री से बातचीत करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को रूस के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 देने की पेशकश की है। उन्होंने इस विमान के भारत में संयुक्त उत्पादन का भी प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग आर्थिक मंच में श्री पुतिन ने कहा कि रूस भारत के साथ एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली और अन्य महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों के उत्पादन में सहयोग करने के लिए तैयार है। भारत वर्तमान में अपनी स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली सुदर्शन चक्र विकसित कर रहा है। इसमें रूस से प्राप्त S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली का आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध और जबरन कब्जा है। ये चुनाव 7

0: जून को होने वाले हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो 3 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और सुगियानो रविवार को नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। भारत अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया है। जापान के काका मिगाहारा में आज सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया। भारत की ओर से आशीष तानीपूर्ति ने 4 गोल किए, शाहरुख अली ने 1 गोल किया। फाइनल में कल भारत का सामना जापान से होगा। इससे पहले अंडर 18 लड़कियों की टीम सेमीफाइनल में चीन से हार गई थी। मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर में गोवा और कर्नाटक के कई क्षेत्रों में पहुंच गया है। तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी में भी ऐसी स्थिति बनी हुई है। विभाग के अनुसार अरब सागर, कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के अधिकतर हिस्सों के साथ साथ गोवा, तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी में दक्षिण पश्चिम मानसून पहुंचने की संभावना है। विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन के दौरान बंगाल की खाड़ी के कई क्षेत्रों के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्यों में ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया। कहा, भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर हरित भविष्य की ओर अग्रसर। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.7% रहने का अनुमान। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू किए जाने के अंतिम चरण में संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में अगले वर्ष इसे प्रायोगिक आधार पर शुरू किया जाएगा। और भारत पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अंडर 18 एशिया कप हॉकी के फाइनल में पहुंचा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi launches multiple development projects in Gujarat and Daman. Prime Minister emphasizes on self-reliance in energy sector, says India actively leading towards green future by balancing economic growth and ecological preservation. Country's GDP growth rate estimated at 7.7% in 2025-26 following strong momentum by the economy. Home Minister Amit Shah says smart border project in its final execution stage, pilot rollout to be introduced next year at sensitive border locations. Southwest monsoon advances further into more parts of Arabian Sea, Goa and Karnataka. And in hockey, India enter final of men's under 18 Asia Cup, beating Pakistan 5-3 in semi-final at Kaka Migahara in Japan. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has emphasized self-reliance in the energy sector, stating that the world is moving towards a green future and India is actively leading the way by balancing economic growth with ecological preservation. Addressing a large gathering after launching various infrastructure projects worth over 18,000 crore rupees in Surat today, the Prime Minister pointed out that out of India's total renewable energy capacity of 250 gigawatts, Gujarat alone contributes 50 gigawatts, accounting for a crucial one-fifth of the nation's green energy share. He said the current global energy crisis highlights the critical importance of self-reliance in energy. He said the world is gradually progressing towards a greener future and India is actively contributing to this transition.
2: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है, ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है। और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है, उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था, आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
1: Speaking on the transformation of Surat, the

9:15:30 हो चुके हैं और पॉप टाइम अपने बिल्कुल टॉप टाइम पर चल रहा है। तस्मे वाले जूते सब उतार के नाचेंगे, ड्रम्स पे थिरकने वाले गिटार पे नाचेंगे, धड़कन लखनऊ की बीट पे जब आएगी लखनऊ वाले नाचेंगे, हिसार वाले नाचेंगे।

डांस पार्टी के लिए जो सबसे तगड़े गाने हर ओर धूम मचाते रहे हैं पिछले कई बरसों से, उन्हें हम पॉप टाइम यानी पॉपुलर टाइम में लेकर आते हैं वही वाली ढूंढ ढाड़ के लिस्ट। तो अब देर किस बात की है, चलिए इस वाले गाने पे करिए साड़ी गली विच कमरिया ट्विस्ट।

कानों के भीतर की एनर्जी को अपने पांवों में थिरकने जरा दीजिए। अब कोई नहीं कर रहा डांस, उनको भी झिझकने जरा दीजिए। आप झूमिए, करते रहिए, सारी दुनिया को अपने डांस से इंस्पायर। और बिना किसी देरी ये वाला गाना जरा जोर से बजा लीजिए।

पॉप टाइम के गानों पर डांस तैयार कर लिए तो आपके कदमों में होगी चैंपियंस वाली ट्रॉफी। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स प्ले अ म्यूजिकल एट्रोसिटी।

पर्यावरण दिवस पर एक एक पौधा लगाए हैं और उसका ख्याल रखेंगे। इंद्रपाल मिश्रा जी ने ग्राम अमृता महोली सीतापुर से हमें लिख के भेजा है। आशा, अवनीश, विनीश, गरिमा और रजनी के साथ बताइए कितना पौधा लगाए ये लोग हैं, लिख के भेजिएगा हमको। होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से जयराम घोरवाल, सचिन घोरवाल, अमन घोरवाल, दीपांशु घोरवाल, प्रोग्राम के सभी सॉन्ग इन्हें पसंद आ रहे हैं और ये इन्होंने दो सॉन्ग बजाने के बाद ही लिख के भेज दिया था। हिमांशी यादव डांस करने लग गई हैं, ऐसा उनके पापा राजकमल यादव जी ने बताया हमें। ग्राम बरैया पोस्ट सूरतगंज बाराबंकी से, और ये भी पूछा है कि हम कैसे, हम अच्छे हैं, और अगर वो डांस कर रही हैं तो उनकी फोटो खींचिए और सबको दिखाइए।

नमस्कार, एफएम रेनबो लखनऊ। प्रोग्राम अच्छा लग रहा है। मैं बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी से कार्यक्रम में जुड़ा हूँ। मिर्जापुर उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हूँ। अरविंद गोविंद प्रतिमा प्रतिष्ठा तन्वी किरण पांडे दीपा श्याम कुमारी वाराणसी उत्तर प्रदेश से लिख रहे हैं और इन्होंने सब्जेक्ट में मेरा फेवरेट काम किया है, यानी प्रोग्राम का नाम पॉप टाइम सबसे ऊपर लिख रखा है। नवनीत कुमार ग्राम अर्थापुर पोस्ट रामगढ़ चीनी मिल जिला सीतापुर। पॉप टाइम प्रस्तुत करने वाले सर जी को गुड इवनिंग। सर जी लिखने की जरूरत नहीं है, बाकी आपको बहुत सारी गुड इवनिंग। आपकी आवाज, आपका अंदाज बहुत सुपर हिट, वेरी वेरी स्वीट, अच्छा लगता है। भोजपुरी गाना तनिक बजा दीजिए तब मजा आ जाए। भोजपुरी गाना के लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए। जितेंद्र नामदेव, बबलू नामदेव, अंजू नामदेव, खनक नामदेव, आरोही नामदेव, सौम्या नामदेव, ग्राम खन्नौधी जिला शहडोल मध्य प्रदेश से लिखे हैं हमको कि एफएम रेनबो को धड़कन बनकर दिल में समाया है तुझे, हर सांस के साथ खुद में बसाया है तुझे, बंद आंखों में भी चेहरा तुम्हारा रहता है, इस कदर अपनी रूह का हिस्सा बनाया है तुझे। मतलब एफएम रेनबो को ये इन्होंने क्लियर कर दिया है कि कोई अपने बारे में न समझ ले, प्रोग्राम अच्छा चल रहा है, ऐसा भी लिख के भेजा इन्होंने। बाबू अंसारी निखिल सर को मैसेज भेजे हैं नितिन के प्रोग्राम में। तो निखिल सर, अगर आप सुन रहे हैं तो आपके बाबू अंसारी जी ने आपके लिए एक बहुत ही प्यारी सी चिट्ठी खत भेजा है और इसमें बहुत सुंदर डांस करने वाले मीम भी हैं। फैज अंसारी, कुलदीप गुप्ता, महेंद्र दीपन, हरिकेश के साथ इन्होंने ये हमें भेजा है, देवखली अहमदपुर बाजार बाराबंकी से। तो आपका संदेश निखिल सर तक पहुँच गया हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी आवाज़ अच्छी लगती है, पॉप टाइम अच्छा लग रहा है, गाने अच्छे बज रहे हैं। वकील अहमद मंसूरी कटका हथुरी जिला सीतापुर से, साहिबा अंसारी, शाजिया अंसारी, शमा परवीन, रिंकी पिंकी, महक अंसारी, गुलफशा सिद्दीकी, अहमद नवाब, सबके साथ मिलकर के ये बहुत ही प्यारा सा मैसेज हमें भेजे हैं। शुभ दिन कहाँ है, अब तो रात हो गया। इस सवेरे वाला मैसेज जो तुम भेज रहे हो ना, है पाप पड़े तुमको। ठीक है, रणधीर गुप्ता जी शाम के मैसेज में शुभ दिन का है लिख रहे हैं। किनारों पर पहुंचकर भी करार, काहे दुखी दुखी वाला शायरी काहे भेजते हैं जी। किनारों पर पहुंचकर भी करार नहीं मिलता, जो भीतर ही छुपा है वो बाहर नहीं मिलता, हमें तो डूब कर तैरना इस बहते दरिया में, जो बीच में हो दरिया के वो इस पार या उस पार नहीं मिलता। आनंदी वाली दारूगियां मल्लावा हरदोई उत्तर प्रदेश से लिख रहे हैं और लिखा है इन्होंने हमारी फेवरेट लाइन सबसे नीचे लिखी है जी। हाँ जी, तो इन्होंने लिखा है कि आज तो डांस करने वालों बल्ले बल्ले, नंबर एक प्रोग्राम, और दो ठो टिक भी मारे हैं, पॉप टाइम ऊपर लिखे हैं सब्जेक्ट में। बाकी आप जो हमको मैसेज नहीं भेज रहे हैं और ये जो जावेद अख्तर जी पुराना मैसेज ही भेज दिए हैं, आप सबको बहुत बहुत सारा प्यार। वापस लौटेंगे और आपसे और बातें करेंगे, तब तक मैसेज नया कर लीजिए और हमारे दिल के बिल्कुल करीब भेज दीजिए, क्योंकि हमको करनी है आपसे गल्ला गुड़ियां, पर अब हमारे पास गल्ला बची नहीं है, तो आप अपनी तरह से लिख के भेजेंगे तो वही गल्ला आप तक पहुंचा देंगे। हैं जी, हाँ जी।

गुड इवनिंग प्री आरजू सर, कैसे हैं आप? प्रोग्राम बहुत अच्छा पेश कर रहे हैं आप तो आज एकदम से पॉप टाइम प्रोग्राम में धमाल मचा दिए सर, बहुत सुंदर। मेल शामिल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये लिखा है मैं अजय कुमार सिंह जी ने सीतापुर से, इतनी सुंदर बातें किए हैं आप तो आपको हमारी तरफ से भी बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत बड़े वाला थैंक यू। प्रोग्राम प्रस्तुत करने वाले भैया जी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आपको भी मनोज जी हमारा प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की प्रस्तुति जबरदस्त, पूरा गर्दा सॉन्ग है भाई, मजा आ रहा है। मेरे गांव में बारिश आगे चला भी गया है, बारिश चला गया, मेहमान चला गया, जैसे छत में बैठे ठंडी हवा में आपके प्रोग्राम का आनंद ले रहा हूं। मेरे साथी लोग नदी किनारे आपके प्रोग्राम का आनंद ले रहे हैं, दिलीप, रमेश, महित्रु और छत्तीसगढ़ जिला बालोदा बाजार ग्राम तारा शिव मोहल्ला ठाकुर चौक से मनोज विश्वकर्मा जी की खूबसूरत कलम से निकला हुआ ये संदेश हम तक पहुंच गया है। हेलो नितिन भाई, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूं, एमन नवाब ने हमें लिख के भेजा है, पूरे आधे घंटे बाद बोल रही हूं, गाने बहुत अच्छे हैं, गजलें भी बहुत अच्छी थी आज, आपकी लाइंस बहुत अच्छी होती हैं, बहुत अच्छी तैयारी करके आते हैं आप, फैबुलस। दो तीन दिन से पता नहीं क्या हो गया था, रेडियो पर रेन

वो नहीं बज रहा था, आप आए और आज रेनबो आया है। बहुत बढ़िया जी, हैं आपने ये खबर सुनाई, हमारा दिल बाग बाग हो गया, गार्डन गार्डन हो गया। ठीक है तो एमन, ये बात आपने बता दी है सारी दुनिया को कि रेनबो जो है वो रेडियो पे इस समय बजने लगा है, तो बहुत अच्छी बात है और सब लोग सुन ही रहे हैं। आजाद सिमरी से ओमकार, सीतापुर से शमा परवीन, अंसारी सीतापुर से, सुरभि सीतापुर से, सीमा रावत राजाजीपुरम लखनऊ से, ममता हरदोई से, संतोष मौर्य हरदोई से, विनीत कुमार ग्राम अर्थापुर पोस्ट रामगढ़ चीनी मिल जिला सीतापुर, पॉप टाइम प्रस्तुत करने वाले सर जी को गुड इवनिंग, शुभ रात्रि, सादर प्रणाम करता हूँ। यही वाला जो है आपका, मेरा नाम पहले ईमेल में गलत पढ़ दिया था। अच्छा, आई एम सो सॉरी अगर आपका नाम मैंने गलत पढ़ दिया है तो, आई एम सो सॉरी विनीत जी, हमारी तरफ से ये माजरत स्वीकार कीजिए आप। आदरणीय आरजे निखिल सर जी, सादर नमस्कार। मेरा नाम महेंद्र देपन है और मैं राजस्थान के नागौर जिले के रूंड गांव से हूँ। आज रात पहली बार आपके प्रोग्राम पॉप टाइम से जुड़कर मुझे बेहद खुशी हो रही है। सच कहूँ तो आप इतने शानदार गाने बजा रहे हैं, मैं तो गाने सुनने में इतना खो गया था कि मुझे ये ख्याल भी नहीं रहा कि मुझे आपको संदेश भी भेजना है। मेरे प्रिय मित्र बाबू भाई अंसारी जी ने मुझे विशेष रूप से रात 9 बजे आपके शो को सुनने के लिए कहा था। उनकी सलाह पर मैंने आपका शो सुनना शुरू किया और यकीन मानिए आपका अंदाज और गानों का चयन लाजवाब है। इतनी दूर राजस्थान में बैठकर आपके शो का आनंद लेना वाकई में एक सुखद अनुभव है। आप यूं ही मुस्कुराते रहें और बेहतरीन संगीत के माध्यम से हम जैसे श्रोताओं का मनोरंजन करते रहें, शुभकामनाएं। आप दूर कहाँ हैं सर, आप तो हमारे बगल में बिल्कुल पहलू में बैठ के, जहां दिल होता है ना वहीं बैठ करके प्रोग्राम सुन रहे हैं। वैभव प्रकाश सिंह नागपुर महाराष्ट्र से लिखते हैं, पॉप टाइम प्रोग्राम मस्त लग रहा है, आरजे जी का स्टाइल पॉप टाइम में कहर भर पा रहा, कहर है जी, कहर। ये लिखा है वैभव प्रकाश सिंह जी ने, बहुत बहुत शुक्रिया वैभव इतने प्यार से लिखने के लिए। और महेंद्र देवन जी, आपका इतना प्यारा मेल पढ़ने के बाद आपके लिए बहुत ही प्यारा सा गाना सुनिए, गुनगुनाइए हमारे साथ।

विजय सिंह दीपू इटहुआ कैसरगंज बहराइच। गुड इवनिंग नितिन भैया, खेत में गन्ने की सिंचाई कर रहा हूँ और कार्यक्रम सुन रहा हूँ। आई होप कि सिंचाई में आपको मजा आ रहा है। मोनू सेठ जी लिखते हैं, सुपर हिट प्रोग्राम। तो थैंक यू सो मच मोनू भैया लिखने के लिए।

ब्रजेश सिंह दीपू इटहुआ कैसरगंज बहराइच। गुड इवनिंग नितिन भैया, खेत में गन्ने की सिंचाई कर रहा हूँ और कार्यक्रम सुन रहा हूँ। आई होप कि सिंचाई में आपको मजा आ रहा है। मोनू सेठ जी लिखते हैं सुपर्ब और हिट प्रोग्राम, तो थैंक यू सो मच मोनू भैया लिखने के लिए। बहुत दिनों बाद आपका मेल पढ़े। रणधीर गुप्ता जी, आपका मैसेज हमें मिल गया। रणधीर गुप्ता, बबीता रानी गुप्ता, सत्यम गुप्ता, सुंदरम गुप्ता, ओखला संगम विहार दिल्ली से शुभ संध्या रेडियो मित्र जी लिख रहे हैं और बहुत पसंद आ रहा है आपको प्रोग्राम, इसके लिए बहुत बहुत बहुत ढेर सारा शुक्रिया आपको। राही लिखती हैं, गुड इवनिंग सर जी, उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, ईमेल बहुत अच्छे से पढ़ते हैं तसल्ली से। सबने अपनी अपनी हाजिरी लगवा दी है, मैं अकेले ही क्यों पीछे रहूं। आई एम राही फ्रॉम लखनऊ। कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत जोर जोर से झूम रहे हैं। मुझे लग रहा है आज पूरे घर में तहलका मचा दूंगी, मैं नाच नाच कर तोड़ फोड़ कर डालूंगी। ये ना कीजिएगा, अपने घर का सामान थोड़ी तोड़ा जाता है, मतलब दूसरों घर का सामान भी नहीं तोड़ना, सामान किसी घर का नहीं तोड़ना, खुद को बचा के रखना है। डांस कीजिए, कोई मुझे पकड़ लो, नहीं तो गिर जाएंगे। तो गिरिएगा नहीं, है ना। पूरे परिवार के साथ सुन रही हो तो सुनते रहिए और हमारे साथ गुनगुनाती भी रहिए, ढेर सारे गाने हैं ना। सब लोग पूरे परिवार के साथ सुन रहे हैं प्रोग्राम, ये हमें बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि पॉप टाइम का मतलब ही है पॉपुलर सॉन्ग्स ऐसे जो आपके दिल में उतरे हुए हैं। हम तो बस उन्हें प्ले करके एक बार आपको याद दिला देते हैं। सबके होते हुए भी इंसान जब अकेला हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए, वही करना चाहिए जो आप इस वक्त कर रहे हैं, यानी हमें मेल लिखनी चाहिए और हमारे साथ गाने गुनगुनाने का ये काम करना चाहिए। अजीज अहमद जी, पता ग्राम वपूस, बिहार यूपी 34 से हमें प्यारे से मेल के साथ अपना दोस्त बना चुके हैं। तो हम आपके दोस्त हैं, आप बिल्कुल अकेले नहीं हैं, हमारे साथ जुड़े रहिए। कहां और कहां, बस यहां। ये है 100.7 FM रेनबो पॉप टाइम प्रोग्राम, मस्त लग रहा है और आरजे जी का स्टाइल पॉप टाइम में कहर भर पा रहा है। एक बार फिर से हम आपका मेल पढ़ दिए वैभव जी, एक ही दिल कितनी बार लेंगे। अनुज लिखते हैं, गुड इवनिंग नितिन सर, आपकी आवाज सुनकर हम चौंक गए, बहुत दिन के बाद आए हो प्रोग्राम में, ये किसी और ने नहीं कहा था, आपने कह दिया तो ये बात भी पूरी हो गई। श्रीनगर लखीमपुर खीरी से, मुझे इस फिल्म से ये वाला गाना सुनवा दीजिए। आप तो इतने पुराने लिसनर हैं हमारे, आप तो अच्छी तरह से जानते हैं ये वाला प्रोग्राम जो है ना फरमाइशी प्रोग्राम नहीं है साहब, इस वाले प्रोग्राम में हम चाह कर भी गाना आपके लिए नहीं प्ले कर सकते। अनुराधा लिखती है कि मैं गांव कट्टर गिलौला श्रावस्ती से आपका प्रोग्राम सुन रही हूँ। दोनों दीदी, ममता दीदी और साधना दीदी भी प्रोग्राम सुन रही है, पूरी फैमिली भी सुन रही है, मम्मी डैडी जूही शिवम भाई गाने का आनंद ले रहे हैं। तो गाने का आनंद यूं ही उठाते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि एक गाना, उसके बाद समाचार और उस पार आपका फेवरेट प्रोग्राम रजनीगंधा। और कहां, बस यहां। ये 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

पॉप टाइम यहीं तक, लेकिन कहीं जाइएगा मत, हम वापस यहीं से मिलेंगे आपको एक समाचार और उस पार रजनीगंधा।

नमस्कार, रात्रि के 10 बज चुके हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। वाराणसी में ब्रिक्स देशों के संस्कृति कार्य समूह की बैठक में शामिल होने वाराणसी पहुंचे प्रतिनिधियों का आज शाम नमो घाट पर भव्य स्वागत किया गया। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने काशी के जनप्रतिनिधियों के साथ सभी विदेशी मेहमानों का अंगवस्त्र पहनाकर अभिनंदन किया। इसके बाद ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधियों ने गंगा नदी में क्रूज यात्रा का आनंद लिया। क्रूज से उन्होंने काशी के ऐतिहासिक घाटों, देव दीप्यमान वातावरण और विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व पर्यावरण दिवस पर आज अपने सरकारी आवास पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत आम का पौधा लगाकर सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने कुकरैल में पौधारोपण कर एक पेड़ मां के नाम महाअभियान का शुभारंभ किया। वहां पर मुख्यमंत्री ने महर्षि चरक औषधि वन की स्थापना की और कपूर का पौधा लगाया। मुख्यमंत्री ने स्कूली बच्चों के साथ सेल्फी भी ली। सभी ने मुख्यमंत्री को जन्मदिन की बधाइयां दी। मुख्यमंत्री ने विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रदेशवासियों को 5 संकल्प भी दिलाए। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर अयोध्या में एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। माझा जमथरा में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि यह अभियान प्रकृति संरक्षण के साथ साथ मातृत्व सम्मान का भी प्रतीक है। देवरिया में जिले के प्रभारी मंत्री व स्वतंत्र प्रभार परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह ने 5.27 लाख पौधे लगाने के लक्ष्य का वृक्षारोपण कर शुभारंभ किया। इस दौरान प्रभारी मंत्री, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत पौधरोपण किया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन रात्रि 11 बजे प्रसारित किया जाएगा।

एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।

ये वही रात है जब शहर की सड़कों के किनारों पर बसे गुलमोहर और अमलतास अपनी उदास सी रंगीनियों से बजाफ्ता कोशिशें करते हैं कि जिंदगी को अतरंगी कर दें। कभी सड़क पर बेतहाशा दौड़ते ट्रैफिक से खुद को बचाने के लिए एक किनारे होकर अगर आप जहां तक नजरें जाती हैं वहां तक देखें तो बहुत मुमकिन है कि एक दो जुगनू दमकते हुए दिखाई दे जाएं। एक नजर उनकी ओर जाती है तो फिर वो ख्यालों की उंगलियां थाम कर जहन के उन हिस्सों को जगाने भीतर ही उतर पड़ते हैं जहां कई बरस पहले खुले आसमान के नीचे हमने कई ख्वाब पाले थे, मगर फिर क्या हुआ, फिर जिंदगी हो गई। इन्हीं सब के साथ एक और रात का सफर शुरू करते हैं, कुछ दिलफरेब बातों और दिलकश नगमों के साथ, मौसीकी की दुनिया का सबसे दिलकश प्रोग्राम रजनीगंधा लेकर हम हाजिर हैं। 10:05 और 7 सेकंड हो चुके हैं। 100.7 FM रेनबो पर यह है धड़कन लखनऊ।

दिन से रात तक का सफर, कितने सारे उतार चढ़ाव से निकलकर यहां तक पहुंचा है। सवेरा हुआ तो अचानक से ठंडी ठंडी हवा ने अधखुली आंखों को फिर से मूंद दिया। सूरज जब जागकर सबको उठाना चाहता था, जब वो चाहता था कि रात के ख्वाब रात के वक्त के लिए मुंतकिल कर दिए जाएं, तभी कुदरती हवाओं ने हुक्म सुनाया। अब्र भी पानी लेकर आया कि ख्वाबों की तामीर में अभी वक्त है, इंसान को जरा और वक्त गुजारने दो सराहने पर खुले मीठे ख्वाबों में, जिंदगी की कुछ बेहतर तरतीब बिठाने में। लेकिन फिर वो नींद आई ही नहीं और ख्वाब मुंतकिल ही हो गए।

कभी दो जानू होकर, कभी नाखूनों से पकड़कर दिन को बस थाम लिया जाए। दिल भर कोशिशों का जमा खलीते में कहीं छिपा लिया जाए, मगर दिन इतना आसान कहां होता है। और जब तक दिन के साथ की गई जद्दोजहद खत्म हुई, तब तक रात घिर चुकी थी। उम्मीदों की जगह नताइज ने, रिजल्ट्स ने कब्जा कर लिया था। जिंदगी अपनी चमक तलाशने के लिए उस जगह आ चुकी थी जहां उसके इंतजार में रजनीगंधा माहे पसारे तैयार था। आज रजनीगंधा में मौजूए महफिल, ख्वाब और इश्क। 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

जब इश्क के ख्वाब देखे जाते हैं तो इन आंखों को मूंद पाना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है। अब जाकर किसे पूछें कि मोहब्बत की दिलकश रानाइयों में खोई हुई रात नींद को छिपाकर भला कहां रख देती है। किस किस जतन से तकिए को मोड़कर सोने लायक मौके बनाए जाएं, हर तरह का आराम ख्वाबगाह तक खींच कर ले आया जाए। गर्मियों की हड्डी पिघला देने वाली आग को हड्डियों को कड़का देने वाली शीत में बदल दिया जाए। लेकिन अगर नींद ही नदारत है तो बस सिरहाने लगे तकिए पर निशान बनते हैं। ये निशान पहले नींद गायब करते हैं और फिर ख्वाबों तक की भी कोई राह हमें नहीं बता पाते। और हम इश्क के मारे हुए हम ख्वाबों की ओर बस आंखियों के झरोखों से देखते रह जाते।

जो ख्वाब बिल्कुल सच का सा मुअम्मा ओढ़ कर आते हैं, वो भी हमेशा याद नहीं रहते। शायद यही वजह है कि आंखें खुलने के बाद ख्वाबों का तذکرہ करते हुए अक्सर ये नुक्ता हम चूक जाते हैं कि सारे ख्वाब खूबसूरत नहीं होते। और न सारे ख्वाब सच होते हैं। वैसे ही जैसे हमारे सारे ख्याल खूबसूरत या सच नहीं होते। कई बार मन में चल रही उथल पुथल रात की तारीकी में और गहरी हो जाती है और इसे बेदारी में यानी जागी हुई अवस्था में मन का वहम मानने वाले दानिशमंद भी अक्सर ख्वाबों को सच मान बैठते हैं। और वो ख्वाब जिनमें डर घुला मिला हो वो तो फिर जिंदगी की राह में कई कदम आगे बढ़ के दिन को भी कैद करने में कामयाब हो जाता है। इससे बचने का तरीका यही है कि ख्वाब को बस ख्वाब मानकर भूल जाया जाए। पर इतना आसान है क्या? सोचिएगा फिलवक्त ये प्यारा समय हमारा।

कई बार रात के ख्वाब जाने अनजाने न जाने कितनी सारी मुश्किलात में घेर लेते हैं हमें। जहन के चारों ओर एक मुहासरा सा डाल देते हैं उन अनचिन्ही अनजानी घटनाओं का, जो वैसे तो कुछ नहीं है लेकिन अगर सच हो जाए तो बस। किसी से बिछड़ने का डर है तो कहीं कुछ छूट जाने का भय, और दिन के वक्त ये न जाने डर कहां दिमाग में किस कोने में कौन सी लहरों पर झूम रहे होते हैं। काम में जूझते वक्त उनका होना न होना बहुत मानी भी नहीं रखता, क्योंकि दिन तो बस काम को मंजिल तक पहुंचाते पहुंचाते बीत जाता है। मगर फिर भी कभी कभी तो दिल में ख्याल आता ही है कि अगर जिंदगी में कोई डर न होता तो क्या होता।

कभी कभी आपको भी लगता होगा ना कि दिन किस कदर मसरूफ हो गया है, कि हर सांस एक दौड़ का हिस्सा है, इसमें दो सांसों के बीच भी कोई वक्फा नहीं है। और एक लिहाज से

देखा जाए तो ये अच्छा भी है। ऐसे में हर ख्याल पर गौर नहीं किया जाता, गौर करने के लिए वक्त ही कहाँ है। हर सेकंड किसी नई उम्मीद से वाबस्ता है, हर मिनट ऐसी 60 उम्मीदों की पोटली कानों पर टांगे बस सरकता जा रहा है, किसी तरह घिसटता जा रहा है, किसी तरह मुस्तकबिल की ओर, जो न जाने है या है ही नहीं, मगर फिर भी ये दिल उस मुस्तकबिल के बगैर कहीं लगता ही नहीं।

रात घिरते ही सारे खौफो खदशात को किसी रखीब की तरह जहन तस्वीर में बदल देता है। जो ख्याल दिन में झटक कर उतार दिए जाते थे कंधे से, अब वो जिंदा जाविदा होकर कंधे से आंखों की ओर दौड़ लगाने लग पड़ते हैं और आंखों के पीछे खिंचे पर्दे पर न जाने कैसे उनमें बस जान ही तो पड़ जाती है। ख्वाब जिनकी तरबियत हम अपने ख्यालों में आने वाली लगभग हर बात से करते हैं। अच्छा बुरा जो भी ख्याल हमारे जहन को कभी सजाता है तो कभी भरम में रखता है, वही तो ख्वाब के लिए कच्चे माल यानी ईंधन का काम करता है। ख्यालों की डोर जितनी सधी हुई लगती है उतनी ही बेसुधी से उड़ती है ख्वाबों की पतंग। वो जिन्हें हमने दिल में कहीं बिठा कर रखा है वो कब हमारे दुश्मन हो जाते हैं पता भी तो नहीं चलता।

नमस्कार, रात्रि के 11 बज चुके हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को रूस के पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 देने की पेशकश की है। उन्होंने इस विमान के भारत में संयुक्त उत्पादन का भी प्रस्ताव रखा है। सेंट पीटर्सबर्ग आर्थिक मंच में श्री पुतिन ने कहा कि रूस भारत के साथ एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली और अन्य महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों के उत्पादन में सहयोग करने के लिए तैयार है। भारत वर्तमान में अपनी स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली सुदर्शन चक्र विकसित कर रहा है। इसमें रूस से प्राप्त S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 3 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंचे। दौरे के पहले दिन उन्होंने बायो युग ग्रीन कमांड 2026 का शुभारंभ किया। ये पहल पारंपरिक प्लास्टिक के